एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सास आरंभ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 मई सन 2026 स्टूडियो घड़ी में समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से और समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के 2रे चरण में वोट डाले गए। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कर घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीन

0: अंतिम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व में बिखरा हुआ ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के एल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आइए सुनिए आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जो उन्हें पढ़ लेता है उसे बोलना सिखा देती हैं। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरितमानस पाठ में सुनिए भाग 176। 6:45 पर संगीत सरिता में श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा का 15वां भाग सुनिएगा। कलाकार हैं गीतकार गुलजार, संगीतकार आरडी बर्मन और गायिका आशा भोसले। प्रस्तुति छाया गांगुली की है। 7 बजे भूले बिसरे गीत का प्रसारण होगा और 7:30 से सुनिए हम है राही प्यार के। आज सुबह 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम होगा। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक और 9:30 पर सुनिए आज के फनकार, जो फिल्मकार सत्यजीत रे पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप आज रात 9:30 पर भी सुन सकते हैं। 10 बजे पिटारा में गीतों भरी कहानी सुनवाई जाएगी। कहानी है जिंदगी में नून। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का है। लेखक हैं श्रद्धा थवायत, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। ग्यारह बजे सुनिए चित्रपट संगीत और 11:30 से मैटिनी शो। 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी और 1 बजे से कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। सदाबहार नक में आप सुन सकते हैं 2:30 से और मन चाहे गीत सुनिए 3 बजे से। पर नाट्य तरंग कार्यक्रम होगा और 4 बजे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज में सुनिए फिल्म एडिटर दिलीप तरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत का 2रा भाग, प्रस्तुत करता है जुबेर खान। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता में श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा का 15वां भाग सुनिएगा। 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए जिज्ञासा। हवा महल में सुनो कहानी के अंतर्गत सुनिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र का भाग पहला। वाचन स्वर है ममता सिंह का, प्रस्तुत करता है हर्षवर्धन गवई। 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम होगा और 9 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार सत्यजीत रे पर और 10 बजे से सुनिए छाया गीत। 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। 11 बजे सुनिए चित्रपट संगीत।

आपको एक बार फिर याद दिला दें, सुरीला सफर आज आप सुनेंगे 1 बजे से और सदाबहार नगमे आप सुनेंगे 2:30 पर और 3 बजे से सुनिए मन चाहे गीत।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कागार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानव उसकी प्रत्यंचा है और शम, तम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया। श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज बसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

0: जिसका जिक्र कोई गानों में या नज़मों में करते नहीं हम लोग, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है ये, और उन पे गाना कह लेना और उस दर्द को बता देना। इसी में गाना है जिसमें औरत शादीशुदा है और मैं सजदे में थी तूने लब छू लिए, एक जगह आता है इसमें एक गाने में, और तुमको परवाह नहीं थी मैं अकेली न थी, कुछ इस तरह की लाइन है जिससे सजेस्ट करते हैं हम कि शी इज अ मैरिड वुमन एंड इन लव विद समबडी। तो ये इस तरह के हिस्से जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, ये सिचुएशंस हम फिल्मों में कह नहीं पाते, बाहर लिखते नहीं, दिल पड़ोसी है मैं, ये पहली बार हुआ था।
1: रात क्रिसमस की थी,
0: रात क्रिसमस की थी,
2: इस गाने में
0: ना तेरे बस की थी ना मेरे बस की थी।
2: और बर्मन साहब ने इसमें जिस तरह लगता है कि वाकई क्रिसमस हो रहा है कहीं लंदन में पेरिस में, इसी तरह कुछ वो क्या गाड़ी छन छन छन छन आवाज और क्रिश्चियन लड़कियां सब गा रही हैं, और उसमें से ये गाना जैसे शुरू होता है, ये बहुत सुंदर गाना है। तो आज
0: अच्छा ये मैं सिर्फ बदला नहीं चुका रहा हूँ, लेकिन ये कि आपकी रेंडरिंग और आपकी गायकी, आपने जिस तरह से गाया है उसे,
2: मेरा ख्याल आप लोग प्यार करते हैं इसलिए आपको मेरे गाना अच्छा लगता है।
0: सही बात यह है कि आज क्योंकि आखिरी प्रोग्राम है, इसलिए जाने से पहले कह देना चाहता हूँ सबके सामने कि आपकी रेंडरिंग उसमें एक और सोने पे सुहागा था।

0: मेरी संगीत यात्रा। सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्री राहुल देव बर्मन से हुए संवाद पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की 15वीं और अंतिम कड़ी। इस संवाद में भाग ले रहे थे सुपरिचित फिल्म लेखक, गीतकार, निर्माता एवं निर्देशक श्री गुलजार और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले। इस कड़ी के साथ ही संगीत सरिता की वर्तमान श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा का समापन होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

0: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
1: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
0: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को राजुल का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत छोटे बाबू फिल्म से सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं। इंदिवर के बोलों को धुन में पिरोया है मदन मोहन ने।

आंखों में छिपे जुगनू की बातें तमाम नज़ारे सुनते हैं और हम अब सुनते हैं हिल स्टेशन फिल्म का गाना गीता दत्त की आवाज़ में। शब्द रचना SH बिहारी की और स्वर रचना है हेमंत कुमार की।

चंगेज खान फिल्म का गाना आपने सुना सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में। कमर जलालाबादी के बोल थे और हंसराज बहल का संगीत था। रोकती बहारों की सुरीली पुकार जा पहुंचती है नीले गगन पर। आइए सुनते हैं बादशाह फिल्म का ये गाना।

हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे बादशाह फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा था शैलेंद्र ने और शुरू में पिरोया था शंकर जय किशन ने। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का शेष भाग जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: फूलों कैसे रखूं मैं मुखड़ा छुपाए के,
1: छुपेगा ना चांद का ये टुकड़ा छुपाए से, ये चांद का टुकड़ा छुपाए से।

0: लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे चंपा कली फिल्म का गाना, जिसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का बंजारा।
0: 1993 फिल्म साहिबा।
2: कैसे जियूंगा मैं।
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
3: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आँखों में
2: काजल है।
4: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले का गाया हुआ भाभी फिल्म का गाना। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की और स्वर रचना है चित्रगुप्त की।

लता मंगेशकर के स्वर में आप सुन रहे थे मीनाबाई का ये भजन। फिल्म का नाम था तूफान और दिया, संगीत वसंत देसाई का था। और आइए अब सुनते हैं सती नागकन्या फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज़ में। जीएस नेपाली की शब्द रचना को संगीत से सवारा है एस एन त्रिपाठी ने।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

श्रोताकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं और आज के इस अंक के साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं आज के इस सुविचार के साथ। गौतम बुद्ध कहते हैं, सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसे जीवन से सबसे कम शिकायतें हैं। यह था आज का सुविचार।

और अब आज का इतिहास। इसके अंतर्गत डालते हैं एक नज़र 2 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। तो आज ही के दिन 1986 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की 30 वर्षीय एन वैनक्राफ उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी थी। 1997 में आज ही के दिन ब्रिटेन में 18 वर्षों बाद लेबर पार्टी सत्ता में आई और उसके नेता टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। सन 2002 में आज ही के दिन पाकिस्तान के इंजामामुल हक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 329 रन बनाए थे और सन 2008 में अनिल अंबानी ग्रुप की फर्म रिलायंस पावर लिमिटेड ने इंडोनेशिया में 3 कोयला खदानों का अधिग्रहण किया था। अब डालते हैं एक नज़र 2 मई को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर। 1968 में जन्म हुआ था उषा बारले का, जो कि भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और पांडवानी गायन के लिए जानी जाती हैं। विश्वेश्वरनाथ खरे भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व 33वें न्यायाधीश रहे हैं। इनका जन्म हुआ था आज के दिन 1939 ईस्वी में। सत्यजीत राय ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक। इनका भी जन्म हुआ था आज के दिन 1921 ईस्वी में। 1921 में ही आज के दिन जन्म हुआ था ब्रजवासी लाल का। ये भारत

के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक पुरातात्विक स्थलों का अन्वेषण एवं उत्खनन कराने वाले प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। 1929 में आज के दिन जन्म हुआ था विष्णुकांत शास्त्री का। ये भारतीय राजनीतिक एवं साहित्यकार थे। अब एक नज़र उन विभूतियों पर जिनका निधन आज के दिन यानी 2 मई को हो गया था। 1519 ईस्वी में आज के दिन निधन हुआ था लियोनार्डो दा विंची का। ये इटालीवासी महान चित्रकार थे। पद्मजा नायडू, इनका भी निधन आज के दिन हुआ था 1975 ईस्वी में। ये प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सरोजनी नायडू की पुत्री थी। यशवंत सिंह परमार, भारत के राजनेता और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका भी निधन हुआ था आज के दिन सन 1981 ईस्वी में। बनारसीदास चतुर्वेदी, जो कि प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार थे, ये भी हमें अलविदा कह गए थे आज के दिन 1985 ईस्वी में। हेमचंद्र गोस्वामी का भी निधन हुआ था आज के दिन सन 1928 में। ये आधुनिक असमिया साहित्य के शुरुआती दौर के भारतीय लेखक, कवि, इतिहासकार, शिक्षक और असम के भाषाविद थे। तो श्रोताओं, ये था आज का इतिहास। विशेष दिवस और अवसर की बात करें तो आज हम विश्व टूना दिवस मना रहे हैं। टूना मछली के महत्व और संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और अब जैसा कि अभी आपने जाना कि सत्यजीत रे का आज जयंती है। ये फिल्मी एक महान फिल्मी हस्ती थे, हालांकि ये अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1992 को हो गया था। और श्रद्धांजलि स्वरूप हम उनके बारे में आपसे एक छोटी सी जानकारी साझा कर रहे हैं। तो श्रोताओं, 20वीं शताब्दी में विश्व की महानतम फिल्मी हस्तियों में से एक थे सत्यजीत रे, जिन्होंने यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सत्यजीत रे प्रमुख रूप से फिल्मों में निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन लेखक और साहित्यकार के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय ख्याति अर्जित की। सत्यजीत राय फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम खुद ही करते थे। इनमें निर्देशन, छायांकन, पटकथा, पार्श्व संगीत, कला निर्देशन, संपादन आदि शामिल है। फिल्मकार के अलावा वह कहानीकार और चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे। श्रोताओं, सत्यजीत राय कथानक लिखने को निर्देशन का अभिन्न अंग मानते थे। सत्यजीत रे ने अपने जीवन में कुल 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। इनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली, जो कान फिल्म महोत्सव में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए, विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत राय को 1992 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसके अंतर्गत इनको 1958 में पद्मश्री, 1965 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था 1967 ईस्वी में।
और स्वतः विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान

के लिए सत्यजीत राय को मानद ऑस्कर अवार्ड से अलंकृत किया गया था और इस तरह उनके नाम कुल 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए। और श्रोताओं आपको बता दें कि सत्यजीत रे ने मुख्य रूप से बंगाली फिल्में बनाई, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा में दो ही फिल्में बनाई, जो कि एक था शतरंज के खिलाड़ी जो 1977 ईस्वी में प्रदर्शित हुई थी और दूसरी फिल्म थी सदगति जो 1981 ईस्वी में आई थी और यह फिल्म दूरदर्शन के लिए बनी एक टीवी फिल्म थी। तो श्रोताओ ये थी संक्षिप्त जानकारी सत्यजीत राय के बारे में और उन्हें एक बार फिर हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और कार्यक्रम में अब हम सुनवा रहे हैं एक गाना और इसे हमने लिया है लो मैं आ गया फिल्म से ये भक्ति रचना बजरंग बली तेरी जय हो।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। कार्यक्रम में अब आइए नजर डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। कैमूर जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशन के आलोक में कल दिनांक 1 मई 2026 को चैनपुर प्रखंड अंतर्गत मसोई कैंप 2 में रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतमाला परियोजना साइट पर कार्यरत स्टाफ, ड्राइवरों एवं वाहन मालिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

कैमूर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय, कैमूर द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा आयोजित की जाने वाली NEET UG 2026 परीक्षा को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। परीक्षा दिनांक 3 मई 2026 रविवार को अपराह्न 2 बजे से साय 5 बजे तक एकल पाली में आयोजित की जाएगी। जिले में कुल 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 1476 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

जिला प्रशासन सभी परीक्षार्थियों से अपील करता है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों का पालन करें और समय से केंद्र पर पहुंचे। किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि से भूमि के लंबित मुआवजे के भुगतान के लिए कैमूर जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिला पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार किसानों और रैयतों के आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु कल दिनांक 1 मई को समाहरणालय स्थित मां मुंडेश्वरी सभागार में

और शेरशाह सूरी महोत्सव 2026 के अंतर्गत जिला प्रशासन रोहतास की ओर से एक रील प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस रील प्रतियोगिता का विषय है शेरशाह सूरी का व्यक्तित्व एवं

आयोजित की गई है। इस रील प्रतियोगिता का विषय है शेरशाह सूरी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। रील की अवधि 30 सेकंड से 1.5 मिनट की होगी। रील भेजने के लिए ईमेल आईडी sershahsoorimahotsavreel@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं। रील गूगल ड्राइव पर भी अपलोड कर लिंक ईमेल पर भेज सकते हैं। रील भेजने की अंतिम तिथि 10 मई 2026 है और इसके लिए पुरस्कार का भी प्रावधान किया गया है। प्रथम पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 2,000 रुपये दिए जाएंगे। और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पार्टिसिपेट प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। कार्यक्रम में आगे हम नजर डालेंगे समाचार पत्रों से, कुछ हम खबरें लेंगे। पहले सुनते हैं एक गाना।

जय श्रोताओं, हम कोई भी भाषा बोलते हों या कोई भी पोशाक वेशभूषा धारण करते हों, लेकिन हमारा दिल हमेशा हिंदुस्तानी होना चाहिए। बहरहाल, ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाज़ों में, और इसे हमने लिया था श्री 420 फिल्म से।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: और श्रोताओ नमस्ते, रोहतास कार्यक्रम के अंत में आइए एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख समाचार सुर्खियों पर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद सरकार ने खुदरा ऊर्जा की कीमतें स्थिर रखी हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आगामी 15 जून से शुरू होंगी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने छड़ियों और कोहनी वाली बैशाखियों सहित चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए नए मानक जारी किए हैं। 7 वर्षीय ईशान सिंह ने भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य को रिकॉर्ड समय में पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनकर इतिहास रचा। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया।

गृह मंत्री अमित शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लेह में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहा, यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पुनर्मिलन है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ब्रिक्स महिला कार्य समूह की पहली प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करने की भारत की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया, जिसमें महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख वाहक के रूप में मान्यता दी। तो श्रोताओं, ये थी कुछ प्रमुख सुर्खियां। और अंत में हम कहेंगे कि गर्मियों में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पर्याप्त पानी पिए, हल्के कपड़े पहने और तेज धूप से बचे। छोटी छोटी सावधानियां आपको भीषण गर्मी से होने वाली परेशानियों से बचा सकती है। और अब दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार।

0: प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप कुछ ही पलों में सुनेंगे दिल्ली से रिले समाचार प्रभात, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
2: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
3: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से LPG की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में LPG उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: LPG की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें

0: परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 RBI कार्यालयों में उपलब्ध है। RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमरीका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कोत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चियू

चांगचिए और वांग चेलिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुनयी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट

0: अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान विपक्ष परेशान आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास कांग्रेस का वॉकआउट अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोक सत्य के शब्द है मां की ममता लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की

फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत। इसके अंतर्गत हम आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में देश प्रेमी फिल्म से ये देशभक्ति गीत।
1: नफरत

देश प्रेमी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इसके साथ ही देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे केंद्र से अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आप सबकी फरमाइश पर धर्मवीर फिल्म के इस गाने से, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और सुनने के ख्वाहिशमंद है थाना मोड़ गरनोखा जिला रोहतास से मोना भाई मंसूरी, नजबुल निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शाहबाज। नाज मंजिल मैसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, रुबीना परवीन, नवासा राहन बाबू, हमजा बाबू, तैमूर बाबू और नवासी हुमायरा नाज। कोकिलवारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद फैजल शेख और नुजहत जहानाज। कांति निकेतन राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता। तो चलिए आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं धर्मवीर फिल्म का ये गीत।

शुदा अपनी ट्यून किया आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आप सबकी पसंद पर ये अगला गीत। फिल्म का नाम है हेरा फेरी, गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। लेवई से हमारे श्रोता हैं गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रेंगनी से दिनेश वर्मा और दतरेंगी से भागवत वर्मा। बक्सर बिहार से हमारे श्रोता हैं सरफुद्दीन अंसारी।

मैं खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और वसीम अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, असमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, महताब अंसारी, मिराज अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी। तो चलिए, आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं हेरा फेरी फिल्म का ये गीत।

इसी गाने को सुनना चाहते हैं। नायका गांव धर्मशाला से राजेंद्र सिंह, शकुंतला देवी, प्रीति कुमारी, राहुल और बादल ने भी

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी सासाराम से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर के साथ। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं हमसाया फिल्म का एक गीत आशा भोसले की आवाज में। गीत को लिखा है सेवन रिजवी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने और सुनना चाहते हैं फुटानी चौक नरन एस्टेट से हमारे श्रोता ललन मिश्रा उदयकांत ठाकुर अमन परासर बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। मिसर मोहल्ला नारायण बाजार से भाई फटफटिया जा गुंजन परासर अमित सुमित छोटू और बी के सुरगनैया। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी रायकारी श्रीमती मीना कारी पुंजराज आर्यन आरती पुंज आकर्षण पुंज जयश्री पिंकी रिंकी रिकी नीतू मोहम्मद फारूक और ढोली साकरा से हमारे श्रोता हैं जयवंत कुमार बैरागी। ब्रह्मपुरा मानीगाछी से भाई अच्छेलाल राय श्रीमती पानु देवी मुकेश कुमार राय प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। तो चलिए आप सबों के लिए पेश है हमसाया फिल्म का ये गीत।

और पसंद आपकी कार्यक्रम के आखिर में हम सुना रहे हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म का एक गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। भरत व्यास के बोले हैं और वसंत देसाई का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहते हैं कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकात परवीन, सदा फारजू, साहिल अरमान, शमा परवीन, सादिया तस्नीम और बेबी अलीशा। और आप हैं मंटू सिंह छपरा वाले, गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली, फलना झा। नयनगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी और रजनीश कुमार। गढ़नोखा लालगंज बिहार से हमारे श्रोता हैं राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान और आर के सिंह चौहान। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

0: कार्यक्रम पसंद आपकी अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब हम थोड़ी देर में रिले करेंगे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: छोट शहर मगर सपना ग्लोबल। आप इंजीनियरिंग के टॉप लेवल पढ़ाई बिहार में ही संभव छी।
2: हर जिला में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, 38 प्रतिष्ठित संस्थान, विश्व स्तरीय शिक्षा अपने राज्य में,
1: हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी फैकल्टी आ मजबूत प्लेसमेंट सपोर्ट।
2: नामांकन जेईई मेन 2026 या बीसीईसीई मेरिट के आधार पर। अंतिम तिथि 5 मई 2026।
1: जखन मौका अपने राज्य में हो तो सफलता दूर नहीं हो छी। उत्कृष्ट प्लेसमेंट अहां के इंतजार में छी।
2: बेसी जानकारी खातिर विजिट करू bceceboard.bihar.gov.in। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
5: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
8: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आज से शुरू। घर घर जाकर प्रगणक लेंगे जानकारी। भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में मानसून अवधि के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा होगी। बीपीएससी ने अप्रैल में आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा रद्द किया। और मौसम विभाग का आज प्रदेश के कई भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश का अलर्ट। कई मई महीने में सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत आज से मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य आरंभ हो गया है। ये गणना स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुई है। गृह मंत्रालय के अनुसार ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच प्रदेश में कल स्वगणना की प्रक्रिया समाप्त हो गई। जिन नागरिकों ने स्वगणना नहीं की है, प्रगणक उनके घर जाकर जानकारी दर्ज करेंगे। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें

नागरिकों की आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक विवरण दर्ज किए जाएंगे। भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में मानसून अवधि के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा के लिए बैठक होगी। इस बैठक में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल करेंगे। इससे पहले काठमांडू में आयोजित दो दिवसीय भारत नेपाल कोसी और गंडक परियोजनाओं की संयुक्त समिति की 11वीं बैठक में दोनों

0: इससे पहले काठमांडू में आयोजित 2 दिवसीय भारत नेपाल कोसी और गंडक परियोजनाओं की संयुक्त समिति की 11वीं बैठक में दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है। बैठक में नेपाल ने प्रदेश के पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर नेपाली भाग, कोसी बराज, गंडक बराज और मुख्य पश्चिमी नहर के भागों को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने की सहमति दी है। इसके साथ ही पश्चिम कोसी मुख्य नहर के बांधों पर लगाए गए बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दे दी है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस निर्णय से नहर और उसकी सेवा पथ के संचालन कार्य में कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में सुशासन स्थापित है और इसे चुनौती देने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। गया जी में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने संकेतों में कहा कि अपराधियों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। वहीं नालंदा के सरमेरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के लंबित प्रशासनिक मामलों के निपटारे के लिए 19 मई से पंचायत स्तर पर सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत सभी पंचायतों में प्रत्येक महीने पहले मंगलवार को शिविर का आयोजन किया जाएगा।
1: प्रत्येक पहले मंगलवार को 19 मई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे साथियों, और आपके पंचायत में जाकर ये 3 चीजों की दिक्कत आम लोगों की होती थी, ब्लॉक, अंचल और थाना, इन तमाम समस्या को समाप्त करने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों।
0: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंभीर अपराधों के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू किया गया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं के मामले में त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है।
2: देख रहे हैं कि हत्या या अपराध के मामले में कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति है। कोई हत्या होती है और अपराधी 24 घंटे के अंदर खुद पुलिस के गोली का शिकार होता है। अगर वो बदमाशी करके पुलिस के साथ भी कोई के हिंसात्मक कार्रवाई, तो जो भी घटना घटी है, जो भी अपराधी है, उसके खिलाफ मुकम्मल और सख्त कार्रवाई होगी।
0: बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO परीक्षा रद्द कर दिया है। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थियों के व्यापक हित और कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि 14 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच आयोजित परीक्षा के दौरान 32 अभ्यर्थियों को कदाचार और गड़बड़ी के आरोप में पकड़ा गया था। वहीं आयोग ने 23 अप्रैल को आयोजित सहायक लोक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की लिखित परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। तेल विपणन कंपनियों ने LPG के 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की बढ़ोतरी की है। पटना में अब व्यावसायिक सिलेंडर की नई कीमत 3,346 रुपए 50 पैसे होगी। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है।
3: देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है, अब उस पर कंट्रोल भारत का तो है नहीं, और उसके कारण अगर कहीं दाम बढ़ रहा है तो उस स्थिति का सामना तो सब लोगों को करना पड़ेगा।
0: केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। कल देश भर में 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। मंत्रालय ने बताया कि औद्योगिक आधार पर ऑनलाइन LPG सिलेंडर बुकिंग 98% तक बढ़ गई है।

0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: कहाँ चलती है? इधर तो आओ।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा कि मई महीने में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने का पूर्वानुमान है, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इस दौरान लू चलने की भी आशंका जताई गई है। इस बीच विभाग ने आज प्रदेश के कई भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है।
5: दिनांक 2 मई राज्य के अधिकांश जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान नवादा जिले के रजौली में सबसे अधिक 58.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान औरंगाबाद और रोहतास जिले के कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट 3 साल की अवधि में बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत 3.56 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक यह आंकड़ा तेजी से घटकर 2,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि केंद्र सरकार मजदूरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य मजदूरों के कौशल और उनकी मेहनत से ही प्राप्त होगा।
6: जब मेरे प्रधानमंत्री एक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मजदूर साथियों की है, जो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। मेरी सरकार ने समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए कई फैसले, कई कानून बनाने का काम किया।
0: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICUR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची NLEAP पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए मानक जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
7: BIS द्वारा कोहनी, बैसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली चलने की छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए गए हैं। इसके अलावा

0: अलावा बीआईएस ने स्पर्शनीय मार्गदर्शक मानचित्रों के सुलभ डिजाइन, सूचना सामग्री, चित्रांकन और प्रदर्शन विधियों, साइनेज उपकरण और उपकरणों पर ब्रेल के अनुप्रयोग और पोर्टेबल रैंप के लिए भी मानक प्रकाशित किए हैं। एनएलईएपी दस्तावेज का उद्देश्य नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और संबंधित हितधारकों के लिए सहायक उत्पादों के प्रावधान के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करना और साथ ही देश भर में सहायक प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग करना है। ये मानक सुरक्षा, एर्गोनॉमिक्स, प्रदर्शन, फिनिश, कारीगरी और निर्माता द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी से संबंधित आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय आज हैदराबाद में आत्मनिर्भर पंचायत पहल पर एक आउटरीच कार्यशाला आयोजित कर रहा है। इस कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम की परिकल्पना, उद्देश्य और कार्यप्रणाली से परिचित कराया जाएगा। ये कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज मुख्य भाषण देंगे। इस दौरान वे आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम की व्यापक सोच और उसकी परिकल्पना को सामने रखेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर और मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा आज से शुरू हो रही है। मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा 6 मई तक तथा इंटर की परीक्षा 11 मई तक दो पालियों में संचालित होगी। बोर्ड ने कहा है कि कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। अररिया जिला स्थित आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के लिए आज से प्रक्रिया की होगी शुरुआत। केंद्र का संचालन कला और संस्कृति विभाग के तहत किया जाता है। अरवल जिले के कृषि भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मजदूरों के अधिकार और कर्तव्य विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रखंडों के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी और श्रमिक संगठनों के कई नेताओं ने भाग लिया। वहीं सीतामढ़ी जिले के डुमरा स्थित संयुक्त श्रम भवन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आज से शुरू। घर घर जाकर प्रगणक लेंगे जानकारी। भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में मानसून अवधि के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा होगी। बीपीएससी ने अप्रैल में आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा को रद्द किया। और मौसम विभाग का आज प्रदेश के कई भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश का अलर्ट। मई महीने में सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: किसान भाइयों एवं बहनों, अब सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना हुआ और भी आसान।
1: IVRS सुगम कॉल सेंटर के माध्यम से सहकारिता विभाग की सभी योजनाओं यथा खाद्यान्न अधिप्राप्ति बिहार राज्य फसल सहायता योजना पैक्स सदस्यता एवं अन्य सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें।
0: कोई शिकायत, कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो तुरंत कॉल करें।
1: टोल फ्री नंबर 1-800-3454-110 पर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सहकारिता विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी

0: आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
0: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। इसके अंतर्गत हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आज दिन भर और रात 11:10 तक प्रसारित और रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। सुबह 9:30 पर विविध भारती का कार्यक्रम होगा आज के फनकार। सुबह 10:00 हिंदी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। सुबह 10:05 पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा विकास के सोपान। सुबह 10:30 लोक माधुरी कार्यक्रम में आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम से लोकगीत और सुबह 10:45 पर रसधार कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। पूर्वाह्न 11:00 से हम आपको सुनाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

हमारी शाम की सभा में शाम 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदन। शाम 5:30 युवा साथी कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी और संध्या 6:00 किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा किसान वाणी। किसान वाणी कार्यक्रम में आज किसान भाई सुनेंगे एक भेंट वार्ता, विषय होगा हरी खाद कैसे बनाएं। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा। इसके अलावा कार्यक्रम में चर्चा होगी हरी खाद के लिए ढांचा की करें खेती विषय पर। संध्या 6:30 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सांझ गीत और शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। शाम 7:15 पर हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होगा गुड इवनिंग रोहतास।

शाम 7:30 बजे प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के पटना केंद्र से, और वहीं से आप उसके बाद सुनेंगे जिले के हलचल। शाम 7:50 से आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। रात्रि 8:45 बजे समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से, और रात्रि 9 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकधारा। रात्रि 9:15 पर गजलों का कार्यक्रम होगा महफिल, और रात्रि 9:30 पर विविध भारती का कार्यक्रम हम रिले करेंगे छाया गीत। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स, और रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम होगा चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। सुबह के 9:10 हो रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का।

अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे लव स्टोरी फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आर डी वर्मन ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। अब हम सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में बंदिश फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे थे आंखों आंखों में फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और अब कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं छोटा सा घर फिल्म का एक गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार राजेश रोशन।

छोटा सा घर फिल्म के इस गाने के साथ ही गीतमालिका कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब हम थोड़ी देर में आपके लिए रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

दोस्तों नमस्कार, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है सत्यजीत रे की स्मृति को। सत्यजीत रे का शुमार भारत के महानतम फिल्मकारों में होता है। आज पश्चिमी दुनिया में अगर भारतीय सिनेमा अपनी कोई पहचान कायम कर पाया है या अपना परचम बुलंद कर पाया है तो इसका सीधा श्रेय जाता है सत्यजीत रे को, जिनकी पहली ही फिल्म पाथेर पांचाली सन 1956 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। सत्यजीत रे का सिनेमा सरोकारों का सिनेमा था। वहां पॉपुलर सिनेमा की कोई चमक दमक नहीं थी, वहां समस्याओं से जूझते भारतीय समाज की चिंता थी, वहां भूख और गरीबी के खिलाफ रचनात्मक हस्तक्षेप था, वहां सामाजिक अन्याय की बातें थीं, सदियों से शोषित होती चली आई नारी की पीड़ा को पर्दे पर साकार रूप देने की आकांक्षा थी सत्यजीत रे के सिनेमा में।

मुंबई सिनेमा की मार धाड़, उसका नाच गाना और उसका स्वप्निल संसार एक छोर पर है और दूसरे छोर पर है सत्यजीत रे का यथार्थवादी सिनेमा। आइए एक नजर डालें सत्यजीत रे की सिने यात्रा पर। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ता के एक सांस्कृतिक परिवार में हुआ था। फिल्मों का शौक सत्यजीत रे को बचपन में ही लग गया था। उन्हें वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का शौक भी लग गया और पेंटिंग का भी। अपनी मां के कहने पर सत्यजीत रे सन 1940 में शांति निकेतन आ गए। वे चित्रकला के छात्र बनकर यहां आए थे। सन 1942 में वे शांति निकेतन छोड़कर अपने घर चले आए। सन 1943 सत्यजीत रे ने डीजे कीमर नामक एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जूनियर विजुलाइजर का काम शुरू किया। 13 साल तक सत्यजीत रे इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बने रहे। इसी दौरान सत्यजीत रे ने शौकिया तौर पर पटकथाएं लिखना शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी घोरे बाईरे पर आधारित पटकथा इन्हीं दिनों सत्यजीत रे ने लिखी थी। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने सन 1950 में उन्हें लंदन हेडक्वार्टर भेज दिया। 6 महीने के लंदन प्रवास में सत्यजीत रे ने विक्टोरिया दे सिका की फिल्म बाइसाइकिल थीफ देखी और इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब सत्यजीत रे ने यह तय कर लिया था कि वे शौकिया

कलाकारों को लेकर एक यथार्थवादी फिल्म जरूर बनाएंगे। उन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कृति पाथेर पांचाली के अधिकार खरीद लिए। तलाश थी एक फाइनेंसर की। प्रोड्यूसरों को प्रभावित करने के लिए सत्यजीत रे अपने साथ एक नोटबुक लेकर जाते थे, जिसमें पाथेर पांचाली के कुछ अहम दृश्यों के रेखा चित्र बनाए हुए थे। 2 साल तक सत्यजीत रे प्रोड्यूसरों की तलाश में भटकते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार निराश होकर सत्यजीत रे ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी गिरवी रख दी। कुछ पैसा मित्रों और रिश्तेदारों से मिला और 27 अक्टूबर 1952 को रविवार यानी दफ्तर की छुट्टी के दिन पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया गया। जैसा कि हमने आपको बताया, 27 अक्टूबर 1952 को सत्यजीत रे ने फिल्म पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया था। ये वो दृश्य है जिसमें अपू दुर्गा के पीछे काश के खेत में से भागता है। काश एक बहुत ऊंची सी घास होती है। ये दोनों लोग खेतों में से भागते हुए जा रहे हैं पहली बार गांव के नजदीक से गुजरती छुप छुप रेलगाड़ी को देखने के लिए। सत्यजीत रे को यह लगा था कि यह दृश्य बहुत ही प्रभावी होगा और इसके जरिए उन्हें पाथेर पांचाली के प्रोड्यूसर मिल जाएंगे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो इस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत आसान नहीं था। अपू की भूमिका के लिए कलाकार को ढूंढना सत्यजीत रे के लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने समाचार पत्रों में विज्ञापन छापे, सैकड़ों लोग इसके लिए ऑडिशन देने के लिए आए, लेकिन आखिरकार सत्यजीत रे को दक्षिण कलकत्ता के एक फ्लैट के पास बिजोया खेलता हुआ दिख गया और बस उन्हें लगा कि यही है उनका अपू। इसी दौरान बिमल रॉय ने सलील चौधरी की कहानी पर बनाई अपनी यथार्थवादी फिल्म 2 बीघा जमीन, जिसे 1954 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्री अवार्ड मिला।

0: दो बीघा जमीन और कुरुसावा की रोशोमन ने यथार्थवादी सिनेमा पर सत्यजीत रे का विश्वास प्रबल कर दिया। बहुत मुश्किलों से बनी फिल्म पाथेर पांचाली आखिरकार 26 अगस्त को कलकत्ता में प्रदर्शित हुई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब रही। सन 1955 में केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने स्पेशल जूरी अवार्ड जीता और सत्यजीत रे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मकार बन गए।
1: सोनार मानुष भासछे रसे, सोनार मानुष भासछे रसे।
0: पाथेर पांचाली की कामयाबी ने सत्यजीत रे को नई ऊर्जा से भर दिया। पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार, ये तीनों अपूत्रयी के नाम से विख्यात हैं। सन 1981 तक हर साल सत्यजीत रे अपनी एक फिल्म जरूर लेकर आए। सत्यजीत रे की फिल्म यात्रा सिने इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। सन 1958 में आई परश पाथर, इसी साल आई जलसाघर, 1960 देवी, सन 1961 तीन कन्या, सन 1962 कंचनजंगा, सन 1963 महानगर, 1964 में आई चारुलता, 1968 में आई गोपीगाइन बाघबाइन, सन 1977 में आई उनकी हिंदी फीचर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद की कहानी पर उन्होंने अपनी एक टेलीफिल्म भी बनाई सदगति, सन 1984 घरे बाई रे, सन 1989 गणशत्रु। 1984 के बाद कुछ साल सत्यजीत रे अपनी बीमारी की वजह से सिनेमा से दूर रहे। सन 1989 में उन्होंने इप्सन की कृति एनिमी ऑफ द पीपल पर अपनी फिल्म बनाई गणशत्रु, इसके अगले वर्ष शाखा प्रशाखा और सन 1991 में आई सत्यजीत रे की अंतिम फिल्म आगंतुक। सत्यजीत रे ने अपनी अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर बनाई थीं। सन 1992 में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड मिला था। इसी साल उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म का लेखक

0: जानी मानी लेखिका शमा जैदी ने चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी के साथ किया था। मैंने शमा जैदी और जावेद सिद्दीकी दोनों से बातें की। शमा जैदी ने हमें बताया,
1: बंसी चंद्रगुप्त उनके आर्ट डायरेक्टर थे
0: जी,
1: तो जावेद और मेरे वो बहुत दोस्त थे, वो तो उनके यहाँ हम जाके
0: जावेद सिद्दीकी साहब जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में आपके
1: तो
0: साथ
1: मैं उनके साथ जाती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम चलो, सत्यजीत रे आए हुए हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बैकग्राउंड मटेरियल मेरे लिए जमा करो, तो काफ़ी मैंने इधर उधर से उनको मटेरियल भी दिया उसके लिए
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा कि तुम डायलॉग भी लिख लो, तो मैंने कहा ऐसी फंसी उर्दू शायद मैं नहीं लिख पाऊंगी, मगर मेरे एक दोस्त हैं, मैं बात करती हूं उनसे, तो मैंने जावेद से कहा, जावेद ने कहा अरे मैंने कभी फिल्म के लिए लिखा है,
0: उन दिनों वो जर्नलिस्ट थे,
1: जर्नलिस्ट थे, मैंने कहा नहीं नहीं तुम लिखोगे।
2: अब ये शतरंज भी कंपनी की अमलदारी में आ गई क्या? खूब खूब। वैसे मैंने ला मार्टिनेर के कॉलिन साहब से सीखी है, मैं उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाने जाता हूँ ना।
3: अच्छा अच्छा मुंशी साहब, ये दोनों वजहों में फर्क क्या है?
2: नवाज साहब को ज्यादा फर्क नहीं है, या आपका वजीर जो है वो अंग्रेजी खेल में क्वीन यानी मलिका कहलाता है, और दोनों आमने सामने रहती हैं, और प्यादा पहली चाल में दो घर चल सकता है।
3: दो घर?
2: जी हाँ दो घर, और मुखालिफ सिरे पर पहुंच जाए तो मलिका बन जाता है।
3: कमाल करते हैं ये अंग्रेज भी। मगर इन तब्दीलियों से फायदा?
2: बाजी झटपट खत्म हो जाती है।
3: क्यों, उन्हें हमारा खेल सुस्त लगता है क्या?
2: जी हाँ, उन्हें हमारी सवारियां भी सुस्त लगती हैं, इसीलिए तो रेलगाड़ियां आने वाली है।
3: और तार?
2: जी हाँ। तार घर तो कब के आ गए, लेकिन मुझे एक आंख भी नहीं भाते।
3: क्यों?
2: बुरी खबरें जो फौरन पहुंच जाती हैं।
3: बुरी खबरें?
2: आपने कुछ सुना नहीं?
3: हम सुनते उनते कुछ नहीं मुंशी साहब, खेलते हैं।
2: मीर साहब, हंसने से बला नहीं टलेगी। सुना है कंपनी बहादुर अवध पे कब्जा करने वाली है। यही खबर देने को तो हाजिर हुआ था मैं।
4: मुंशी साहब, आप अंग्रेजी वजह की शतरंज खेलते हैं फिर भी अंग्रेजों की चाल नहीं समझ सके। अरे भाई, ये नेपाल में लड़ाई, पंजाब में लड़ाई, अफगानिस्तान में लड़ाई, इन लड़ाइयों के लिए दरकार है पैसा, और कंपनी ठहरी कंगाल, पैसा लाए कहां से?

0: ये हैं चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी, जो सत्यजीत रे से जुड़ी निजी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं।
1: भाई, शतरंज के खिलाड़ी की याद मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट याद है। उसकी वजह यह है कि शतरंज के खिलाड़ी वो फिल्म है जहां से मेरे फिल्मी सफर का आगाज होता है।
0: बिल्कुल,
1: उससे पहले मैंने कोई फिल्म लिखी नहीं थी, मेरा कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया था। और उस जमाने में मेरी दोस्त शमा जैदी ने मुझसे कहा कि सत्यजीत रे तुमसे मिलना चाहते हैं। और पहले तो मैं समझा कि ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये कि फिर मैं सत्यजीत रे से मिलने के लिए गया, जो बॉम्बे में एक होटल में ठहरे हुए थे। बड़ा मैं हैज बैज में था कि मतलब पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्या है। लेकिन मैंने जब फोन किया तो एक बड़ी गूंजती हुई आवाज आई, क्योंकि सत्यजीत रे की आवाज जिसे इंग्लिश में बैरिटोन कहते हैं,
0: बिल्कुल
1: वो वैसी एक आवाज थी, बड़ी इम्प्रेसिव
0: जी।
1: और उन्होंने कहा कि कम आप। तो मैं चला गया और उन्होंने वो खुद दरवाजा खोला, क्योंकि वो कमरे में अकेले थे
0: जी।
1: पहली मर्तबा मैंने इतना लंबा बंगाली देखा बाल वो कोई 6 फीट से मेरा ख्याल है 1-2 इंच ऊपर ही थे
0: जी हाँ।
1: और एक बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, वो खादी का कुर्ता पजामा सफेद पहने हुए। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, वो बैठे रहे, मैं उनके सामने बैठ गया। और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो कोई जब सोचते थे तो कोई चीज चबाया करते थे।
0: अच्छा,
1: कभी वो रुमाल का कोना चबाया करते थे, कभी अपने चश्मे का डंडा चबाया करते थे। तो उनके बेचारे सारे चश्मे जितने भी थे वो सब बहुत जख्मी हालत में, वो अपने चश्मे की डंडी चबाते रहे और वो मुझे देखते रहे कुछ देर तक। और फिर कहने लगे कि अच्छा, उनको एक बात मैं बता दूं यूनुस साहब, कि उन्हें इंग्लिश और बंगला के सिवा कोई जबान नहीं आती थी।
0: और ये फिल्म उनकी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी।
1: पहली और आखिरी हिंदी फिल्म। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम टोल्ड दैट यू आर ए वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मैंने कहा साहब, आई राइट इन उर्दू एंड नोबडी कैन बी ए गुड जज ऑफ हिज ओन वर्क। इफ यू लाइक आई कैन गेट सम ऑफ माय वर्क ट्रांसलेटेड फॉर यू एंड यू कैन हैव ए लुक। तो वो कहने लगे कि नो यंग मैन, आई कैन हैव ए लुक एट यू
0: जी,
1: एंड हियर इज माय स्क्रिप्ट एंड यू आर राइटिंग द डायलॉग।
0: ओहो,
1: तो ये कुल 1.5 मिनट की मुलाकात थी सर। और मतलब वो ऐसी अजीबोगरीब मुलाकात थी कि उसे भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
0: बिल्कुल।
1: तो फिर मैं बौखला के फिर मैं भागा हुआ वहां से अपनी दोस्त शमा जैदी के गया और मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ डायलॉग कैसे लिखे जाते। तो वहां से सत्यजीत रे, अच्छा जब हमने डायलॉग लिख दिए तो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि हमने जोश में लिख तो डाले, लेकिन जो लोग बाकी लोग इन्वॉल्व थे, खासतौर से हमारे दोस्त बाद में बहुत ज्यादा बन गए सुरेश जिंदल जो प्रोड्यूसर थे
0: जी,
1: वो बेचारे बहुत घबराए हुए थे, पकड़ लिया है पता नहीं कहाँ से। और उसको इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म जिसकी पूरी दुनिया वेट कर रही है, उसके डायलॉग इन्होंने लिखवा लिए। हालांकि उस रेस में दूसरे लोग भी थे, वो जिसे फारसी में कहते हैं ना कुरै फाल बनामे मने दीवाना जदन, कि वो कुरै फाल जो था वो इस दीवाने के नाम। तो बहर हमने वो लिख दिए और सुरेश जिंदल साहब ने जो बम्बई में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, खासतौर से उर्दू जानने वाले, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ये वो पता नहीं कौन कौन, उनको बुला के बिठाया। और कोई 20 आदमियों की एक महफिल थी जिसमें मैंने वो पढ़ के डायलॉग उनको सुना दी फ्रॉम पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक
0: जी।
1: फिर अब सब चुप थे। वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अजीबोगरीब था कि सब चुप बैठे हुए, भाई पता नहीं मैंने पहली बार लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। सडनली उनकी बूमिंग वॉइस मुझे सत्यजीत रे की सुनाई दी, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है जो मैं कभी नहीं भूलता
0: जी,
1: कि I don't know what he has written, but it sounds very good.
0: वाह।
1: उसके बाद की यादें भी बड़ी प्यारी हैं कि जब फिर हम, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने लोग उनके करीब थे वो उन्हें सत्यजीत रे या कुछ ऐसा नहीं कहते थे, या मिस्टर रे नहीं कहते थे, हम लोग उन्हें मानिक दा कहा करते थे।
0: बिल्कुल।
1: जो मानिक उनके घर का नाम था। और बोधी जो उनकी बीवी हैं वो असल में उन्हें मानिक कहा करती थी, तो सभी मानिक दाई कहते थे।

कुछ दिनों के बाद फिर मानिकदा का फोन आया, कहने लगे भाई वो तुमने डायलॉग तो लिख दिए और वो बहुत अच्छे भी हैं, मैंने कई लोगों से उनको पढ़वा के तर्जमा करा के देखा और बहुत बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका शीन काफ कौन बताएगा। विल यू बी एबल टू बी द डायलॉग डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। तो गरीबी का जमाना था, मैंने अरे भाई इसे अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो मैं भाग के फौरन कलकत्ता पहुंच गया। अच्छा फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी। वहां सूरत हाल ये थी कि वो उनके जो बंगाली असिस्टेंट थे वो कलकत्ते के इंद्रपुरी स्टूडियो में एक लखनऊ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर है कि वो इसलिए नामुमकिन था कि वो बेचारे किसी लखनऊ से पहले तो खुद वाकिफ नहीं थे, और दूसरी चीज ये कि लखनऊ हो या यूपी को आप अगर इन जनरल कह लें तो वो एक कल्चर है, वो एक मिजाज है,

0: जमाना था, मैंने अरे भाई इसे अंधा क्या चाहे दो आंखें, तुम्हें भाग के फौरन कलकत्ता पहुंच गया। अच्छा फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी। वहां सूरत हाल ये थी कि वो उनके जो बंगाली असिस्टेंट थे वो कलकत्ते के इंद्रपुरी स्टूडियो में एक लखनऊ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर है कि वो इसलिए नामुमकिन था तो वो बेचारे किसी लखनऊ से पहले तो खुद वाकिफ नहीं थे। और दूसरी चीज ये कि लखनऊ हो या यूपी को आप अगर इन जनरल कह लें तो वो एक कल्चर है, वो एक मिजाज है, और कल्चर और मिजाज को आप जब तक आप उसे जिए नहीं, आप उसे बरते नहीं, आप उसे महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये तो क्या हो रहा है भाई, ये तो सब सारी की सारी चीज़ें गलत हैं। फिर हमने उसमें दखल अंदाजी की कि साहब ये तलवारें ऐसी नहीं होती थी और कपड़े ऐसे नहीं होते थे और ये चलते ऐसे नहीं थे और ये ऐसे होता था वो ऐसे होता था। फिर हम ढूंढते फिरे कलकत्ते में एक एक चीज़ पुराने ज़माने की, क्योंकि 1857 का माहौल था
1: जी।
0: तो मानिकदा बहुत इम्प्रेस हुए हमारी मेहनत से। और तो आप अगर देखें तो उसमें फिल्म में मेरा टाइटल दो मरतबा आता है, एक मरतबा एज एन असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट, और दूसरा डायलॉग राइटर।
1: ये बताएं कि जब शतरंज की खिलाड़ी बन रही थी, अब आप उसमें दो तरह से शामिल हो चुके थे, बतौर डायरेक्टर आप उनको कहां किस तरह से पाते हैं?
0: मैं जिस सत्यजीत रे को जानता हूँ, मेरा ख्याल ये है कि वो एक बेहद जहीन, बेहद समझदार और फिल्म को महसूस करके बनाने वाला डायरेक्टर था। और ये बहुत ही अहम बात मेरे लिए थी, और उसकी बहुत सारी मिसालें थीं। एक तो ये कि वो, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि उसके फोटोग्राफर जो थे, सिनेमाटोग्राफर, वो शोमेंदु रॉय थे, लेकिन ये कि कैमरा ऑपरेट मानिकदा खुद करते थे।
1: अरे वाह।
0: हाँ, वो हमेशा खुद करते थे, ज्यादातर काम वो खुद ही करते थे, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक वो खुद स्कोर करते, कंपोज करते थे, एडिटिंग पे वो खुद बैठते थे, और कैमरा ऑपरेट भी खुद करते थे। अक्सर हम लोग में से कोई अगर उनको कोई राय दे देता था तो वो उसको बड़े गौर से सुनते थे और उसको करते भी थे। उनमें वो जो एक गुरूर होता है कि साहब मैं सत्यजीत रे हूँ, तो वो मुझे नहीं दिखाई दिया। और कुछ ऐसी बातें भी थी बड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग जिन्हें सीखने का हमको मौका मिला। मिसाल के तौर पर ये कि जब मीर का घर बन रहा था सईद जाफरी का, और बंसी चंद्र गुप्त का आर्ट डायरेक्शन था, तो हम जब वहाँ पहुँचे सवेरे सवेरे देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए बंसीदा, और बंगला में बातें कर रहे थे लेकिन ये बंगला समझ में आने लगी थी, वैसे भी आसान जबान है वो, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो मीर के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, और मैं नहीं समझता कि ये जो रंग रोगन है इस हवेली का ये सही है, तो इसको थोड़ी एजिंग की ज़रूरत है। तो बंसीदा ने कहा कि हाँ मैं एजिंग कर दूंगा। और वो जाने लगे मानिकदा, और जाते जाते उनको वो एक बाल्टी दिखाई थी जिसके अंदर पेंट करने वालों ने इस खौफ से कि ब्रश सूख न जाए वो भिगो दिए थे पानी में, वो भी गंदा सा पानी वहाँ पड़ा हुआ था। एंड सडनली ही स्टॉप्ड, और उन्होंने वो ब्रश उठाया और उसको उन्होंने दीवार के ऊपर पेंट करना शुरू कर दिया। और जब वो बहुत ही गंदी मैली सी एक तह चढ़ गई, तो उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए और धब्बे चाहिए मुझे, ताकि ये एहसास हो सके कि इस आदमी की माली हालत जो है वो कैसी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैं कभी नहीं भूलता
1: जी,
0: डायरेक्शन की जो जहानत होती है वो मैं उसके लिए मैं कोट करूंगा कि एक सेट था, तो उसमें वो मिर्जा साहब जो है वो शतरंज खेलने के लिए आते हैं सवेरे सवेरे, वो आए और वो बाहर एक, उस जमाने में ब्रूट हुआ करते थे वो बड़े बड़े, मतलब 10K का जो की लाइट होती थी, तो वो एक लकड़ी का घोड़ा बना के और उसके ऊपर रख दी गई थी
1: जी,
0: बाहर की रेज जो है वो अंदर आ सके। तो उन्होंने लाइटिंग जब देखी तो उन्होंने उनसे, शोमेंदु रॉय से कहा कि इसको एक 2 फुट ऊपर कर दो। तो जी 2 फीट ऊपर करने वाली बात थी, मुझे तो कुछ इतनी समझ में नहीं आई। तो शमिंदुरा ने कहा ठीक है दादा मैं कर देता हूँ। तो मैं उनके पीछे पड़ गया, मैंने कहा कि मानिक दा ये बताइए आप, वो उससे क्या फर्क पड़ता है लाइट, आपने उसे 2 फुट ऊपर क्यों कराया? तो वो बहुत देर तक टालते रहे। फिर लंच में मैंने फिर उनको घेर लिया, हम सब लोग साथ में ही लंच करते थे।

0: और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो एक मर्तबा जब सेट पे आ जाते थे तो पैकअप बोलने के बाद ही सेट से निकलते थे, लंच में भी वो बाहर नहीं जाते, वहीं सेट पर खाना खाते। तो मैंने कहा कि ये आपने क्यों किया, थोड़ा सा चिढ़ गए, कहने लगे तुमने स्क्रिप्ट लिखा है ना। मैंने कहा हाँ। तुमने क्या टाइम लिखा है, क्या वक्त है। सुबह का वक्त है, 9:30-10 बजे का वक्त होगा। तो कहने लगे और ये मौसम कौन सा है, महीना कौन सा है। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू अस ये दिसंबर है। तो कहने लगे कि दिसंबर में लखनऊ में 10 बजे सूरज निकलता है, तो सूरज की जो किरणें हैं वो ऊपर से आएंगी, बीच में से नहीं आएंगी।
1: वाह,
0: समझे आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सूरज अभी निकला है तो उसकी जो एंगल जो होना चाहिए किरणों का वो हायर साइड पे होगा, न कि नीचे। तो ये जो बात थी वो तरीके की, वो मुझे बहुत ही बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। जब भी आते थे यहाँ बॉम्बे में तो एक दो मुलाकातें उनसे जरूर होती थी, हम उनके घर जाया करते थे, चाय के बड़े शौकीन थे वो।
1: अच्छा,
0: मुझे भी चाय का बड़ा शौक, तो मैं उस लालच में उन बहुत जाता था उनके घर, क्योंकि उनके कोई एक बहुत चाहने वाले थे जिनका दार्जिलिंग में 30 स्टेट था। तो वो हाथ से तोड़ी हुई चाय की पत्तियां उनको भेजा करते थे, वो ब्लेंडेड या ये नाम वाली चाय नहीं होती थी, और वो चाय का फ्लेवर ही अजीब होता था, और उसको वो बड़े प्यार से बना के वो उसके ऊपर लेक्चर भी देते जाते थे और समझाते भी जाते थे और पीते भी जाते थे। और गुड ओल्ड डेज के ऐसा लगता है कि यादें कल की हैं।
1: सत्यजीत रे ने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई। सन 1971 में उनकी बनाई डॉक्यूमेंट्री थी सिक्किम। इसके बाद सन 1987 में उन्होंने अपने पिता पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई सुकुमार रे। सन 1976 में आई डॉक्यूमेंट्री बाला और सन 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर पर एक डॉक्यूमेंट्री आई। सन 1972 में उन्होंने द इनर आई नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस तरह सत्यजीत रे न सिर्फ फीचर फिल्में बनाते थे बल्कि डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने में भी उनकी अच्छी खासी रुचि थी। सत्यजीत रे केवल सिनेकार ही नहीं थे, वे चित्रकार भी थे, संगीतकार भी थे और लेखक भी। बच्चों के लिए उन्होंने अपार लेखन किया। 23 अप्रैल 1992 को सत्यजीत रे इस असार संसार को छोड़कर चले गए। महान फिल्मकार कुरुसावा ने सत्यजीत रे के लिए कहा था, सत्यजीत रे का अवलोकन बड़ा गहरा और खामोश होता है। उनकी फिल्मों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। वो अपने आप में एक विशाल फिल्म इंडस्ट्री है। अगर आपने सत्यजीत रे का सिनेमा नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपका जीवन वैसा ही है जैसे आप धरती पर तो रहे मगर आपने सूरज और चांद पर नजर नहीं डाली। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

फिल्म संसार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
2: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में है।

0: उम्मीदवारों की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता से संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। आज से राज्य में घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी जो 31 मई तक चलेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के तहत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मछुआरा समुदाय के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। कल श्रीकाकुलम जिले के एराकुलम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व निधि से मत्स्य सागरमाला कार्यक्रम के तहत स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मछुआरों की समस्याओं को समझा था और उन्हें दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने शैक्षिक सामग्री वितरण में जवाबदेह के लिए एक नई केंद्रीकृत खरीदी नीति लागू की है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य के विद्यार्थियों को सभी जरूरी शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 15 जून तक की समय सीमा निर्धारित की है। एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म, नोटबुक और अन्य शैक्षिक सामग्री समय पर मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी पुष्टि सरकारी मीडिया ने की है। श्री ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया। फ्रांस समाचार एजेंसी सहित ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। ये राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ते हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सेंस में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल की। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चाओ तीन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जियो हिंगसांग चे को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिंचू यू को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। फुटबॉल भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 3 के मोहल्ला कटडिहरी में विकास कार्य और योजनाएं विषय पर

0: श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है विकास कार्य तथा योजनाओं से संबंधित जानकारियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान और इस अंक के साथ मैं लाल बहादुर दुबे। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 3 के मोहल्ला कठडिहरी के बारे में। सासाराम शहर से उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कठडिहरी। पहले यह महद्दीगंज ग्राम पंचायत का भाग था, लेकिन सासाराम नगर निगम बनने के बाद यह नगर निगम के वार्ड नंबर 3 का भाग हो गया है। कठडिहरी में रहने वाले अधिकांश लोगों की जीविकोपार्जन का साधन कृषि एवं मजदूरी है। कठडिहरी जाने के लिए पायलट बाबा धाम के पास से वहां पहुंचने का मार्ग है, साथ ही करमडिहरी गाँव से भी होकर कठडिहरी पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा सेमरा विद्यालय जो कि सासाराम आरा रोड में स्थित है, वहां से पिपरी होते हुए भी कठडिहरी पहुंचा जा सकता है। कठडिहरी में गली नाली पक्की दिखाई पड़ी, बिजली के पोल पर कवर्ड तार देखने को मिला। कठडिहरी के पश्चिम तरफ एक मध्य विद्यालय है जहां बच्चों को पढ़ने की सुविधा है। श्रोताओं, ये तो रही नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 3 के मोहल्ला कठडिहरी की बाहरी स्थिति जो हमें देखने को मिला, लेकिन वास्तव में वहाँ विकास की क्या स्थिति है, नाली गली पेयजल शिक्षा स्वच्छता स्वास्थ्य सुविधा के बारे में मोहल्ला वासियों का क्या कहना है, सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं का लाभ वहाँ रहने वाले पात्र लोगों को क्या मिल रहा है, इन सभी जानकारियों के लिए हमने संपर्क किया कठडिहरी के लोगों से और बातचीत की। विषय है रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 3 के मोहल्ला कठडिहरी में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं, आज हम रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र सासाराम स्थित वार्ड नंबर 3 के मोहल्ला कठडिहरी में उपस्थित हैं। तो आइए कठडिहरी के कुछ लोगों से मिलते हैं और बातें करते हैं। जी, आप अपना परिचय दें।
1: मैं कृष्णाकांत दुबे, ग्राम कठडिहरी।
0: जी, ये बताइए कठडिहरी तो अब नगर निगम क्षेत्र में शामिल हो गया है।
1: हाँ।
0: अभी विकास की क्या स्थिति है?
1: देखिए, विकास के नाम पर तो ज़्यादा काम नहीं हुआ है। अभी नया नया ही नगर निगम बना है, थोड़ा बहुत हम लोग को मतलब लाभ मिल रहा है, जैसे कि झाड़ू उड़ू लगता है, नाली उली भी उतना भी ढंग का नहीं है। अभी पानी उनी का वैसा व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर तो काम हुआ है नल जल का, लेकिन वो सब चालू नहीं है। देखने में सब कुछ है लेकिन काम में कोई नहीं।
0: यानी कि नगर निगम क्षेत्र बनने के बाद उस तरह का विकास नहीं हुआ जैसी अपेक्षा थी?
1: जैसा अपेक्षा था वैसा विकास अभी तक नहीं हुआ।
0: बताइए कि पहले से गाँव में क्या स्थिति है, नाली गली कैसी है?
1: देखिए, पहले से तो कुछ अच्छा है, पहले से कुछ अच्छा है, लेकिन अभी भी समस्या जो नगर निगम में हम लोग आ गए हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ सुविधा हम लोग को नहीं मिल रहा है। जैसे कि अभी लाइन का समस्या है, लाइन हमेशा कटते रह रहा है, व्यवस्था बढ़िया नहीं है,
0: जैसे बिजली की यहाँ पर अभी समस्या रहती है।
1: हाँ, समस्या अभी है। अभी उधर भी तो कुछ ठीक था, लेकिन इधर भी तो बहुत खराब स्थिति में है।
0: बिजली में कुछ छूट सरकार दे रही है, उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है?
1: हाँ, लाभ मिल रहा है। जो अभी सरकार की तरफ से जो मतलब हुआ है कि 125 यूनिट के बाहर जो आएगा उसका पैसा हम लोग को देना है, तो उसमें हम लोग लाभ कुछ ले रहे हैं।
0: और यहाँ पर पानी की बात आपने बताई कि पेयजल की सुविधा आप लोगों को नहीं मिल रही है, तो नल जल का सप्लाई हो रहा है कि नहीं?
1: सप्लाई शुरू हुआ था, इसके बाद बिल्कुल बंद है। बाद में कुछ काम भी चला लेकिन वो सक्सेस नहीं है, बिल्कुल बंद है। घर का पानी पीते हैं। जैसे नगर निगम में आने के बाद ढेर सारी सुविधा है जो कि मिलता है, वो सब सुविधा हम लोग के पास अभी नहीं पहुँच रहा है। झाड़ू सर सफाई होता है।
0: ये बताइए यहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है?
1: अभी तो पहले से कुछ अच्छा स्कूल चल रहा है, पुराना स्कूल था, अभी उसमें काम हम चल रहा है, बच्चे जाते हैं पढ़ने उड़ने के लिए।
0: किस कक्षा तक विद्यालय?
1: 8 तक है।
0: मध्य विद्यालय?
1: हाँ, मध्य विद्यालय है।
0: वहाँ पर रूम वगैरह ठीक है? शिक्षक
1: नया नया नया अभी बन रहा है, पहले से तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी नया नया बन रहा है रूम।
0: यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है कि नहीं?
1: आंगनबाड़ी केंद्र है, ठीक ठाक चलता है, बच्चे लोग जाते हैं उसमें।
0: स्वास्थ्य सुविधा के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था, जैसे मान लीजिए अचानक कोई बीमार पड़ जाए तो सासाराम जाना पड़ता है कि है आसपास?
1: नहीं, ऐसा कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं है। जैसे कि हम लोग के नगर निगम में पहले पंचायती स्तर पर गोठपा है, लेकिन वहाँ आदमी पहुँच नहीं पाता, इसलिए कि जितना उधर हम लोग जाएंगे उतना सासाराम नजदीक में है, तो ज़्यादातर हम लोग सासाराम जाते हैं, यहाँ गाँव में कोई व्यवस्था नहीं है।
0: तो ये तो कुछ बातें रही विकास की। अब बताइए सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ रहने वाले जो पात्र लोग हैं उनको मिल रहा है?
1: अभी तो हमको लगता है कि 20-30%

0: के अनुसार मिल रहा है, पूरा सुविधा नहीं है।
1: जैसे राशन कार्ड की हम बात करें तो राशन कार्ड यहाँ पर लोगों को है उपलब्ध नहीं जो इसके पास?
0: यहाँ राशन मिलता है, अभी तो बीच में बहुत से कार्ड कट चुका है, बहुत लोगों का नाम कट चुका है, लेकिन मिलता है।
1: खेती वाली जमीन जिसके पास होगी, जो गृहस्थ होंगे, उन्हें कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है?
0: ब्लॉक स्तर से कभी कुछ आता है तो?
1: ब्लॉक स्तर नहीं, 2,000 रुपए 3 बार।
0: हाँ अच्छा, वो प्रधानमंत्री तो उसमें मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, नाम कट गया उसमें भी।
1: आपके घर में कोई सदस्य?
0: मेरा भी था, पहले आता था, बीच में कट चुका है, मतलब आ नहीं रहा है। बात किए थे कुछ हम लोग, कागज में ट्रबल था, जैसे KYC कराना था
1: जी। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको घर नहीं होगा, घर नहीं होने के चलते उन्हें आवास योजना का लाभ मिलता है?
0: बहुत लोग हैं, आवास का योजना मिला है, अभी कुछ स्कीम जो अभी नया आया था तो उसमें मिला है, लेकिन ऐसे अभी बहुत लोग हैं जिनको कि नहीं मिला है, वाकई में उनको मतलब इसका लाभ मिलना चाहिए।
1: क्या कहना चाहेंगे, क्या जरूरी है?
0: नगर निगम होने के बाद वही बिजली बढ़िया रहना चाहिए, पानी का सुविधा होना चाहिए, सर सफाई होना चाहिए
1: जी। धन्यवाद, आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं जी। आप अपना नाम बताएं।
2: श्री भगवान दुबे।
1: कितनी उम्र होगी?
2: उम्र करीब 70।
1: अच्छा
2: हाँ, 70 पारे होकर
1: जी। तो ये बताइए, गांव में क्या स्थिति है, यहाँ पर विकास कैसा है, पहले और आज में देखते होंगे कैसा लग रहा है?
2: नल जल योजना है, जब से गला है तब से आज तक पानी नहीं दिया, फिर रिपेयरिंग हुआ उसमें पानी नहीं दिया,
1: पानी की समस्या है।
2: हाँ
1: अच्छा, नाली गली कैसी है?
2: नाली गली मेन मान ठीक है, कोई दिक्कत नहीं
1: है। बिजली मिलती है आपको?
2: बिजली मिलेगा, आवता जाता
1: जी। सरकार बिजली में कुछ छूट दे रही है, 125 यूनिट उसके अंदर जो रह रहे हैं उसका बिजली माफ हो जा रहा है, इसका लाभ मिल रहा है आप लोगों को?
2: हाँ मिलता है
1: जी जी। और नल जल का
2: एकदम सेवा नहीं, मैंने एकदम नहीं आता है, ये चापा कल चलता काड़ा चलता,
1: पूरा गर्मी में चापा कल चलता है कि वो अभी बंद हो जाता है?
2: वो भी बंद हो जाएगा, अभी न दिक्कत है तब तब।
1: अच्छा, बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं?
2: कठडीहरी विद्यालय।
1: क्या स्थिति है, विद्यालय बढ़िया है?
2: विद्यालय ठीक है, पढ़ाई लिखाई सब ठीक है, मिनिमम साधारण में चल।
1: अच्छा, आपकी उम्र 70 साल से ऊपर है, वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, जो बूढ़ा पेंशन का?
2: हाँ मिलता है।
1: अच्छा, राशन कार्ड है कि नहीं?
2: राशन कार्ड तो था तो खत्म हो गया, राशन नहीं मिल रहा है।
1: अच्छा, देखिए आपकी उम्र 70 साल है, तो जो व्यक्ति 70 साल या उससे ऊपर हो जाते हैं उनका आयुष्मान कार्ड भी बनता है, बनवाए हैं?
2: हाँ बना है
1: जी। और बताइए, गांव में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका घर नहीं होगा तो सरकार के तरफ से कॉलोनी मिलती है, मिली है गांव में कुछ लोगों को?
2: हाँ बहुत लोगों को मिली है।
1: खेती करते हैं, अपनी जमीन है ना?
2: हाँ करते
1: तो
2: हैं।
1: किसान सम्मान निधि, कृषि सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री जी के तरफ से 2,000 रुपए 6,000 आते हैं साल में, मिल रहा है?
2: अच्छा, तो उन्हें आ रहा था, अब इधर बंद है,
1: पता करना चाहिए किस लिए बंद है, बाकी सब कुछ तो ठीक है ना गाँव?
2: हाँ सब ठीक है
1: जी जी। धन्यवाद, आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम श्याम बाबू कुमार पड़ेगा।
1: कहाँ के रहने वाले हैं?
3: जी ग्राम कठडीहरी के रहने वाले हैं
1: जी। अच्छा, ये बताइए कठडीहरी में विकास की क्या स्थिति है अभी?
3: विकास तो सर क्या हम बता सकते हैं, अभी देखिए कि ये पानी टंकी लगा हुआ है, 5 साल से सर लगा कर लोग गए, आज तक उसका हम लोग पानी तक भी नहीं जाने।
1: सिर्फ टंकी की बात मत, पूरे गांव विकास के मतलब हर चीज होता है। ठीक है, पानी की समस्या होगी आपकी, यहाँ गली की स्थिति बताइए, नाली की बताइए, क्या स्थिति है?
3: बढ़िया है,
1: नाली गली हर जगह ठीक है?
3: जी जी बढ़िया है।
1: तो बरसात के समय में तो कहीं आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती होगी?
3: पहले होता था लेकिन अब बढ़िया है।
1: सफाई रहती है?
3: जी जी सफाई तो रहती है, कचरा वाले भी आते हैं घर से, कचरा लेकर जाते हैं, झाड़ू भी लगता है गाँव में जी।
1: पानी की बात आपने बताई, पेयजल की समस्या है?
3: सबसे पहले देखिए पेयजल के ही समस्या है, ये गर्मी के दिन में बताइए कि सरकार जो एस्टिमेट दिए हैं उसको आप लगाएं तो उसको चालू करना चाहिए ना।
1: गर्मी में तो पानी की और भी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है
3: जी जी जी,
1: जानवर से लेकर मनुष्य तक हर किसी को
3: जी सर।
1: तो यहाँ पर पेयजल की समस्या है, तो लोग घर का पानी पीते हैं चापाकल का?
3: जी जी चापाकल का हम पानी पीते हैं।
1: गर्मी में क्या स्थिति रहती है, चापाकल भी ठीक चलता है?
3: टंगा जाता है सर, वो भी समस्या हो जाता है।
1: बिजली की क्या स्थिति रहती है आपके गांव?
3: बिजली की स्थिति ठीक रहता है सर,
1: बिजली सुचारू रूप से मिलती है?
3: जी जी जी।
1: बिजली में सरकार की तरफ से कुछ छूट भी मिलती है?
3: छूट भी मिल रही है
1: जी,
3: 25 यूनिट
1: 125
3: वही मैंने 125 यूनिट
1: जी। शिक्षा के बारे में बताइए, यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए विद्यालय है?
3: जी जी विद्यालय है, तो एक आंगनबाड़ी है और एक वहाँ पे सरकारी स्कूल है, उसमें लोग बच्चे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए गांव का। कुछ
1: आंगनबाड़ी क्या स्थिति रहती है?
3: आंगनबाड़ी की स्थिति तो सर ठीक रहती है, लेकिन थोड़ा सा वो खराब हो गया है, कब ढह जाएगा बच्चा, उसमें कब जाता के मर जाएगा, उसको भी कोई छानबीन कर

0: वाला नहीं है।
1: आंगनबाड़ी का वो बना हुआ मकान है वह जर्जर अवस्था में है।
0: जी, वहाँ पे चल के देखने लायक है।
1: अरे
0: उसमें
1: बच्चा को हम भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर मान के चलिए कि सर जाता कर हमारा बच्चा मर जाएगा। यानी घटना हो जाए तो बहुत दुखद न बात होगी,
0: दुखद का बात होगा। इस पर सरकार को ध्यान नहीं है।
1: इस पर अपने सबसे पहले जो आपके वार्ड सदस्य है, मैं उनसे एक बात करनी चाहिए कि इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो बच्चों को कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित करके पढ़ाया जाए।
0: सही बात है सर।
1: स्वास्थ्य सुविधा के लिए आपके आसपास में कोई व्यवस्था, लोग बीमार पड़ जाए तो
0: सासाराम भीड़ है सर।
1: अच्छा,
0: यहाँ से गाड़ी घोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है।
1: कितना दूर पड़ता है आपके?
0: यहाँ से आपको 7 किलोमीटर पड़ता है सर।
1: तो मान कर चलिए कि आधा घंटा 25 मिनट में।
0: वही
1: सड़क व्यवस्था बढ़िया है ना?
0: बढ़िया है, रोड भी बन गया है।
1: जो यहाँ से डेरे से निकलते हैं तो किस तरफ से आपको आराम पड़ता है सासाराम?
0: हमको यहाँ से निकलते हैं तो सर हमको मिश्रीपुर में आराम पड़ता है। ये कैसे कि शॉर्टकट रास्ता है, ये जो पायलट बाबा वाला जो रास्ता ये घुमाऊ रास्ता है, और ये जो कुराइच वाला भी रास्ता है सर तो ये भी घुमाऊ रास्ता है। हम लोग को शॉर्टकट रास्ता यही पड़ता है मिश्रीपुर महदीगंज के लिए, और वहाँ पे हम लोग को बड़ बाजार धर्मशाला के पास लगता है सर, वहाँ पे हम लोग को सब।
1: अच्छा, ये बताइए कि विकास के अलावा सरकार के तरफ से बहुत सी योजनाएं भी संचालित होती हैं जो पात्र लोग होते हैं उनके लिए, तो गाँव में कुछ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है?
0: जी, इसका लाभ मिल रहा है।
1: आपके घर में राशन कार्ड का लाभ मिलता है?
0: जी।
1: तो जिनका राशन कार्ड है उनके लिए आयुष्मान कार्ड ही बनता है?
0: जी, बना हुआ है।
1: बना हुआ है
0: जी।
1: राशन समय से दे देते हैं?
0: जी सर, राशन तो ऐसे तो समय से देखिए नहीं मिलता है, लेकिन वो कोटा पूरा हो जाता है, आगे पीछे लगता है।
1: और कॉलोनी के यहाँ पर कुछ पात्र हैं कि नहीं मिला है?
0: हमको तो सर कॉलोनी भरे थे लेकिन आज तक कॉलोनी नहीं मिला है।
1: देखिए, योजनाएं उसी के लिए चलती हैं जो उसके पात्र हैं। अगर गरीब हैं जिनके पास समस्याएं हैं घर की, उन्हें मिलना चाहिए।
0: मिलना चाहिए, सरकार को ध्यान रहना चाहिए।
1: क्या कहना चाहेंगे?
0: हम क्या कहेंगे, हम तो सब ठीक है कहेंगे, सब ठीक है।
1: नहीं, जो समस्या है उसकी बातें होनी।
0: समस्या के देखिए सब हमारे गांव में समस्या सब ठीक है सर, बशर्ते एक ही समस्या है कि आपसे बताएं कि पेयजल
1: और बच्चों के जो आंगनबाड़ी के।
0: आंगनबाड़ी है सर, 2 कंप्लेन बताएं, ये देखने वाला चीज है।
1: जी, धन्यवाद। श्रोताओं, नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 3 के मोहल्ला कठडेहरी के कुछ और लोगों से की गई बातचीत हम थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको सुनवाते हैं एक गीत। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रवि, और फिल्म है गंगा तेरा पानी अमृत।

0: इस गीत के बाद आइए चलते हैं लोगों के बीच। श्रोताओं, आज हमारी बात हो रही है रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र सासाराम स्थित वार्ड नंबर 3 के मोहल्ला कठडियरी के लोगों से, और जान रहे हैं विकास कार्य तथा योजनाओं के बारे में। आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं और बातें करते हैं। क्या नाम है आपका?
1: अरुण दुबे।
0: कहाँ के रहने वाले हैं?
1: कठडियरी।
0: आप पहले भी देखे होंगे, आज देख रहे हैं, क्योंकि अब तो ये गांव आपका वार्ड नगर निगम क्षेत्र सासाराम में सम्मिलित हो गया है, मोहल्ला भी कह सकते हैं इसको। क्या स्थिति है, पहले से कुछ बदलाव लगता है?
1: अभी कोई बदलाव नहीं है। हमारे यहाँ 90% से ज्यादा, 95% बोलिए, खेती पे ही निर्भर है। यहाँ कुछ है नहीं तो खेती के कारण सभी अभी मतलब यहाँ गांव का ही माहौल है। अच्छा, वार्ड में आने से कोई फायदा नहीं है, वार्ड में अभी जरूरत भी नहीं था।
0: अच्छा, गांव का ही अभी माहौल है और यहाँ पर ज्यादातर लोग कृषि कार्य करते हैं। क्या स्थिति रहती है यहाँ पर किसानों की, पटवन उटन के साधन के बारे में बताइए।
1: गांव के पास से ही नहर है, लेकिन यहाँ पे ना किसी भी तालाब की सफाई है और ना कोई करहा है ऐसा जो सरकार दे के जरवा के पटवन के लिए भी सुविधा दे।
0: क्यों, करहा तो बना होगा? जो
1: करहा है वही है, सब जाम है। उसको सफाई करने का करहा के 2-3 साल पे झाड़ के कि पानी अच्छे से पहुँच सके। पानी खेत में पहुँचने से पहले दूसरे का खेत डूब जाता है।
0: गेहूँ के समय में ज्यादातर पटवन दिक्कत होती होगी, क्योंकि धान तो खैर पट जाता होगा।
1: गेहूँ के समय में ही ज्यादा दिक्कत होता है, सब मोटर से पटाना पड़ता है पानी के वजह।
0: गांव में गली नाली की क्या स्थिति है?
1: गली नाली ठीक है, अभी सफाई जो वार्ड है वो टाइम पे सफाई कर्मी आते हैं, नली के लिए भी और कूड़ा के लिए भी।
0: गली भी पूरा कंप्लीट है, बन गया है?
1: लगभग गली कंप्लीट है। नली का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि नली बना हुआ है खुले में, उसको ढकवा के अच्छे से।
0: बिजली की क्या स्थिति है आपके गाँव में?
1: बिजली तो अब लगभग ठीक है, लेकिन दिन में बहुत इस समय कटता है। और एक ट्रांसफार्मर खेत में है जिससे हर बार डर रहता है गेहूँ के सीजन में की आग लग के।
0: देखिए, बिजली विभाग के तरफ से जो गर्मी का दिन, अभी तो खैर गेहूँ अब का लगभग कट चुका, तो इससे पहले कुछ दिन के लिए बिजली दिन में बंद कर दी जाती थी कि क्यों आग न लगे। बिजली में सरकार की तरफ से कुछ छूट भी दी जा रही, इसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है?
1: मेरा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत लोगों को ये लाभ मिल रहा है। 125 यूनिट का लगभग,
0: आपका लाभ क्यों नहीं मिल रहा?
1: हम लोग का ज्यादा उससे हो जाता
0: है। 125 तो आपको छूट होगी, 125 छूट के बाद ही लगता होगा। 125 यूनिट की छूट मिल रही है। यहाँ पर पानी की समस्या सब लोग बता रहे हैं, पेयजल की।
1: हमारे यहाँ पहले 35-40 फीट पे पानी मीठा वाला अच्छा था, निकल रहा था, लेकिन अब लेयर भागने के कारण हर कल और पानी की समस्या बहुत हो गई है। यहाँ पे मोटर किसी का है नहीं जो समरसेबुल 100 फीट से ज्यादा हो पानी आए, और 40 फीट का लेयर भागने के कारण बहुत लोगों का कल बंद हो जाता है, तो पानी का समस्या। तो
0: सरकारी जो नल जल योजना है
1: वो तो बिल्कुल फेल्योर है, उससे किसी को 2 दिन का भी लाभ नहीं है।
0: अच्छा, जो बच्चे हैं आपके गाँव के, इनको पढ़ने के लिए सुविधा है ना?
1: सरकारी विद्यालय है यहाँ पे।
0: सरकारी विद्यालय
1: ठीक है, टाइम से टीचर अभी आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, स्कूल का व्यवस्था अभी बन रहा है, और भी नया बिल्डिंग अब पहले से भी बैठने के लिए अच्छा हो गया पहले।
0: अब बताइए, सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ आपको, आपके घर के सदस्यों को मिल रहा है?
1: सरकारी ये जो पीएम से मिलता है,
0: किसान सम्मान वाला,
1: वो सम्मान वाला मिलता है।
0: घर में कोई वृद्ध सदस्य भी है, बूढ़े लोग
1: नहीं?
0: तो क्या अभी लगता है कि यहाँ पर जरूरी है?
1: जरूरी यहाँ पे सरकार को थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, ताकि वार्ड में आ गया है, सड़क नाली के अलावा भी यहाँ पे शिक्षा के लिए और जो मूलभूत सुविधा है
0: जी मिलनी चाहिए,
1: उसके लिए मिलनी चाहिए
0: जी। धन्यवाद। श्रोताओं, अगले व्यक्ति से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: असलम अंसारी
0: जी। कहाँ के रहने वाले हैं?
2: कठडिहरी।
0: क्या स्थिति है अभी?
2: अभी पहले से बहुत बेहतर है, नली गली का भी विकास हुआ है, ठीक हुआ है, बढ़िया है काम। और लाइन बिजली जो है, बिजली थोड़ा सा गड़बड़ रह रहा, बिजली का स्थिति ठीक नहीं है। आ रहा तो मतलब कब जा रहा, मतलब कब आएगा, कोई इसका गारंटी नहीं है। थोड़ा सा भी हवा चल रहा, दिन दिन भर गुल हो जा रहा बिजली।
0: 125 यूनिट की छूट भी मिल रही है,
2: वो तो बेहतर है, वो तो बहुत बढ़िया है। पहले से बिजली भी मतलब 0 ही आ रहा, मतलब जिसका ज्यादा चल रहा मतलब वो तो उसको उसका तो आ रहा, लेकिन पहले से मतलब बेहतर है बिजली।
0: अच्छा, पीने वाला पानी यहाँ आप लोगों को मिलता है जो सरकारी नल जल योजना?
2: नहीं नहीं, ये सरकारी नल जल एकदम फेल है, कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए क्या है, पड़ा हुआ है, मतलब उसमें पानी नहीं आता है। जब से मतलब बना है तब से चालू नहीं है ये।

0: पानी नहीं आया है, बहुत दिक्कत है, पानी उठाइए नहीं रहा चापाकल, एकदम परेशानी है, एकदम कल भी नहीं चल रहा, मोटर भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, बहुत दिक्कत होती है पानी की।
1: यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय है कि नहीं?
0: हाँ, सरकारी विद्यालय है।
1: क्या स्थिति है वहाँ?
0: अभी तो फिलहाल ठीक है, ठीक चल रहा विद्यालय का।
1: और आंगनबाड़ी केंद्र?
0: आंगनबाड़ी का भी ठीक ही है, थोड़ा सा जल्दी हालत हो गया है आंगनबाड़ी का, मतलब उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
1: जो रूम है,
0: रूम है वो थोड़ा सा। हाँ
1: अच्छा, सरकारी योजना के बारे में बताइए, कुछ उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है?
0: राशन कार्ड हम लोग का नहीं है।
1: कॉलोनी मिली है कि नहीं?
0: नहीं, हम लोग को नहीं मिला।
1: कॉलोनी के पात्र हैं आप? जो कॉलोनी तो उसी को मिलती है जिसका घर वगैरह नहीं होता है।
0: हाँ तो है हम लोग, लेकिन हमको मिला नहीं है कॉलोनी।
1: और कोई लाभ लेते हैं क्या सरकार के तरफ से, जो योजनाएं हैं उसका?
0: किसान सम्मान निधि का वो मिलता है मुझे।
1: घर में कोई बूढ़े लोग भी हैं?
0: हाँ, एकदम ज़ईफ है, एकदम वृद्ध है।
1: तो वृद्धा पेंशन योजना का लाभ
0: उनका मिलता है।
1: जी धन्यवाद। श्रोताओं, एक महिला से मिलते हैं और इनसे जानते हैं। पहले नाम बताइए, आपका नाम क्या है?
2: हमारा नाम उर्मिला कुंवर है
1: जी। कटहरी के रहने वाली है ना?
2: कटहरी के रहने वाली
1: जी। गांव में नाली गली की क्या स्थिति है अभी?
2: गांव में नाली गली के तरीका देखिए रहे, नाली गली जन बना है तो इधर भी बना है, तो अभी जो ठीके है अभी, अब तो ठीक है ना कहेगा।
1: अच्छा, पीने वाला पानी आप लोगों को मिलता है?
2: पानी पीने वाला वो जो पानी जो लगल है तो अभी तक हम लोग देखे नहीं की पानी दे रहा है,
1: मैंने खाली लग भर गया है पानी।
2: हाँ
1: अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए सुविधा है कि नहीं? बच्चे
2: बच्चन के पढ़ने का
1: कहाँ जाते हैं?
2: हाँ हाँ है, पश्चिम भर
1: आंगनबाड़ी केंद्र भी है।
2: हाँ, आंगनबाड़ी का है, छोटा छोटा बच्चा लोग जाता है लोग।
1: आपकी उम्र क्या है?
2: अरे अब हमारा उम्र ढेरे हो गया।
1: कुछ लाभ मिलता है सरकार के तरफ से? सरकारी
2: मिलता है, मिलता है 1100
1: पेंशन योजना।
2: हाँ 1100 रुपया मिलता है, झूठ कह के बोलेंगे।
1: कुछ लोगों को यहाँ पर कॉलोनी भी मिली है?
2: हाँ, जो सब गरीब आदमी के कितना के मिला है, कितना के नहीं मिला है।
1: आप लोगों को राशन कार्ड का लाभ मिलता है कि नहीं?
2: हाँ मिलता है।
1: जिनका राशन कार्ड होता है उनका आयुष्मान कार्ड भी बनता है जिसमें 5 लाख तक इलाज होते हैं, बना है?
2: ना हम लोग का नहीं बना है।
1: बाकी स्थिति ठीक है ना गांव में?
2: हाँ ठीक है।
1: धन्यवाद। श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 3 के मोहल्ला कठडिहरी के लोगों से की गई हमारी बातचीत। विषय था रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 3 के मोहल्ला कठडिहरी में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं, यदि आप भी अपने गांव मोहल्ला में हुए विकास कार्यों के बारे में बातचीत करना चाहते हों या आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपने लिखा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन 8211115। पत्र के अलावा आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanisasaram akashvanisasaram@gmail.com। श्रोताओं, समय अब आपसे और अधिक बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान अब यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह एक नई जानकारी लेकर हम पुनः आपके बीच होंगे, आज ही के दिन ठीक इसी समय। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे, नमस्कार। कार्यक्रम संकलन एवं सूत्रधार लाल बहादुर दुबे और प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। इसमें हम आपको सुना रहे हैं भोजपुरी एल्बम से लोकगीत। आरंभ में सुनते हैं शारदा सिन्हा के स्वर में ये पारंपरिक रचना।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोता विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे कशिश सिन्हा के स्वर में पारंपरिक भक्ति रचना, और इसी के साथ लोकमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी सासाराम है, हमारे केंद्र से अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम रसधार में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बजरंग बली गुण गावे जमाना। विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे राजेश तिवारी रतन के स्वर में ये हनुमान भजन। आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधार। इसके अंतर्गत हम आपको सुना रहे हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। अब लीजिए सुनिए तनु प्रियंका के स्वर में राजा राजेश तिवारी की रचना।

रसधार कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए आलोक कुमार और ज्योति तिवारी की आवाजों में अशोक कुमार दीप और मोतीलाल मंजुल की रचना बोल है।

0: और इसी के साथ रसधार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। पूर्वाह्न के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। जी दोस्तों, चित्रपट संगीत की शुरुआत कर रहे हैं इस गजल के साथ। गायिका हैं जगजीत कौर, फिल्म का नाम है बाजार। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

और आइए अब सुनते हैं खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में शहरयार की रचना, स्वर तलत अजीज का, और फिल्म का नाम है उमराव जान।

खय्याम साहब के ही संगीत निर्देशन में हम आपको जानिसार अख्तर की रचना सुनवा रहे हैं। आवाज़ लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है शंकर हुसैन।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: जी हाँ दोस्तों, आपकी चिट्ठियों का हमें बेसब्री से इंतजार है। आज ही सुनेंगे आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत दोपहर 3 बजे।

यह अवस्थी चित्रा सिंह की फिल्म का नाम था साथ साथ। इसे लिखा था जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी कुलदीप सिंह ने। और लीजिए अब सुनिए आशा भोसले के साथ भूपेंद्र को, फिल्म का नाम है एतबार। इस गीत को हसन कमाल ने लिखा है और धुन बनाई है बप्पी लहेड़ी ने।

पेश खिदमत है कार्यक्रम की आखिरी गजल। मदन मोहन का संगीत है, साहिर लुधियानवी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है आज का मैटिनी शो। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम की ये है पहली कड़ी और इस कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ फिल्मी गपशप। क्यों, कैसा रहेगा दोस्तों? अच्छा रहेगा ना? देखिए ना, दोपहर का वक्त है और ऐसे समय में अगर हल्की फुल्की गपशप हो जाए तो

इन्हें ही क्या। अच्छा, हम आपको बता दें कि आपको पता ही है कि कल 1 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया था, है ना? तो क्यों ना आज इसी पर हम मैटिनी शो कर लेते हैं। देखिए ना, मजदूरों की मेहनत, संघर्ष और उनकी मजबूरियों को दर्शाने वाली कितनी ही बेहतरीन फिल्में बनाई गई हैं ना, जो समाज के इस अहम वर्ग की कहानी को बयां करती हैं। तो हमारी बहुत सारी फिल्में इसी श्रम पर बनी हैं। चलिए तो आज के इस कार्यक्रम में कुछ समय उन आइकॉनिक फिल्मों के लिए निकालते हैं जो मजदूरों के अधिकारों और संघर्ष के बारे में बताती हैं, श्रम के महत्व के बारे में बताती हैं। सबसे पहले 1957 की फिल्म नया दौर की बात करते हैं। जी हाँ, वही नया दौर। इसके गीत तो आप सभी को बहुत पसंद हैं। इस फिल्म को भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर माना गया है और इस फिल्म में दिलीप कुमार अपने साथी मजदूरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। इस फिल्म में दिलीप कुमार, वैजयंती माला अपने अद्भुत अभिनय से हमारा मन मोह लेती हैं और इस फिल्म का ये गीत साथी हाथ बढ़ाना एक अमर गीत बन गया हो जैसे।

0: फिल्म नया दौर में अभी आपने मोहम्मद रफी आशा भोंसले को सुना, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और ओपी नैयर साहब की धुन थी ये। दोस्तों, दुनिया भर में हर साल हर दिन यानी साल का जो पहला दिन है मई का, उसे हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अन्य दिनों में इस वर्ग के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि ये वर्ग इतना अहम है हमारी ज़िंदगी के लिए कि बड़े पर्दे पर हमेशा से ही आम आदमी के जीवन और उससे जुड़ी समस्याओं को बखूबी दिखाया गया है। अगर हम हिंदी फिल्मों की बात करें तो पुराने समय से ही फिल्मों में मजदूर और उसके संघर्ष को फिल्माया गया है। समाज में अपना अहम योगदान देने वाले इन मजदूरों के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिनका जिक्र हम अक्सर करते हैं और ऐसी फिल्मों को हम पसंद भी करते हैं, और ये फिल्में अपने समय की आइकॉनिक फिल्में बन गई हैं और इन फिल्मों को हम कभी नहीं भूल पाते हैं। अगर 1953 की फिल्म दो बीघा ज़मीन की मैं बात करूँ तो आप ज़रूर मेरे हाँ में हाँ मिलाएंगे, है ना। देखिए, 1953 में ये फिल्म आई थी, दो बीघा ज़मीन, बिमल रॉय की फिल्म थी और बड़ी ही क्लासिक फिल्म थी। एक किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए शहर में रिक्शा चलाने के संघर्ष पर ये पूरी फिल्म बनाई गई, जो श्रमिक वर्ग की परेशानी को बहुत ही मार्मिकता के साथ दिखाती है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।
1: भाई रे,
0: ये स्वर लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों के हैं, दो बीघा जमीन के लिए। शैलेंद्र ने इसे लिखा और सलील चौधरी ने संगीत में ढाला। क्या शानदार गीत है।

जी हाँ, तो इस समय हम मैटिनी शो पर बात कर रहे हैं, आज मजदूरों पर, श्रमिकों पर और श्रम पर। आप सभी जानते एक फिल्म आई थी बूट पॉलिश, 1954 में बनी राजकुमार की, राज कपूर साहब की, क्षमा कीजिए, फिल्म जो थी गरीबी, अभाव और विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी, आत्मसम्मान और मेहनत के रास्ते पर चलना सिखाती है। ये फिल्म बच्चों के संघर्ष और उनके जज्बे की अमर कहानी है। बूट पॉलिश फिल्म आपने देखी होगी और ज़रूर आप बच्चों के अभिनय से प्रभावित हुए बिना नहीं रह गए होंगे, है ना। फिल्म में जो पात्र थे भोला और बेलू, वो अभावों में भी भीख मांगने से इनकार करते हैं और बूट पॉलिश करके अपनी मेहनत की रोटी कमाने का रास्ता चुनते हैं। लेकिन अगर हम अब देखें श्रोताओं, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि भारत में बाल श्रम अधिनियम जो है 23 दिसंबर 1986 को आधिकारिक रूप से लागू हुआ था। और इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों और प्रतिक्रियाओं में काम करने से हमें रोकना है। और इसका संशोधन 2016 में हुआ था, जिसमें ये संशोधन किया गया कि बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन 1986 के रूप में जाना जाए। और हाँ, अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पूर्ण निषेध और 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक व्यवसायों में काम करने पर ये अधिनियम रोक लगाता है। लेकिन जब बात चल रही है फिल्म की, तो फिल्मों में बाल श्रम को बहुत ही दर्शाया गया है।

0: पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वो गंगा जी नहलाते हैं।
1: हम पेट का मंत्र पढ़ते हैं, जूते का मुंह चमकाते हैं।
0: पंडित को पांच चवन्नी है,
1: अपनी तो एक ही कन्नी है।
0: फिर भेदभाव ये कैसा है,
1: जब सबको प्यारा पैसा है।
0: ऊंच नीच कुछ

ये था बूट पॉलिश फिल्म का गाना मन्ना डे, मधुबाला झवेरी और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम बूट पॉलिश तो था ही, शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और शंकर जयकिशन ने इसको संगीत में ढाला था। और जब बात मैटिनी शो में हम बात कर रहे हैं श्रमिक वर्ग की, तो एक फिल्म आई थी पैगाम, 1959 में ये फिल्म आई थी और SS वासन द्वारा निर्देशित। इस फिल्म में दिलीप कुमार और राज कपूर ने बहुत ही बखूबी काम किया था। राजकुमार इस फिल्म में थे और ये औद्योगिक मजदूरों और मिल मालिकों के बीच के वर्ग संघर्ष को दर्शाती हुई ये फिल्म थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

पैगाम फिल्म का गीत अभी आपने मन्ना डे और साथियों का गायवा सुना, प्रदीप के बोल थे और सी रामचंद्र की धुन थी। तो हम बात कर रहे हैं मजदूर वर्ग की, श्रमिक वर्ग की। एक और फिल्म आई थी कुली, जी हाँ, समाज के वंचित वर्ग और उन शोषित लोगों की कहानी का एक उत्कृष्ट उदाहरण इस फिल्म में प्रस्तुत किया गया था, जो मुश्किल से अपना पेट भरता

वर्ग और उन शोषित लोगों की कहानी का एक उत्कृष्ट उदाहरण इस फिल्म में प्रस्तुत किया गया था, जो मुश्किल से अपना पेट भरते हैं और मुश्किल हालातों में अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, और उन्हीं वर्ग के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म कुली का ये गीत। शब्बीर कुमार की आवाज़ है और आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

0: आता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 40001। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

तो दोस्तों मैटिनी शो में आज हमने मजदूर और श्रमिक वर्ग को लेकर बातचीत की, फिल्मी गपशप की। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। तो मैटिनी शो का आज का ये अंक यहीं खत्म होता है।

आयोग के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और

0: कानों की गणना आरंभ हो गई है। यह कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। बिहार में जनगणना 2027 का पहला चरण आज शुरू हो गया है। स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। जनगणना 2027 का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। सूत्रों के अनुसार पंजाब के 2 अलग-अलग जिलों में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। जिलों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। यह इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
1: We diversified our sources.
2: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमरीका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमरीका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माही में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए चुने हैं सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में सजे कुछ फिल्मी गीत।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा गीत अभी आपने सुना। स्वर लता मंगेशकर और साथियों का था। फिल्म का नाम था जागते रहो।

कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म माया का गीत, स्वर लता मंगेशकर, द्विजेन मुखर्जी और साथियों के मजरू सुल्तानपुरी की रचना है सलील चौधरी की धुन।

कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज। फिल्म का नाम है अन्नदाता। गीतकार हैं योगेश और संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म मधुमति का गीत सुनवा रहे हैं। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सलिल चौधरी की।

लता मंगेशकर को अभी आपने फिल्म मधुमति में सुना। आइए सुनते हैं इसी आवाज में फिल्म हनीमून का गाना। गीत रचना शैलेंद्र की है और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

योगेश का लिखा गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे। मुकेश का साथ दे रही थी लता मंगेशकर। फिल्म का नाम था अन्नदाता।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था परख। इस गीत को शैलेंद्र ने लिखा और धुन बनाई वही यानी सलील चौधरी ने।
1: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
2: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
1: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध।

0: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
1: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
0: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
2: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।
3: जहां पे सवेरा हो बसेरा वही है।
0: 1984 दुनिया।
2: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1993 फिल्म साहिबा।
2: कैसे जियूंगा मैं।
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
3: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आँखों

और आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा दुगाना, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के। फिल्म का नाम है जीवन ज्योति।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत है इस नए कार्यक्रम सुरीला सफर में आपका। और मैं हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हाँ, मुझे पता है इंतज़ार है आपको इस कार्यक्रम का, इस सुरीले

सफर का, तो चलिए आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त और निकलते हैं इस सुरेले सफर पर, ठीक है? जी हाँ, इतनी ही खुशी के साथ हमें निकलना है इस सुरेले सफर पर, लेकिन लेकिन लेकिन जरा ठहरिए दोस्तों, आज जो इबारत हमने आपके लिए लिखी है उसे आपने पढ़ा कि नहीं, जाना कि नहीं कि आज के इस सुहाने सफर में क्या क्या है, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या दिक्कत आने वाली है, क्या क्या अच्छा होने वाला है। हाँ, जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो पढ़ ली है हमारी इबारत, लेकिन अन्य श्रोताओं ने नहीं पढ़ी है। तो क्या है हमारी इबारत, क्या हम उन्हें बताएं पढ़ के? चलिए, तो हमारे वो दोस्त जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं हम उन्हें बता देते हैं कि आज हमने उनके लिए क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, हमने लिखा है कि नमस्ते दोस्तों, जिंदगी के कठिन रास्तों पर दीवाने ही हैं तो बाजी मार लेते हैं, कोई खाली हाथ है तो किसी की जेब पैसे से भरी है, यहाँ कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं, कोई पैदल चला जा रहा है, कोई घोड़े पर दौड़ा जा रहा है। वैसे बाबूजी, ये दुनिया एक तमाशा है, खेल पैसों का। कैसी दुनिया है राम जाने, दुनिया को समझने का एक और तरीका है क्या? पान का एक बीड़ा लगाओ, और फिर उसी धुन में गाना है आपको, गाने जो आज हमने इस कार्यक्रम में आपके लिए चुने हैं। तो बताइए कौन से हो सकते हैं आज के शब्द, आपको क्या लगता है जो शब्द हमने इस इबारत में लिखे हैं, इन शब्दों पर कौन कौन से गाने हम आपको सुनवाने वाले हैं? जरा दिमाग पर जोर लगाइए। बिल्कुल इस म्यूजिक की तरह ही हमें दौड़ लगानी है आज के सुरीले सफर पर। और देखिए ना, किसी ने कहा है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल सही ही तो कहा है, लेकिन हाँ, डर के साए में जीना हमारी फितरत नहीं, हम तो सफर में भी पत्थर से रास्ता निकाल लेते हैं हुजूर, है ना? तो दोस्तों, कहीं कहीं मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है, और आज बस इसी सफ़र को हमें जीना है। और ये सुहाना सफ़र जहाँ मैं हूँ, जहाँ आप हैं और हमारे तमाम दोस्त हैं, हम सब मिलकर चलते हैं इस सुरीले सफ़र पर। मज़ेदार रहेगा ये सफ़र, है ना? आप मेरे साथ हैं,

किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था काला पत्थर। जी हाँ, तो हम आगे बढ़े इससे पहले हम इसी बात पर एक सवाल आपसे पूछते हैं कि पत्थर फिल्म से कितनी और सारी फिल्में बनी हैं, जैसे कि ये काला पत्थर है और बहुत सारी फिल्में पत्थर के साथ बनी हैं, आगे पीछे कुछ नाम जुड़े हैं। बताइए कौन कौन सी फिल्में हैं जिनमें पत्थर भी है जुड़ा हुआ। और हाँ, हम आपको बता दें कि कल जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, यानी इसकी जो पहली कड़ी कल शुरू हुई थी, तो हमारे वरिष्ठ उद्घोषक यूनुस खान साहब ने आपको बताया था कि इस कार्यक्रम को किस तरह से समझना है और किस तरह से इस कार्यक्रम में भाग लेना है। आपको समझ आ ही गया था कि हर रोज हम एक इबारत फेसबुक पर पोस्ट करेंगे और इस इबारत में शामिल शब्दों में से कुछ कुछ चुनकर सुनवाएंगे सुरीले सफर के गाने। तो आपको इबारत पढ़कर अंदाजा लगाना है कि कौन से शब्दों पर आज गाने आ सकते हैं। तो आज आपने हमारी इबारत पढ़ी होगी कि जिंदगी के कठिन रास्तों पर दीवाने ही हैं जो बाजी मार लेते हैं। कोई खाली हाथ है तो किसी की जेब पैसों से भरी है, यहाँ कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं, कोई पैदल चला जा रहा है तो कोई घोड़े पर दौड़ा जा रहा है। वैसे बाबूजी, ये दुनिया एक तमाशा ही तो है, खेल पैसों का। कैसी दुनिया है राम जाने, दुनिया को समझने का एक तरीका और है क्या कि सुकून से ये खा लेना, यानी पान खा लेना, ताकि थोड़े मुश्किलें हमें लगे हल हो चुकी हैं और हम अपनी धुन में कुछ गाते चले जाएं। तो बताइएगा कौन कौन सी फिल्में आज हमने आपके लिए चुनी है। कुछ लोगों ने अंदाज लगाया है, कुछ लोगों ने हमें लिखा भी है कि भाई आज जिंदगी कठिन राह दिखाने वाली है और इसमें दुनिया पान आदि शब्द मंदाकिनी जी ने लिए हैं। पान खाए सैया हमारो, अच्छा आपने ये गीत चुना है और आपने चुना है एक और गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर में हम सभी मंदाकिनी जी के साथ दूर तक जाएंगे, फिलहाल सभी को दोपहर की प्यार भरी नमस्ते हम कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में आज की इबारत में आपने जो शब्द चुने हैं शायद वो है जिंदगी, रास्ते, दीवाने, बाजी, खाली हाथ, पैसे, फूल, कांटा, बाबूजी, दुनिया, राम, पान। इन शब्दों का सुंदर चुनाव है। जब हम इन शब्दों के माध्यम से अपना सुरीला सफर तय करेंगे तो जिंदगी के हर रास्ते पर एक नया गीत सुनाई देता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज ये जो जीवन है परिस्थितियों का दास है, कभी बाजी इस किनारे तो कभी उस पार, मगर जीवन की बाजी चाहे कितने ही पहलू क्यों न हो उसके, दोस्तों का साथ हो तो कांटे भी फूल बन जाते हैं और पथरीला रास्ता सुगम हो जाता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन बताइए तो सही कि आज इन शब्दों पर हमने कौन कौन से गीत चुने हैं।

देखिए, हम तो आपको बताएंगे क्योंकि हमने जो गीत आपके लिए चुने हैं उसमें एक गीत बहुत खास है, क्योंकि जिंदगी का ये सफर है सुहाना और यही है जीवन का सटीक अंदाज। हर लम्हा हर क्षण बहुत कीमती है और एक बार गुजर जाने के बाद वो वापस नहीं आता है। तो जीना हर पल में है, मुस्कुराकर जिए तो क्या हर्ज है। नए दोस्त बनाइए, नफरत मिटाइए, खुद को संवारते चलिए। जीवन बहुत सरल और सादा है और हमने इसे जटिल बना दिया है। तो कैसा होना चाहिए इंसान को? वो इंसान ही क्या जो दिल से अमीर न हो, और वो अमीर ही क्या जिसका दिल फकीर न हो। तो हमारे अंदर एक फकीराना अंदाज होना चाहिए और एक दीवानगी होनी चाहिए। हम तो भाई ऐसे ही हैं दीवाने। फटाफट बताइए हमने और कौन से गाने आपके लिए चुने हैं।

0: हमने आपसे पहला सवाल किया था कि पत्थर फिल्म पर कितनी और सारी फिल्में बनी है हमें बताइए, और अब हमारा दूसरा सवाल जो आपने अभी गीत सुना, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए मोहब्बत भरी एक नज़र चाहिए, उसमें जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो कलाकार कौन है और उनके साथ जो नर्तकी है यानी जो बंजारा नृत्य कर रही हैं वो कौन सी कलाकार हैं? जी हाँ, ढूंढिएगा कि हारमोनियम जो बजा रहे हैं इस गाने में वो कौन सी कलाकार है और जो नर्तकी हैं साथ में नाच रही हैं वो कौन सी कलाकार है, उनके बारे में बताइए हमें। जी हाँ, बताना तो पड़ेगा क्योंकि इस कार्यक्रम में तो हम यही चाहते हैं कि जो आज हम आपके लिए इबारत लेकर आए हैं उसमें आप क्या समझे हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अब देखिए, हमारे कुछ श्रोता कह रहे हैं कि भई ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है लेकिन हमें लग रहा है कि बहुत सारी बातें समझनी और लिखनी होती हैं तो इसके लिए मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा दिमाग नहीं चला पा रहे हैं। आपने जो पहेलियाँ हमारे लिए रख छोड़ी हैं इस कार्यक्रम के ज़रिए वो बड़ी मुश्किल हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है, दीवाने हैं तो बाजी मार लेते हैं, ठोकरों में भी सुर ढूंढ लेते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम अच्छा है लेकिन आपने इसे दोस्तों जिंदगी दीवाने बाजी हाथ पैसे फूल कहीं कोई चला बाबूजी दुनिया एक और पान जैसे शब्दों पर लाकर ठहरा दिया है जो हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफ़र को शुरू करने के लिए कुछ रुकावटें आ रही हैं और हमारा मोबाइल हमें परेशान कर रहा है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने जिस तरह से इसको पिरोया है भाई उसे समझना आसान तो नहीं है। आज सुरीला सफ़र आसान नहीं लेकिन कुछ जज्बाती ज़रूर है जिसमें ज़िंदगी रास्ते बाजी दीवाना पैसा चलना फूल कांटे बाबूजी दुनिया अपनी धुन जैसे कुछ शब्दों को लेकर आपने गाने चुने हैं, पर कौन कौन से चुने हैं ये हम नहीं बता पा रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार, इस दुनिया में ज़िंदगी के रास्ते फूल और कांटों पर से चलते चलते दीवाने लोग गुजरते हैं, बाबूजी आगे चलकर बाजी कौन जीतेगा ये तो राम जाने। उन्होंने कुछ गाने लिखे हैं कि आपने नमस्ते दिल तेरा आशिक का या एहसान या रास्ते पर रास्ते जाने वाली दीवाने हैं दीवानों का ना घर जीत ही लेंगी बाजी हम तुम जैसे बहुत सारे गीतों को लिखकर भेजा है लेकिन हम आपको बता दें सिर्फ एक गीत दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ये हमारी लिस्ट में ज़रूर शामिल था जो आपने अभी ना, लेकिन बाकी गाने हमारी लिस्ट में शामिल नहीं हैं। तो सफ़र जब हम निकल ही पड़े हैं दोस्तों तो देखिए सफ़र में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहीं घोड़ा कहीं गाड़ी कहीं कार कहीं पैदल चलने वाले लोग, कहीं ट्रेन कहीं बहुत कुछ साधन अपनाने वाले लोग जो अपने अपने साधनों से चले जा रहे हैं दौड़े जा रहे हैं, ना किसी की चिंता ना किसी की फिक्र, बस अपनी ही मंजिल अपनी ही दौड़। तो कई बार ऐसा होता है कि हम भी इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं रहता कि किसी के जीवन पर किसी के दिल पर क्या गुजर रही है।
1: उरिया। उरिया। उरिया। उरिया। उरिया। उरिया। उरिया। उरिया।

अच्छा बताइएगा, आप कभी किसी रिक्शा पर बैठे हैं, आपने रिक्शा की सवारी ली है और आपको लगा है कि जो रिक्शा चला रहा है उसकी हालत क्या होती है जब हम अतिरिक्त भार उसकी रिक्शा पर लाद देते हैं, कभी सोचा आपने?

0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि अरे भाई, विविध भारती का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है, थोड़ा लेट हो गया हूँ इसलिए सुहाने सफर की गाड़ी अगले स्टेशन से पकड़नी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं पकड़ लीजिए, अभी भी मौका है गाड़ी पकड़ने का।
1: अरे सामने क्या देख रहे हैं, उन्हें पीछे से पाकिट मार रहे हैं।

जी हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आज इस कार्यक्रम का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन इस नए कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कार्यक्रम नया है लेकिन बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इबारत है, लगता है आज के गीत जिंदगी और दुनिया की इर्द गिर्द होंगे, जैसे जिंदगी कैसी है पहली या जिंदगी एक सफर है सुहाना, बेसब्री से इंतजार रहेगा। भाई आज हम आपसे एक बार फिर कहेंगे कि हमारे श्रोता लगभग हार गए हैं हमसे, क्योंकि आपने जो प्लेलिस्ट बनाई है हमारी इबारत पढ़कर, वो गाने हमसे तो मेल नहीं खा रहे हैं, थोड़ा दिमाग पर और जोर लगाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार को हमारा नमस्कार, इस चिलचिलाती धूप में भी ठंडा का सफर जारी है जो विविध भारती से हमें मिल रहा है, तो ये सुनहरा चमकता दमकता सफर ठंडी फुहार की तरह चलता रहे, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि पिछला प्रोग्राम गीतमाला में आपने हम सभी श्रोताओं के खूब कॉमेंट्स दौरान प्रोग्राम में शामिल किए, वैसे ये नया प्रोग्राम है सुरीला सफर, पूरी तरह समझ तो आ गया है लेकिन देखते कि हम श्रोताओं के कितने गीत आपके चुने गीतों से मेल खाते हैं। सुरीला सफर नाम के अनुसार बहुत ही सुरीला होने वाला है, निश्चित है ये कार्यक्रम सुरीला है, लेकिन ये और सुरीला तब होगा जब आप हमारे गाने, आपके गाने हमारे गानों से मेल खाएंगे। जी हाँ, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहेलियों से पूर्ण संगीतमय सफर सुरीला सफर जरूर चलेगा, और आप पेचीदा प्रश्न पूछ रहे हैं पर गाने मज़ेदार हैं, प्रोग्राम प्रस्तुति का अंदाज हाँ थोड़ा सा अलग लग रहा है इस कार्यक्रम में। तो भाई कार्यक्रम अलग है तो प्रस्तुतकर्ता का अंदाज भी अलग होगा ना। तो आपने हमें बताया नहीं, हमने दो सवाल आपसे किए थे उनके बारे में बताइए, कि पहला कि पत्थर फिल्म से और कितनी फिल्में बनी हैं जिसमें, जैसे काला पत्थर है या इस तरह की बहुत सारी फिल्में जिसमें पत्थर शब्द भी जुड़ा है, ऐसी फिल्मों के नाम बताइए। और साथ ही हमने कहा था कि दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, इस फिल्म में हारमोनियम कौन बजा रहे हैं और साथ में जो नर्तकी हैं वो कौन हैं। अच्छा, साथ में एक तीसरा सवाल ये भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रिक्शे पे आपने सवारी कब की थी और क्या कभी रिक्शा वाले से आपने मोल भाव किया? देखिए जनाब, ये जिंदगी है और जिंदगी में ये सफर जारी रहेगा जब तक हमारी जिंदगी है, यानी अंतिम सांस तक हम इस सफर में चलते रहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बातें इस सफर में हमें देखने सुनने को मिलती है। याद करिए वो पुराना ज़माना, वो देसी मनोरंजन यंत्र जिसे बेतार का टीवी या चलचित्रदर्शी भी हम कहते थे, याद आया आपको? ये एक लकड़ी का बक्से जैसा होता था जिसमें लेंस लगे होते थे और उसके माध्यम से हम पुरानी रीलों को, तस्वीरों को घुमा घुमा कर ऐतिहासिक स्तर और फिल्मों के दृश्य देखते थे। याद कीजिए बक्से नुमा वो यंत्र, जब वो आदमी आवाज़ लगा लगा कर हम बच्चों को लुभाता था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसमें लेंस और अंदर रील चलाने की व्यवस्था होती थी और हम एक आँख गड़ा कर उसको देखा करते थे, और इसमें हमें कुतुब मीनार, गोल घर जैसे न जाने कितने चित्र दिखाए जाते थे। याद आया? नहीं तो ये गीत सुनते हैं, फिर बताइएगा आपके बचपन में ये दिन कब आया था।

याद आया हम किस यंत्र की बात कर रहे हैं? आज के मल्टीप्लेक्स के दौर में ये तो एक लुप्त हो गई है कला जो अक्सर बचपन की यादों के रूप में याद की जाती थी। याद करिए,

0: जी हाँ, आपको याद आया उस यंत्र का नाम? बायोस्कोप, हाथ से घुमाकर चलने वाला, चलता फिरता वो सिनेमा घर जहाँ हमें बुलाकर एक आंख से वो चित्र दिखाए जाते थे, है ना?
1: अच्छा जी, ओह टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काला से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंजरे
2: तो हमारे कई श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि ये बायोस्कोप है जो बचपन में हम देखा करते थे, और इस बायोस्कोप को देखने के बाद हमें लगता था जैसे हमने बहुत बड़ी फिल्म देख ली है ना। तो हम आपको बता दें, दुश्मन फिल्म का गीत था ये, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर आपने गीत सुना।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काला पत्थर का ये गीत आपने बजा ही दिया, मैं तो अभी इसी गीत के बारे में सोच रहा था। राजेश रोशन का संगीतबद्ध ये गीत मोटरसाइकिल पर बैठकर शशि कपूर जब गाते हैं तो एक अलग ही आनंद आ जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, आप ही लिखते हैं कि दिल्ली में पिछले 20 वर्षों में मैं कभी भी हाथ रिक्शा पर नहीं बैठा, मुझे इन पर बहुत दया आती है। भले ही मैं पैदल चला जाऊं, ये रिक्शा वाला गाना महमूद पर फिल्माया गया था जो मुझे बेहद पसंद है और इसमें भी राजेश रोशन साहब का ही संगीत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम रिक्शे पर बैठ तो जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि जो रिक्शा खींच रहा है व्यक्ति उसकी हालत कैसी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों का सुरीला होगा, दोस्त होंगे मंदाकिनी जी, न हो ये हो ही नहीं सकता। हमें पता था कि आप इस कार्यक्रम में आएंगी और आप आ गई हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दीवाने ही तो हैं जो बाजी मार लेते हैं, जो ठोकरों में भी सुर ढूंढ लेते हैं, तो खाली जेब भी में भी ख्वाब भर लेते हैं। कहीं फूलों की खुशबू बसी है तो कहीं कांटों की चुभन है, कोई पैदल धूप में तपता है, कोई घोड़े पर हवाओं के साथ है, पर बाबूजी दुनिया सचमुच एक तमाशा है, हंसी और आंसू का एक झमेला है, यहाँ हर धड़कन का मूल लगा है, ये खेल भी क्या बस पैसों का मेला है। फिर भी एक और तरीका है इसे समझने का, थोड़ा ठहरने का, थोड़ा मुस्काने का, एक पान का बीड़ा लगाकर अपनी ही धुन में गुनगुनाने का, गम को भी गीत बना लें, थकान को तान बना लें, सफर को यूं ही नहीं सुरों से सजा लें, मुस्कान से सजा लें, क्योंकि जब दिल से आवाज निकलती है तो राहें आसान हो जाती है और ये दुनिया तमाशा नहीं एक सुरीला सफर बन जाता है। जी, सुरीले सफर पर जब हम निकल ही गए हैं तो और भी बहुत कुछ हमें देखने सुनने को मिलता है। क्या, आइए सुनते हैं इस गीत में।

0: क्या आपको लगा था कि बाबू शब्द पर ये गीत आने वाला है?
1: बाबू आना, सुनते जाना।
2: महंगा सौदा है इसका, लुटना जाना।
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका।
2: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
3: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो।
2: बाबू आना, सुनते जाना।
1: थर, थर।

ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी। तू जा जा ऐ जा जा जा मुंह धो के आ, तू जा जा अरे जा जा जा मुंह धो के आ।

0: बार तालियां, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियां।
1: रुक जा निकाल की मैं तेरा दीवाला,
0: जा रे तू पीत जाके गरम मसाला।

0: Baudi, Baudi, bola. Baudi, Baudi. Baudi.
1: झुमरू फिल्म का गाना था बहुत ही मजाकिया गीत। किशोर कुमार, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और किशोर कुमार का ही संगीत था। जी, हमारे श्रोता जो अपने गानों की लिस्ट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उनमें कुछ कुछ गाने हमारी लिस्ट से मिल रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट से मिल रहे हैं, लेकिन सभी गानों पर हमारे श्रोता अपनी पकड़ नहीं बैठा पाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पोस्ट भेजी है उसके हर शब्द पर गाना निकालते हैं। विविध भारती के सुरीला सफर में आज इन्हीं शब्दों पर गाने बजेंगे। जिंदगी पर आपने गाना निकाला है, कठिन रास्तों पर, बाजी पर, कांटे पर, फूल पर, बाबूजी पर, दुनिया पर, तमाशा पर।

लेकिन गीत आपने बहुत अच्छे निकाले हैं, लेकिन हमारी लिस्ट से आपका कोई भी गीत नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की है। हाँ, एक गाना जरूर मिल रहा है, वो हम आपको सुनाने वाले हैं थोड़ी देर में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दीदी जी, सुरीला सफर की प्लेलिस्ट तैयार है, किस शब्द से शुरू करें, जिंदगी से या दुनिया से। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए में गाना जो है गुलशन बावरा जी हारमोनियम के साथ हैं, गीतकार बिल्कुल सही कहा, और नृत्य करने वाली नायिका का नाम है संजना। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो हैं गीतकार और अभिनेता गुलशन बावरा, और उनके साथ जो नृत्य कर रही हैं नायिका वो है संजना। एक श्रोता ने लिखा है कि कार्यक्रम नया है फिर भी मेरे अंदाज से कुछ गीत जरूर सुनने को मिल सकते हैं, जैसे मिले ना मिले, फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, बाबूजी धीरे चलना, इस तरह के कुछ गाने, और आखिर में तो तय है कि खाई के पान बनारस वाला गीत तो हमें सुनने को मिलेगा ही। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुहाना सफर एक नया कार्यक्रम है, बहुत पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है बहुत अच्छा कार्यक्रम है लेकिन कुछ समझ में कम आया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अच्छा, आप हमारी तारीफ लिखते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपका ये कार्यक्रम बहुत ही रोमांचक लग रहा है। एक श्रोता ने जिंदगी पर कुछ गीत लिखे हैं, लेकिन वही बात कि सिर्फ एक गाना हमारी लिस्ट से आपका मिल रहा है। तो जो अभी मजाकिया गीत आप सुन रहे थे, बाबू आना सुनते जाना, महंगा सौदा है इसका लूट न जाना, बताइए कभी आप लूटे इस महंगाई से? कहीं जाकर आपने कोई खरीदारी की हो और आपको पता चले कि भाई दुकानदार ने आपको लूट लिया और ज्यादा दाम लगा दिए, कभी पता चला आपको? अगर हाँ ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आपने क्या किया इसके बारे में हमें लिखकर बताइए। और हाँ, जिंदगी के इस सफर में देखिए फूल हैं तो कांटे भी हैं, कई बार ये होता है कि कांटा लग जाता है तो गाना निकलता है क्या, कांटा लगा हाय लगा। हाँ।

जी हाँ, तो हमारी इबारत में आपने पढ़ा था, कहीं फूल है तो कहीं कांटा, तो ये गाना क्या आया, कांटा लगा है ना। तो इसी प्रकार जो हमने लिखा है उसी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गीत छिपा है। और अब आप दोस्तों को दिमाग लगाना है भाई, जोर लगाना है कि कौन सा गीत हो सकता है। बहुत सारे गीत आपने लिख कर भेजे हैं, ऐसी बात नहीं है, आपने कोशिश बहुत की है, लेकिन हाँ एक या दो गीत हमारी लिस्ट से मिल पाए हैं, हमारी प्ले लिस्ट से मिल पाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं, कि भाई ये इबारत है क्या, अगर इबारत का अर्थ आप समझा पाएँ तो मैं कुछ लिख सकूँ। ऐसी बात तो नहीं है कि आप इबारत के बारे में नहीं जानते होंगे, आपने जिस अंदाज़ में लिखा है वो अंदाज़ थोड़ा अजीब लगा है, लेकिन हाँ इबारत मतलब जो लेख हमने आपको दिया है, जो तहरीर, जो मजमून, जो लिखावट, जो लेखन शैली हमने आपके लिए रखी है, जो एक या पाठ है ना जो आपके लिए रखा है उसको पढ़िए। जो गद्य, इसे आप बहुत अगर हिंदी में समझना चाहते हैं कि हमने जो गद्य के रूप में लिखा है विचार, उस विचार या पाठ को आप पढ़ें और उसमें से निकालें कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि कांटा, कहीं फूल है कहीं कांटा, तो कांटा लगा। और अभी था जैसे थोड़ी देर पहले कोई घोड़े पर दौड़े जा रहा है, तो ये है घोड़ा है ना, मैं हूँ घोड़ा, ये है गाड़ी। इस तरह के गीत हमने आपके लिए चुने ताकि थोड़ी सी दिमागी कसरत हो जाए और आपकी और हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। कैसे, कि हमारे विचार आपके विचार एक हो जाएं, वही कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि इबारत का मतलब क्या है और अब आप तुरंत अपने विचार हमें लिख कर भेजने वाले हैं। तो हम आपको बता दें, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, फिल्म का नाम था समाधि, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना राहुल देव।

बर्मन का संगीत हम समझ सकते हैं, कार्यक्रम नया है इसलिए समझने में और लिखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि दिमागी काम है और हमें सोचना पड़ता है कि इस शब्द पर कौन कौन से गाने कहे गए हैं, लिखे गए हैं और हमने कौन से गाने छांटे हैं। लेकिन फिर भी आपने कोशिश की है, सबसे अच्छी बात यही है, और क्या कह सकते हैं आपको, शुक्रिया। जी, और अब वो गाना आपके लिए पेशे खिदमत जो आपकी और हमारी लिस्ट में

0: जी, और अब वो गाना आपके लिए पेशे खिदमत जो आपकी और हमारी लिस्ट में है।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जा।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था डॉन, आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की धुन। भाई बनारसी पान तो हम सबने लगभग खाया होगा, लेकिन आपने अपने शहर में कौन सा पान खाया है और वो पान कैसे लगाया जाता है, आप कौन सा पान खाते हैं इसके बारे में बताइएगा। और हाँ, पत्थर पर जब हमने कुछ सवाल आपसे किए थे, एक दो श्रोताओं ने लिखा है कि लाल पत्थर, फूल और पत्थर। जी हाँ बिल्कुल, इसके अलावा बहुत सारी फिल्में पत्थरों से बनी है, पत्थरों का शहर, लाल पत्थर, फूल और पत्थर, पत्थर, पत्थर के फूल, पत्थर के ख्वाब, पत्थर दिल, है ना, और हीरा और पत्थर, पत्थर के लोग, बहुत सारी फिल्में पत्थर शब्द पर बनाई गई है। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं जहां आशा भोंसले और मन्ना डे साहब गा रहे हैं फिल्म आंखें का गीत, साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि की धुन है।

आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2 बजने को हैं, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। यह मुलाकात पटना स्थित 7 सर्कुलर रोड पर नीतीश कुमार के नए आवास पर हुई। लगभग आधे घंटे तक चली इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। हालांकि मुलाकात को औपचारिक बताया गया है, लेकिन इसे कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जल्द ही संभावित मंत्रियों की सूची लेकर दिल्ली जा सकते हैं, जहां पार्टी नेतृत्व के साथ अंतिम चर्चा के बाद कैबिनेट विस्तार को हरी झंडी मिल सकती है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज शुरू हो गया। राज्यभर में

0: सभा में भाजपा सांसद फलगन सिंह कुलस्ते करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड की विभिन्न मीडिया इकाइयों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में श्री कुमार ने सभी मीडिया इकाइयों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया इकाइयों को डिजिटल मीडिया तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हुए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। केंद्र सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। यह संदेश केवल परीक्षण के लिए था। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इसे दूर संचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल नागरिकों की सुरक्षा को और मजबूत करने और आपदाओं के दौरान त्वरित सूचना देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज जदयू के कौमी सदर और साबिक़ वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात की। ये मुलाकात पटना वाक़े 7 सर्कुलर रोड पर नीतीश कुमार के नए रेसिडेंस पर हुई। लगभग नصف घंटे तक चली इस मीटिंग में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। हालांकि इस मुलाकात को रस्मी बताया गया है, लेकिन इसे काबीना की तौसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी जल्द ही मुमकिन वज़रा की फहरिस्त लेकर दिल्ली जा सकते हैं, जहां पार्टी क़्यादत के साथ आखिरी बहस के बाद काबीना की तौसी को हरी झंडी मिल सकती है। रियासत में मरदमशुमारी 2027 का पहला मरहला आज शुरू हो गया है। पूरी रियासत में घरों की फेरी साजी करने और मकानों की गिनती के साथ इस अमल का आगाज़ हुआ है। खुदशुमारी के लिए दी गई 15 दिनों की कबल इत्तला की मुद्दत कल ख़त्म हो गई थी। वजारत दाखला के मुताबिक घर घर जाकर मरदमशुमारी और मकान शुमारी का अमल 30 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान तरबियत याफ्ता शुमार कुनिंदा घर घर जाकर ज़रूरी मालूमात हासिल करेंगे। जो शहरी बजात खुद इस अमल को नहीं कर पाए हैं, उनकी तफसीलात अब शुमार कुनिंदा के जरिया घर घर जाकर दर्ज की जाएंगी। मरदमशुमारी 2027 का दूसरा मरहला अगले साल फरवरी में मुनाकिद किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साल 2026-27 के लिए 4 पार्लियामानी बोर्ड की तश्कील नौ की है। लोकसभा से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 अराकीन वाले प्रेडिक्शन बोर्ड का चेयरमैन तकरीर किया गया है। लोकसभा से कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट के सी वेणुगोपाल को पब्लिक ऑडिट कमेटी का सदर बनाया गया है। वहीं दर्ज फहरिस्त और कबायल फलाह कमेटी की सदारत लोकसभा में बीजेपी रुकने

0: पार्लियामेंट फग्गन सिंह कुलस्ते करेंगे। इन कमेटी की मुद्दते कार अगले साल 30 अप्रैल तक रहेगी। वजारत इत्तला तो नशरियात के सेक्रेटरी चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड की मुख्तलिफ मीडिया इकाइयों की जायजा मीटिंग की। इस मीटिंग में PIB मरकजी संचार ब्यूरो आकाशवाणी और दूरदर्शन के अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में जनाब कुमार ने सभी मीडिया इकाइयों को बेहतर राबते के साथ काम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया इकाइयों को डिजिटल मीडिया तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए अपनी सलाहियत को बढ़ाना चाहिए। मरकजी हुकूमत ने देसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए शहरियों को आफात की फौरी इत्तला देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस सिस्टम का तजुर्बा करने के लिए आज दोपहर तकरीबन 12 बजे लोगों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक नोटिस भेजी गई। तजुर्बा के दौरान पैगाम में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। यह पैगाम सिर्फ टेस्टिंग के लिए था। मरकजी वजीर मवासलात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इसे महकमा टेली मवासलात ने कौमी आफात इंतजामिया अथॉरिटी के ताबुन से फ़रोग दिया है। जनाब सिंधिया ने कहा कि मुस्तकबिल में इसी सिस्टम के तवसुत से आफात की घड़ी में मकामी जबान में और मकाम के मुताबिक फौरी तौर पर अलर्ट भेजे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये पहल शहरियों की हिफाजत को मज़ीद मजबूत करने की सिमत में एक अहम कदम है। बिहार खेल यूनिवर्सिटी राजगीर के जरिए तालीमी सेशन 2026-27 के लिए मुख्तलिफ खेल शोबे में दाखला की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। अब ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 15 मई तक ऑनलाइन दरख्वास्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कहां चलती है, इधर तो आओ।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
7: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
7: लाभ वाणी,
6: आकाशवाणी।
8: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 23 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 19 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.crpf.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न विभागों में जूनियर ट्रांसलेटर तथा सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी

हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, अथवा अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, और डिग्री में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या 2 अथवा 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 14 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.ssc.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए स्टेनोग्राफर के 731 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 27 वर्ष एवं ग्रुप सी के लिए 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा जिसकी अंतिम तिथि है 15 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.ssc.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। अपराह्न के समय 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।

0: ugly niggum. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप।
1: कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ व पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के

0: बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षक और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
3: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी।

0: इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
2: We diversified our sources.
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से LPG खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मानसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाज़ों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताज़ा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC Under-17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। Under-17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और Under-20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

0: ये स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था रानी रूपमती। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और संगीत दिया था एस एन त्रिपाठी ने।
1: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
2: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
1: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध

फिल्म नया दौर का गीत सुनिए, गायिका आशा भोंसली, शब्दकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार ओपी नैयर।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में हम आपको शकील बदायूनी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम है मदर इंडिया।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थीं विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए।

0: इस पते पर मनचाही गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091 मनचाही गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091 आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: तो आपका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ और अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी ठीक 3 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत।

0: हम पंछी एक डाल के अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना आशा भोंसले और साथियों का गाया हुआ। गीतकार पीएल संतोषी थे और संगीतकार थे एन दत्ता।
1: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
2: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
1: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध

यह बस आशा भोंसले की और फिल्म का नाम था मेरा सलाम। गीत को शिवान रिजवी ने लिखा और हाफिज खान ने संगीतबद्ध किया था।

0: राम राम।
1: ग्यावस्ती मन्ना डे की और फिल्म का नाम था जन्म जन्म की फेरी। गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा था और धुन बनाई थी SN त्रिपाठी ने। ग्यावास गीता दत्त की फिल्म का नाम हिल स्टेशन।

हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में ये था एस एच बिहारी का लिखा गीत, गीता दत्त की आवाज में फिल्म हिल स्टेशन से। और आइए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत सुनते हैं।

तलत महमूद की आवाज में अभी आपने छोटे बाबू फिल्म का गीत सुना। कैफ इरफानी की बोल थी और मदन मोहन की धुन थी। इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के ठीक 3 बजे हैं, प्रस्तुत है हमारा पसंदीदा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
2: मन चाहेगी।
1: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आपका अपना चहेता कार्यक्रम आज से फिर शुरू हो गया है। आज ये इसका पहला अंक है। हम आपको पहला गीत सुनाएं, उससे पहले ये संदेश।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आज हमने पहला गीत चुना है आप सबकी पसंद पर। आप हैं हमारे सबसे पहले श्रोता आज के चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और उनके परिवार वाले, नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से मधुलता पुरोहित, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रांजल, हर्षिता, राजन, कमाली, परम। और ये खत हमें मिला है जिला लुधियाना पंजाब से संतोष जोशी।

नरेश, मुक्ता जोशी, जोयल जोशी, वज्रा जोशी का, और नासिक महाराष्ट्र से आप हैं सुमन पारिक, साहिल पारिक, भावना पारिक, और ये खत लिखने वाले हैं नूहिया वाली हरियाणा से लीलाधर जोशी, कमला जोशी, गायत्री, मिथिलेश पुरोहित, दिनेश जोशी, पूजा और पवन पारिक। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म दो चोर में, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

फिल्म दो चोर का ये गाना आप सभी सुनना चाहते थे। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, सुनवी और जयपाल यादव, और इसी गाने को सुनना चाहते थे। आपने ये खत लिखा है, नोखा से प्रेम बलबीर, हरि सिंह, दुर्गा देवी, अनिल, अनुप्रिया, सीता और कैलाश। आप सबने भी अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो। शब्दकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा था, सुनने वाले हैं आप जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रियांज और रिफाकत। इसी गीत को सुनना चाहते थे रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और ये हैं देशमुख पेट अकोला से महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस जैन, जयेश, ऋषभ और संयम जैन। हमें उम्मीद है आप सभी ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा।

ये अवस्थी किशोर कुमार की फिल्म याराना के लिए गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे राजेश रोशन। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखा गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभू दयाल खटक और उनके परिवार वालों ने। और आप हैं अन्य श्रोता लिखते हैं कि ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में आपने अपना नाम लिखा है कृष्ण कुमार डागी, भूपत कुमार डागी, राधा देवी डागी, विक्रम, अर्चना और पूरा डागी परिवार। आपने लिखा है जिला बालोतरा से

फिल्म शोर का गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर और अन्य साथियों का गाया हुआ। गीतकार थे राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके परिवार वालों ने इस गीत को सुनना चाहा था और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे एक श्रोता हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे, आवाज मोहम्मद रफी की। सुनने के लिए ख्वाहिशमंद हैं कवन कॉलोनी बड़वाह से।

मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था आप तो ऐसे न थी। गीतकार निदा फाजली थी और संगीतकार थी उषा खन्ना। मनचाही गीत की कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है ममता। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी की रचना और रोशन की धुन। इस गीत को सुनना चाहते हैं जिला अम्बाला से शहनवाज आलम, सरफरोज बेगम, शाह उमर आलम और उनके परिवार के अन्य लोग। और इसी गीत को सुनना चाहती हैं बोरीवली गोराई महाराष्ट्र से एकता और उनके परिवार वाले।

इस दो गाने के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ही कार्यक्रम पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल। ये नाटक गोगोल के मूल नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की। तो सुनते हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल, इस नाटक का पहला भाग।
1: मिश्का, मिश्का
2: जी हुजूर।
1: सब लोग आ गए या नहीं?
2: जी जज साहब और स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब तो तशरीफ ले आए। हाँ। लेकिन आरती फिलपौतिक जामली ने कहा साहब,
1: इतने लंबे चौड़े नाम की जगह हेल्थ ऑफिसर कहते हुए तुझे शर्म आती है?
2: जी हाँ, है? बस वही नहीं आए।
1: आएंगे कैसे, वो तो अस्पताल के एक कोने में मुझे ये खतरनाक खबर मिली है। लिखा है, प्रिय एंटनोविच, ईश्वर तुम्हारी सेहत बराबर बनाए रखे, वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए दोस्त, एक जरूरी खबर यह है कि एक इंस्पेक्टर जनरल भेस बदलकर पूरे प्रांत का दौरा लगा रहे हैं, जिसमें वो हमारे शहर का खास तौर से मुआयना करेंगे।
3: मुआयना खास तौर से?
1: जी हाँ, मुझे ये सूचना एक बहुत ही खास आदमी से मिली है, लेकिन जो अपने को बहुत ही मामूली आदमी कहने का ढोंग करता है। वैसे तो मैं जानता हूँ दोस्त, हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन तुम जरा ज्यादा ही अपनी मुट्ठी गर्म करने की फिराक मेरे मेरा दोस्त भी देखो ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग कोई गैर थोड़े ही हैं। हाँ हाँ, तो साहिबान आगे लिखता है, ध्यान रखना एंटन एंटोनोविच, इंस्पेक्टर किसी भी दिन पहुंच सकता है, और क्या मालूम पहुंच ही गया हो और खुफिया तौर पर वहां रह रहा हो। परसों मैं अपनी चचेरी बहन अन्ना किरी लोबना के यहां गया था, मेरा जीजा तो एकदम भैंस जैसा भारी हो गया है, और हर बाकी सब हमारी घरेलू बातें लिखी हुई है।
4: लेकिन मियां साहब, ये तो एकदम नामुमकिन लगता है, भला यूं चोरी से हमारे शहर में आना?
3: क्यों साहब, हमारे शहर में इंस्पेक्टर भेजने का मतलब है? हम तो राजधानी से पहले ही इतनी दूर पड़े हुए हैं, बेबात ही हमें छेड़ने में फायदा।
1: ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब
2: जी,
1: आज तक दूसरे शहरों का मुआयना होता रहा
2: जी,
1: और हम चैन की बंसी बजाते रहे
2: जी। हाँ।
1: आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाती, आज हमारा भी नंबर आ गया।
4: मेयर साहब जी, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ हाँ। तो इस मुआयने के पीछे जरूर कोई गहरी राजनीतिक वजह है
1: जी।
4: हमारी सरकार जल्द ही लड़ाई की घोषणा करने वाली है, सरकार ने चुपचाप इस आदमी को भेजा होगा कि देखना इधर उधर बगावत तो नहीं हो रही है।
1: क्या बात कही, इस पर आप अपने आप को

0: बहुत ही अकलमंद और विद्वान कहते हैं। इस छोटे से गांव जैसे शहर में बगावत, ये क्या देश की सरहद है जनाब? यहां से 3 दिन तक घोड़ा दौड़ाते हुए भी आप सरहद तक नहीं पहुंच पाएंगे, समझे कुछ?
1: जी जी मैंने तो ऐसी ही बात कही थी हुजूर, लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हमारे अफसरान की किचकी आंखें हैं।
0: इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना काम देखना है, अपना। इस शहर के मेयर के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसके लिए मैंने कुछ जरूरी कदम भी उठाए हैं। आप लोगों को भी मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ।
2: जरूर जरूर, जरूर, जरूर, जरूर।
3: जरा ध्यान दीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब।
0: मैं आप सबसे ये बात कह रहा हूँ, पहले आप ही सुन लीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब
2: जी।
0: इंस्पेक्टर जनरल आपका अस्पताल जरूर देखेंगे, जल्दी से कुछ चादरें ले आइए और मरीजों को सफेद धुली वर्दियां पहना दीजिए। ये ध्यान रहे कि उनके शरीर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर दिखाई दे, समझे आप
2: जी?
0: चाहे तो वो भी ढका हुआ हो। हाँ, सिर पर टोपी पहना दीजिए।
2: ये तो बहुत मामूली बात है मेयर साहब, मैं अभी सब इंतजाम कर रह देता हूं।
0: और मरीजों से कहिए तंबाकू पीना बंद करें। अस्पताल के कमरे अच्छी खासी फैक्ट्री की चिमनी दिखाई देते हैं। सुनिए, मरीजों को पहचानने के लिए उनके बिस्तरों पर तख्तियां लटका देना जिनमें झूठ मूठ मरीज का नंबर, बेड नंबर और बीमारी का नाम लिखा होना चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रहे कि ये तख्तियां लैटिन, ग्रीक या किसी और भाषा में लिखी जाए ताकि इंस्पेक्टर के पल्ले कुछ ना पड़े, समझे आप? और हाँ, कुछ मरीजों को जबरदस्ती छुट्टी भी दे दीजिए। अफसर इतनी भीड़ देखेगा तो समझेगा यहाँ के डॉक्टर को कुछ आता ही नहीं है।
2: जी जनाब, मैंने और डॉक्टर हिब्बर ने तो शुरू से ही अस्पताल को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा को ही उत्तम मानते हैं, बेकार कीमती दवाओं पर पैसा खर्च करने से क्या फायदा। देखिए, और हमारे मरीज, ईश्वर उन्हें स्वर्ग में जगह दे, बहुत ही भले नागरिक हैं। जिन बेचारों को अच्छा होना होता है अपने आप अच्छे हो जाते हैं, और जिन्हें मरना होता है चुपचाप मर जाते हैं।
0: अब आपसे मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं जज ल्यापकिन त्यापकिन
1: जी।
0: आप इस शहर के आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज हैं
1: जी। हाँ,
0: लेकिन आपकी अदालत और जेल से तो चिड़ियाघर अच्छा है। जी, हर कमरे में चपरासियों की पाली हुई मुर्गियां और बत्तखें आजादी के साथ घूमती रहती हैं, और आने जाने वाले वकीलों और मुवक्किलों के पैरों से चिपटकर जबरदस्ती प्यार करती रहती हैं। मैं मानता हूं मुर्गी पालन बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन ईश्वर के लिए इस नेक काम से अदालत को तो बख्शिए।
1: ये कोई बड़ी बात नहीं मियां साहब, मैं सारी मुर्गियों बत्तखों को आज ही हलाल कर देता हूँ। अभी आइएगा ना आज शाम के खाने पर।
0: जेल तो परले सिरे का कूड़ा घर ही नजर आता है, कहीं जंगली जानवरों की खाल सूख रही है तो कहीं आपकी बंदूक शोभायमान हो रही है। खुशी की बात है कि आपको शिकार का इतना शौक है, लेकिन जब तक इंस्पेक्टर मुआयना नहीं करता आप ये गोदाम किसी और जगह बना सकें तो बड़ी कृपा होगी। बाद में चाहे फिर उन चीजों को यहाँ ले आइएगा, समझे आप? और आपका जो वो बूढ़ा मुंशी है ना
1: जी,
0: माना कि उसे सारा कानून पहाड़े की तरह रटा हुआ है, लेकिन उसके पूरे शरीर से शराब की ऐसी भयंकर बू आती है कि बाप रे, मैं तो एक मिनट भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता।
1: मजे की बात यह है मेयर साहब कि ये मेरा मुंशी शराब छूता तक रही। बात यह है, हुआ ये कि बचपन में
0: अगर उसके बदन से कुदरती तौर पर ऐसी बू आती है तो मामला और भी टेढ़ा है। उससे कहिए प्याज लहसुन या ऐसी किसी तेज बू वाली चीज का सेवन करे जो शराब की बू को मार दे, या फिर फौरन डॉक्टर के पास भागे। और हाँ, वो जज साहब, जरा आप भी अपने को अच्छी तरह टटोल
1: लीजिए। साहब मैं तो ठीक ही चल रहा हूँ, देखिए ना, रिश्वत भी लेता हूँ तो न लेने जैसी। शिकारी कुत्तों के पिल्ले, भला ये भी कोई रिश्वत है?
0: मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, रिश्वत रिश्वत होती है, चाहे वो शिकारी कुत्तों के पिल्लों के रूप में हो या किसी और रूप में।
1: वाह साहब, ये कैसे हो सकता है? रिश्वत तो वो होती है जनाब कि जब एक आदमी 500 रूबल का फरकोट या अपनी बीवी के लिए कीमती शाल लेता है।
0: बस, इन बेकार के तर्कों से तुम अपने को नहीं बचा सकते मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन। स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब
2: जी,
0: अपने स्कूल के बारे में दो एक बातें सुन लीजिए
2: जी।
0: मैं जानता हूँ आपके अध्यापक बहुत होशियार और विद्वान हैं, लेकिन उनकी चाल ढाल, उनका व्यवहार दुनिया से निराला है। हो सकता है कि पढ़ाने का ये नया तरीका निकला हो। उदाहरण के लिए, आपका एक टीचर तो हमेशा अजीबो गरीब तरीके से मुंह बनाता रहता है, इंस्पेक्टर उसे देखेगा तो बौखला उठेगा
2: जी। इसके लिए मैं भी मजबूर हूँ मेयर साहब, मैंने इस बारे में एक बार उससे बात की थी। हुआ ये कि शहर के सबसे बड़े रईस अपने बच्चे को दाखिल कराने आए हुए थे। उसने उनके आगे इतना बुरा मुंह बनाया कि वो तो उसी वक्त बच्चे को लेकर चलते बने। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका, बड़ी मुश्किल से समझाया उन्हें, नहीं तो वो स्कूल के अध्यक्ष को चंदा देना ही बंद कर देते। लेकिन हुजूर, वो कम वक्त पढ़ाता खूब है।
0: आप इतिहास के अध्यापक को ही ले लीजिए, वो बहुत दूरदर्शी और अपने विषय का पंडित है
2: जी,
0: लेकिन पढ़ाते वक्त उसे जो बेतहाशा जोश आ

0: पता है उसका क्या किया जाए। अभी उसकी बात है, वो बच्चों को जब तक असीरियनों का इतिहास बताता रहा तब तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही वो सिकंदर महान पर आया, बस कुछ ना पूछो, अपनी कुर्सी से कूदा, एक कुर्सी उठाई और जोर से डेस्क पर दे मारी। मैं जानता हूं इस तरह से वो युद्ध का वर्णन कर रहा था, ठीक है सिकंदर महान एक शूरवीर योद्धा था, लेकिन इसके लिए स्कूल की कुर्सियां क्यों तोड़ी जाएं?
1: जी आप ठीक कहते हैं मियां साहब, मैंने भी एक दिन स्कूल का टूटा हुआ फर्नीचर सामने रखकर उसे समझाया, लेकिन उसको तो बस एक ही रट है।
0: क्या
1: आप लोग कुछ भी कहते रहिए, मैंने तो शिक्षा के लिए अपने आप को मिटा देने की कसम खा रखी है।
0: और मिटा वो हमें रहा है। जीवन कितना रहस्यमय है, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी खतरनाक होता है।
1: अजी शिक्षा विभाग से तो ईश्वर ही बचाए। अजी मेयर साहब, ये भी कोई चमत्कार ही है कि मैं इस लाइन में रहकर भी जिंदा हूँ, वरना ये अपनी अकल के आगे किसी की चलने दें।
0: मुआयना, वैसे मुआयना है ना कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन यूं भेष बदल कर।
1: जी भेष बदल कर,
0: भेष बदल कर। मान लो वो अभी प्रकट हो जाए और कहे, अच्छा मित्रो तुम सब यहाँ जमा हो, हाँ तो तुम में से हेल्थ ऑफिसर कौन है
1: जी,
0: जरा आपके हाल चाल पूछने हैं, और जज साहब आप भी जरा मेरे कमरे में तशरीफ लाइए।
2: दोस्तों हमारे लिए तो ये डूब मरने की बात हो जाएगी।
1: कौन कौन कौन?
3: नमस्कार मैं।
0: क्या नमस्कार? तुम कोई नया समाचार लाए हो पोस्टमास्टर? मेरा मतलब है कोई खास चिट्ठी तो नहीं आई?
3: नहीं हुजूर, मैंने तो अभी अभी बॉब चिंस्की से ही ये भयानक खबर सुनी है।
0: तुम्हारा क्या ख्याल है पोस्टमास्टर?
3: ख्याल क्या है मेयर साहब, लड़ाई है और कुछ नहीं।
0: लड़ाई?
3: जी हाँ, हमारा देश भयंकर युद्ध करने वाला
0: है। तुम्हारी बेवकूफी का भी जवाब नहीं है पोस्टमास्टर।
2: अरे मियाँ, ये हमला हमारे शहर पर हो रहा है, ये चिट्ठी बता रही है कि इस लड़ाई के शिकार हम हैं, सिर्फ हम।
1: जी जी,
2: मुझे लगता है जरूर किसी ने मेरी शिकायत की है। वैसे मैं डरता वरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नेक कामों का भगवान साक्षी
1: जी
2: है।
1: जी हाँ, ठीक है।
2: लेकिन फिर भी थोड़ी सी घबराहट जरूर हो गई है, शहर के व्यापारियों ने जरूर मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखकर राजधानी में जहर उगला होगा।
3: जी हाँ, किसी की शिकायत पर ही इंस्पेक्टर यूं चोरी चोरी आ सकता है।
2: देखो पोस्टमास्टर, ये हमारे तुम्हारे दोनों के हित में है कि इस शहर से बाहर जाने वाली हर एक चिट्ठी को तुम खोल कर देख लिया करो। अगर उसमें हमारी शिकायत जैसी कोई बात नहीं लिखी है तो उसे फिर से चिपका कर या खुली ही आगे भेज दिया करो। और अगर वो समझ गए ना?
3: जी हाँ समझ गया, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। और इसमें आपके समझाने की बात क्या है, मैंने तो बरसों चिट्ठियां खोलने और पढ़ने का धंधा किया है। कुछ चिट्ठियों में तो इतनी मजेदार बातें लिखी रहती हैं कि उन्हें छोड़ने को मन ही नहीं करता।
0: सुनो, कोई ऐसी चिट्ठी तो तुमने नहीं देखी जिसमें पीटर्सबर्ग से अफसर आने की इत्तला हो?
3: जी नहीं, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प चिट्ठियां मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं मेयर साहब। काश आपने भी एक आध चिट्ठी पढ़ी होती, वो मनोरंजक बातें, वो लच्छेदार शैली के पढ़ने वाले की तबीयत फड़क उठे।
0: अच्छा?
3: एक लेफ्टिनेंट ने अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिख रखी थी। आप वो चिट्ठी पढ़ना चाहेंगे?
0: शुक्रिया शुक्रिया, मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ, मैंने जो सुझाव दिया है उसका तुम्हें ध्यान है ना?
4: ये भी ध्यान रहे पोस्टमास्टर साहब कि ऐसी हरकतों से तुम्हें जेल जाने में देर नहीं लगेगी।
0: आप बकते हो लियापकिन त्यापकिन, कोई सरे बाजार रिश्वत ले तो बेशक ये बुरा है, लेकिन ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है।
4: आपके सारे मामले व्यक्तिगत ही होते हैं मेयर साहब
0: जी।
4: हाँ छोड़िए, हाँ याद आया, ये बताइए क्या आप एक बहुत अच्छी नस्ल का शिकारी कुत्ता लेना पसंद करेंगे? मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था।
2: मैं ये भेंट तुम्हें मुबारक हो मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, मुझ पर मेहरबानी करो, मेरे चारों तरफ तो भेष बदला हुआ इंस्पेक्टर नाच रहा है। इंस्पेक्टर तुम यहाँ बैठकर माज करो और इंतजार करो कि कब दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर है? लगता है इंस्पेक्टर जंगल से पहुंच ही आ गए हैं।
0: हे भगवान,
5: दरवाजा खोलिए मेयर साहब,
6: दरवाजा खोलिए मेयर साहब।
5: तुम चुप रह सकते हो डॉक्टर चिंस्की, मेरा बोलना काफी है।
6: पर बॉब चिंस्की मेरी आवाज तुमसे ज्यादा तेज है। मेयर साहब दरवाजा खोलिए।
2: ये आप दोनों महाशय हैं,
7: कमाल हो गया मेयर साहब, कमाल हो गया।
0: सपने में भी इस बात की उम्मीद नहीं थी।
1: क्या हुआ डॉबचिंस्की? क्या बात है, हुआ रे भाई, क्या हुआ?
0: अजीब
1: क्या
0: खबर है? हम लोग होटल में पहुंचे थे कि
7: हाँ, मैं और डॉबचिंस्की होटल में पहुंचे ही थे कि
0: डॉबचिंस्की, जब मैं बता रहा हूँ तो
7: अरे पर मुझे ही बताने दो ना डॉबचिंस्की, तुम्हारा कहने का ढंग बहुत ही बचकाना है।
0: लेकिन तुम बीच में भूल जाओगे, तुम्हें आज तक कोई चीज याद रही?
7: अरे जहाँ मैं भूल जाऊँ मुझे बता देना।
0: क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने, यहाँ पहले ही मेरा दिल बैठा जा रहा है।
7: सुन लिया ना डॉबचिंस्की? लीजिए मेयर साहब, मैं शुरू से सारी बात सुना। सुबह आपसे वो अहम खबर सुनकर मैं कोरोवकीन को बताने के लिए गया, लेकिन उस वक्त वो घर पर नहीं था। मैंने सोचा रूस्ता कोविंस्की को ये समाचार दे दूं, लेकिन वो भी अपने साली की शादी में बाहर गया हुआ था। मैं वापस आ ही रहा था कि मेरी मुलाकात डॉबचिंस्की से हो गई।
0: समोसे वाले की दुकान

0: हाँ, समोसे वाले की दुकान के पास। लेकिन इससे ये खबर, आपकी नौकरानी अब धोतिया से पहले ही मिल चुकी थी। वो आबकारी की दुकान पर कुछ लेने गई थी।
1: मेयर साहब के लिए फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी।
0: हाँ, फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी। बीच में मत टोको डॉक्टर की। इसने मुझसे कहा कि मारे भूखे इसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मैं इसे कुछ खिलाने पिलाने के लिए होटल में ले गया। जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो एक लंबा तगड़ा खूबसूरत नवयुवक
1: सूट बूट पहने हुए
0: डॉक्टर की, तुम बार बार टोकते हो, ये बहुत बुरी आदत है। तो हाँ साहब, सूट बूट पहने हुए खूबसूरत नौजवान कमरे में चहलकदमी कर रहा था। रोबीला गंभीर चेहरा, जैसे कोई बहुत अहम बात सोच रहा हो। मैंने छूटते ही डॉबचिंस्की से कहा, हो ना हो, ये वही आदमी है। हम दौड़े दौड़े होटल के मालिक के पास गए। उसने बताया ये कोई सरकारी मुलाजिम है, पीटर्सबर्ग से आया है और सारातोव की तरफ जा रहा है। इसका नाम इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्टकोव है। लेकिन अजीब शैतान आदमी था वो भी। 2 हफ्ते से उनकी रोटियां तोड़ रहा था और उनकी छाती पर मूंग दल रहा था। न होटल से निकलने का नाम ले और न उनके बिल के चुकाने का नाम ले। होटल मालिक की बात सुनकर मैं तो जैसे उछल पड़ा। मैंने डॉबचिंस्की से कहा, पकड़ा, ये वो आदमी।
2: नहीं बाप, पहले मैंने ये कहा।
0: अरे हो सकता है पहले तुमने कहा, लेकिन फिर मैंने भी तो कहा था, यही है वो पीटर्सबर्ग का अफसर।
1: कौन सा अफसर?
0: अरे भूल गए मेयर साहब, अजी पीटर्सबर्ग का अफसर।
1: क्या
0: यानी इंस्पेक्टर जनरल?
1: क्या? नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता।
0: वो कैसे हो सकता?
1: वही है मेयर साहब, वही है। वो होटल में एक पैसा नहीं देता, वहां से जाता भी नहीं। इतनी हिम्मत एक इंस्पेक्टर जनरल की ही हो सकती है, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की नहीं।
0: एक बड़े अफसर की तरह वो हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहा था। हम लोग जब खा रहे थे तो उसने जिस ढंग से हमारे खाने की तरफ देखा, वो पैनी नजर एक इंस्पेक्टर जनरल के अलावा और किसी की नहीं हो सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ,
1: अगर सचमुच वो इंस्पेक्टर जनरल ही है तो फिर तो भगवान ही हमारा मालिक है। बॉबचिंस्की, तुमने उसका नाम क्या बताया?
0: इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्टकोव।
1: उसके कमरे का नंबर क्या है?
0: नंबर 4, जहाँ पिछले साल कमेटी के अफसरों में मारपीट हुई थी ना?
1: और उसे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए?
0: 2 हफ्ते।
1: मारे गए, अब क्या होगा?
3: मेरा एक सुझाव है मेयर साहब।
1: क्या?
3: हम सब मिलकर इंस्पेक्टर साहब का स्वागत कर दिख लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला ही वहां जाऊंगा, अकेला। आप लोग तो वहां जाकर ठूंठ की तरह खड़े हो जाएंगे। डॉबचिंस्की, तुम बता रहे थे कि इंस्पेक्टर नव युवक सा लगता है।
4: जी हाँ, मुश्किल से 23-24 साल का होगा।
1: ये भी गनीमत है, नौजवान अफसरों को उल्लू बनाना आसान है। अच्छा साहिबान, आप लोग फटाफट सब चीजें ठीक ठाक कर लीजिए, समझे आप? मैं होटल का दौरा लगाने और यात्रियों की सुख सुविधा मालूम करने का बहाना कर इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ। मिश्का,
5: जी हुजूर।
1: गाड़ी तैयार है?
5: जी तैयार है।
1: प्रहरात कहाँ है?
5: हुजूर वो आज ड्यूटी पर नहीं है।
1: क्यों नहीं है?
5: जी वो रात आबकारी वाले नुक्कड़ पर पहरा दे रहा था। सुबह जब ड्यूटी से लौटा तो नशे में धुत था। 2-3 टप पानी डाले जाने पर भी उसका नशा ज्यों का त्यों है।
1: तुम लोग सिपाही नहीं हो, बादशाह हो, बादशाह। तुम भरकर अंदर जाओ। नहीं नहीं, ठहरो ठहरो, भरो भरो भरो, और पुलिस सुपरिंटेंडेंट को बुला लो, समझे? जल्दी जल्दी।
3: अभी जज साहब, मेरा ख्याल है कि अब चलकर सब कुछ ठीक ठाक कर लेना चाहिए।
6: अबे तुम्हें क्या फिक्र है हेल्थ अफसर साहब, मरीजों को साफ वर्दी पहना दोगे, सब ढक जाएगा।
3: जी हाँ, और अस्पताल के कोने कोने से जो बदबू के झोंके आते रहते हैं उसे आप किस तरह से?
6: बदबू तो जनाब मेरी अदालत से भी बहुत आती है, पर मुझे इस बात का बिल्कुल फिक्र नहीं है। डर ये है कि कहीं इंस्पेक्टर साहब ने भूले भटके कागज पर नजर डाली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। पिछले 15 साल से मैं फैसला देता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कसम खाने को भी कभी कागज पर नजर नहीं डाली और ना पढ़ा।
7: चिंता मत करो मित्र, इंस्पेक्टर साहब तुम्हें इनाम दिए बिना नहीं रहेंगे। हाँ,
1: कौन
8: कौन है?
1: कौन?
9: हुजूर, आपने मुझे याद किया।
7: आ गए आप पुलिस सुपरिंटेंडेंट साहब। पलक झपकते देर नहीं होती कि आप ना जाने कहां उड़नछू हो जाते हैं। ये आलम है हमारे शहर के सम्मानीय पुलिस सुपरिंटेंडेंट का।
9: मगर हुजूर, मैं तो बाहर के गेट पर ड्यूटी दे रहा था।
7: सुनिए, इस शहर के मुआयने के लिए पीटर्सबर्ग से अफसर आ पहुंचा है, आपको सारा इंतजाम करना है। जल्दी से किसी लंबे तगड़े सिपाही को नई वर्दी पहनाकर पुल पर खड़ा कर दीजिए, ताकि अफसर पर रौब पड़ जाए। शहर का सारा कूड़ा किसी बुत या किसी स्मारक के पीछे फेंकवा दीजिए। शहर के एक किनारे कुछ खुदाई करवा दीजिए और मजदूरों को हिदायत दे दीजिए कि मिट्टी इधर उधर करते रहे, जिससे लगे वहां जमीन बराबर की जा रही है।
9: जी बहुत अच्छा।
7: और हाँ, अगर खुदा ना खास्ता अफसर ने किसी पुलिस वाले से सवाल किया, तुम अपनी नौकरी में खुश तो हो, तो उसे तुरंत उत्तर देना चाहिए, जी आपकी कृपा से मैं बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूं। ऐसे आदमी को बाद में सचमुच संतुष्ट करने पर विचार किया जाएगा।
9: जी मैं इस बारे में अभी एक नोटिस घुमा देता
7: हूं। एक बात और है, अगर कोई पूछे कि अभी तक अस्पताल में गिरजा क्यों नहीं बनवाया गया, जबकि इसके लिए 5 साल पहले ही चंदा इकट्ठा कर लिया गया था, तो उसका जवाब यह है कि गिरजाघर बना था लेकिन उसमें आग लग गई, समझे आप। मैंने इस बारे में सरकार को रिपोर्ट भी भेज रखी है,

0: डर यही है कि तुम में से कोई बेवकूफ कहीं ये ना कह दे कि गिरजे का निर्माण तो कभी शुरू ही नहीं किया गया। अब मैं जाता हूं डॉपचिंस्की, तुम मेरे साथ चलो।
1: जी बाप, मेरे साथ मुझे भी साथ ले लीजिए।
0: समझदारी की बात करो डॉपचिंस्की, गाड़ी में दो ही आदमियों की जगह।
1: कोई बात नहीं, मैं पायदान पर ही खड़ा खड़ा चला जाऊंगा। दरअसल मैं भी दरवाजे की दरार से अफसर और आपकी भेंट देखना चाहता हूं।
0: अच्छा आइए आइए, चलिए चलिए
2: चलिए चलिए।
3: सुनिए सुनिए।
4: अरे पापा तो चले गए मम्मी।
3: और क्या मारिया, ये देर सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है।
4: मम्मी मेरा नेकलेस कहाँ रखा है? मम्मी मेरे हेयर पिन नहीं मिल रहे। मम्मी क्या अफसर आ गया है? कैसा दिखता है, जवान है या बूढ़ा है?
3: लेकिन लेकिन पापा ने जाने से पहले हमें बुलाया क्यों नहीं? अब हम अफसर को कैसे देखेंगे?
4: तू क्या देखेगी, तुझे तो पोस्ट मास्टर को देखने से भी फुर्सत नहीं मिलती।
5: न जाने पापा का अफसर कैसा होगा, मेरा दिल कहता है वो बहुत सुंदर होगा।
6: धत तेरे की, हमें पीटर्सबर्ग से चले 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक आधे रास्ते में अटके हुए। लेकिन हमारे मालिक साहब को इसकी कोई फिक्र ही नहीं, उन्हें कोई काम ना काज ना नौकरी ना चाकरी, उन्हें तो बस हुक्म चलाना आता है। और से इवान अलेक्जेंड्रोविच इलेस्टकोव के लिए, यानी हमारे लिए शानदार होटल का शानदार कमरा बुक कर लो। आसिफ जल्दी से बैरे को खाना लाने के लिए बोलो, लेकिन ध्यान रहे खाना एकदम लजीज हो, हमें घटिया खाना खाने की आदत नहीं।
7: घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने।
6: अरे कभी इधर उधर से पैसे आ भी गए तो साहबजादे को जैसे पर लग जाते, फौरन बड़े बड़े आदमियों को जा घेरेंगे और जुए में तब तक जुटे रहेंगे जब तक जेब में आखिरी सिक्का रहेगा। हाँ अरे कई बार मालिक जेबें गर्म करके भी आते हैं, तब मैंने भी खूब गुल छर्रे उड़ाए। कुछ ना पूछिए, खूब दावतें खाई हैं, बढ़िया कपड़े पहने हैं। मैं और मालिक बाजार से निकलते हैं तो दुकानदार सिर झुका झुका कर स्वागत करते हैं, आइए आइए श्रीमान हमारी दुकान पवित्र कीजिए। ओह आज तो भूख के मारे ठीक से हंसा भी नहीं जा रहा, और होटल का मालिक है कि हमारी तरफ देखता तक नहीं, इतने जोर की भूख लगी है कि ओह मालिक आ गए। ओह मालिक आज तो आप सह से जल्दी वापस आ गए।
0: नीचे जाकर मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत जोर की भूख लगी है।
6: मालिक ये काम मेरे बस का नहीं है।
0: क्या
6: मालिक, मेरा मतलब है मेरे जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा, होटल के मालिक ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक आप उसका पिछला बिल नहीं चुका देते वो हमारे खाने की छुट्टी रखेंगे।
0: उसकी शेम अजाल की हमें खाना देने से इनकार करे।
6: आज ही उसने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि वो शहर के मेयर के पास हमारी शिकायत लेकर जा रहा है। कहने लगा मैं मेयर साहब को बताऊंगा कि पीटर्सबर्ग का एक उचक्का लफंगा अपने नौकर के साथ 2 हफ्ते से मुफ्त मेरे होटल की रोटियां।
0: और तुम बहुत चाव के साथ ये सब सुनते रहे।
6: सुनना ही पड़ा मालिक, मुझसे कहने लगा फिक्र ना करो बच्चू, कल से तुम्हें जेल की रोटियां मिलेंगी।
0: बस भी करो, जाओ एक बार फिर उसे खाना भिजवाने के लिए बोलो।
6: मैं उसे यहीं बुला लाता हूँ, आप खुद ही उससे बात कर लीजिए ना।
0: मैं ऐसे घटिया आदमी की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता।
6: अच्छा आप कहते हैं तो एक बार फिर बात करता हूँ।
0: इतनी भूख लगना भी मुसीबत है इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्तकोव, तुम भी किस भूखे शहर में आकर फंस गए। यहाँ तो रहने का मजा ही नहीं आ रहा, पर यहाँ से निकले भी कैसे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और उधर सारा तो मैं बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बाबा समझते हैं मैं पीटर्सबर्ग में किसी अच्छी खासी नौकरी में हूँ, और हमें अभी तक ये भी नहीं मालूम कि नौकरी किस बला का नाम।
6: मालिक लिए वेटर खाना लेकर आ गया।
0: खाना?
6: जी
0: यानी कि खाना। खाना
8: हमारे मालिक ने कहा है आज के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा।
0: भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, मेरा मतलब है मित्र पैसा वैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, मुझे खाने का इतना चाव नहीं है, लेकिन इसलिए खाता हूँ क्योंकि क्योंकि क्योंकि मुझे खाना है। हाँ
8: जी जी।
0: खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, शे क्या सिर्फ सुपर मुर्गा, शे क्या बदतमीजी है, इसे ले जाओ और अपने मालिक से कहो ये बहुत कम है।
8: मालिक कहते हैं ये जरूरत से ज्यादा है।
0: बकता है, और बाकी चीजें कहाँ गई? मछली, कलेजी, कटलेट और वो अचार चटनी।
8: बाकी चीजें नहीं है।
0: क्यों नहीं? अरे मैंने ऊपर आते हुए खिड़की से झांक कर देखा था तो पिद्दी से गा उंगलियां चाट चाट कर दुनिया भर की चीजें अड़प रहे।
8: अजीबे ऊंचे ग्राहकों के लिए है, आप जैसों के लिए नहीं।
0: बको मत, मेरे गले में वो चीजें अटकती, वो लोग भी तो मुझ जैसे मुसाफिर हैं।
8: फर्क है हुजूर, वो नकद दाम देते हैं और आप।
0: मैं इतनी गजा नहीं खाता कि तुम जैसे जाहिल गमार से बहस कर सकूं। ये सूप है जैसे गर्म पानी में नमक खोल दिया गया।
8: कोई बात नहीं हुजूर, मालिक ने कहा था आपको जरूरत ना हो तो वापस ले आना।
0: वापस ले आना। लो आसिफ।

0: नीचे मेरा आया हुआ है और आपके बारे में कुछ पूछताछ कर रहा है।
1: क्या?
0: जी हाँ।
1: आखिर उस बदमाश ने मेयर के पास मेरी शिकायत करी थी? नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेयर की क्या मजाल कि मुझे जबरदस्ती जेल भेजे। मैं उसे ऐसी झाड़ दूंगा कि याद रखेगा। तुम्हारी ये हिम्मत हुई कैसे? तुम्हारी ये मजा?
2: श्रीमान, मेरा अभिवादन स्वीकार करें।
3: आप भी मेरी नमस्ते दीजिए।
2: क्षमा कीजिएगा, बिना पूछे ही चला।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल शहर के मेयर की हैसियत से ये मेरा पहला फर्ज हो जाता है कि बाहर से आने वाले यात्रियों की सुख सुविधा का ध्यान रखूं, उन्हें किसी भी तरह।
1: लेकिन आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो होटल की कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। दरअसल शरारत तो होटल के मालिक की है। वो मुझे जान बूझ कर घटिया खाना देता है। मांस ऐसा जैसे पत्थर के टुकड़े हों, और सूप भगवान ही जाने उसमें क्या डाला जाता है। मैंने अभी अभी उसे खिड़की से बाहर फेंका है। चाय में मछली की बू आती है, और ऊपर से वो मुझे धमकी देता है कि मुझे वो।
3: मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हुजूर, बहुत शर्मिंदा हूँ। आपसे सच बताऊं, उसमें मेरी जरा भी गलती नहीं है। हमारा शहर तो ताजे गोश्त के लिए मशहूर है। ताज्जुब है, ये आदमी कहां से कूड़ा उठा लाता है। दरअसल ये होटल आपके रहने लायक है भी नहीं। मैं आपसे कहीं और चलने की प्रार्थना कर सकता हूँ?
1: नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं खूब समझता हूँ कहीं और से आपका मतलब क्या है। आप इस बहाने मुझे जेल ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको मुझे जेल ले जाने का क्या अधिकार है?
3: हे भगवान, ये तो सब जानता है, जरूर किसी ने इससे मेरी शिकायत।
1: जनाब, आप पूरी फौज लेकर आइए तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं सीधा जार के पास जाऊंगा। आप लोग मुझे समझते क्या हैं?
3: ऐसा ना कीजिएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे तबाह हो जाएंगे।
2: खूब खूब, तो आपके बीवी बच्चों को बचाने के लिए मैं जेल चला जाऊं?
1: माफ कीजिए, मैं भी सब जानता हूं,
3: मुझसे गलती हुई हुजूर। दरअसल मुझ में अकल की बहुत कमी है, और क्यों ना हो हुजूर, तनख्वाह इतनी कम मिलती है कि सारा दिमाग उधर सोचने में ही खत्म हो जाता है। तभी तो भूले भटके रिश्वत लेने की गलती हुई है हुजूर। लेकिन विश्वास कीजिए, रिश्वत में भी हमेशा छोटी मोटी चीजें ली हैं मैंने। और वो जो आपने वो देखी ना, हवलदार की विधवा को कोड़े लगाने वाली बात सुनी होगी ना, वो बिल्कुल झूठ है साहब, बिल्कुल झूठ है। मेरे दुश्मनों का गढ़ा हुआ किस्सा है। और हुजूर आपसे क्या कहूं, इन दुश्मनों से तो मुझे अपनी जान का भी खतरा हो गया।
1: मुझे इन बातों से क्या लेना देना, लेकिन आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं होटल का एक एक पैसा चुका दूंगा, पर इस समय मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
3: धूर्त कहीं का, किस चालाकी से पैसे की बात छिड़ी है। पर बच्चू, मैं भी तुझे अपने जाल में फंस कर ही छोड़ूंगा। माफ कीजिएगा हुजूर, अगर आपको पैसों की दिक्कत हो तो मैं सेवा के लिए उपस्थित हूँ। शहर में आने वाले प्रत्येक यात्री की सेवा करना तो मेरा।
1: ठीक है ठीक है ठीक है, आप मुझे कुछ रूबल उधार दे दीजिए ताकि मैं होटल का बिल दे सकूं। हाँ, मेरा ख्याल है 200 रूबल में काम चल जाएगा।
3: ये लाइए लाइए, गिनने के कष्ट न कीजिएगा।
4: पूरे 200।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वापस जाते ही भिजवा दूंगा।
5: अरे आसिफ,
3: डॉबचिंस्की,
2: शुक्र है इतने पैसे चुपचाप ले लिए इसने। मैंने भी समझदारी की, 200 की जगह 400 रूबल दे दिए।
5: आसिफ, वेटर को बुला लाओ।
6: जी अच्छा।
7: इंस्पेक्टर जनरल गोगोल के इस प्रसिद्ध नाटक के हिंदी रेडियो रूपांतरण का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार थे शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

क्या सुनते हैं, फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। ये है फिल्म एडिटर दिलीप दरक के फिल्मी गीतों की एक झलक।

0: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों में न जाने कितनी ही फिल्मी हस्तियों से आज तक हम मिलते रहे हैं, उनसे रूबरू होते रहे हैं, और आपने फिल्म के जितने भी पक्ष हैं, जितने पहलू हैं, फिल्म निर्माण हुआ, फिल्म निर्देशन हुआ, फिल्म में एक्टिंग करने वाले भी यहाँ आते रहे हैं, फिल्म के लिए गीत गाने वाले आते रहे हैं, संगीतकार आते रहे हैं, शायर आते रहे हैं, गीतकार आते रहे हैं, मगर फिल्म का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, एक पहलू है, जो है फिल्म एडिटिंग। आज उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है विविध भारती के स्टूडियो में जाने माने फिल्म एडिटर यानी फिल्म संपादक दिलीप दरक जी को। दिलीप जी, विविध भारती के स्टूडियो में इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हम भी आपका सबका आभार मानते हैं कि आपने हमको बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में, और सभी श्रोताओं को भी हम स्वागत करते हैं और सबका अभिनंदन करते हैं कि स्टाफ का पूरा विविध भारती के, जिन्होंने हमको इस इंटरव्यू के लिए बुलाया
0: जी
1: और संवाद के लिए बुलाया, तो हम आपका आभारी है। और हम ऐसी चीज़ों पर बातचीत करेंगे जो कि फिल्म से संबंधित है, सब बातचीत करेंगे। तो पात्रिकर जी, आप पूछिए क्या पूछना है।
0: दिलीप जी, फिल्मों में कहानी के मुताबिक जितने सीन्स शूट किए जाते हैं, गीतों का एडिटिंग होता है, इसकी तो बात हमने की, मगर कई बार एक एक्शन सीन्स होते हैं जो मारधाड़ वाले सीन्स हुए हैं, या कहीं से मोटर आ रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, इस तरह के सीन जो एक्शन सीन्स होते हैं, इनमें एडिटिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: क्यों? तो सर, वो शॉर्ट में क्या करते हैं, वो एक्शन सीन में
0: जी,
1: एक्शन सीन तो अभी सब तो कंप्यूटराइज हो गया, पहले रियल हो जाता था।
0: अच्छा,
1: मतलब पहले गाड़ियां उड़ाते थे।
0: हाँ।
1: तो एक पिक्चर हमने की थी, उसमें 6 गाड़ियां उड़ा दिए थे।
0: ओहो,
1: रियल चेस हुई थी।
0: अच्छा,
1: और वो इतनी बड़ी चेस है, हिंदुस्तान की पहली चेस थी।
0: हाँ।
1: जो राजश्री ने पिक्चर बनाया था एजेंट विनोद।
0: हाँ।
1: उसमें 6 के 6 गाड़ियां उन्होंने उड़ाए थे, उसमें कोई वायर नहीं था।
0: हाँ।
1: या कोई ट्रिक नहीं थी।
0: अच्छा,
1: वीरू देवघन उसका ये था फाइट कंपोजर, एक्शन सिक्वेंस
0: जी,
1: उन्होंने गाड़ियां कैसे उड़ाए थे आज भी हम देखते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक किया था कि बॉम्बे में कोलाबा में शूट चल रही थी, मोटर बाइक जाते ऐसा ऊपर से। वो तो उन्होंने अपना इससे कहते, उस टाइम में कोई वायर नहीं था, अभी तो क्या है, थोड़ा बहुत भी हुआ तो वायर लगा देते।
0: अच्छा।
1: जैसा अभी टेबल पर से कूदना है, वायर लगाए कूदे। मतलब उस टाइम के जो हीरो थे, जितने भी हीरो है, धर्मेंद्र है, शम्मी कपूर है, ये मतलब ज्यादा से ज्यादा खुद बॉक्सिंग
0: स्टंट किया करते थे, पूरा
1: एक्ट करते थे। उस टाइम में वायर था ही नहीं सर, खाली चेस वगैरह में होता था, तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ये हो जाता।
0: हाँ।
1: बाकी खुद

0: कर लेते थे सब, और बहुत सारे सीन रहते थे जैसे जंप मारने का वगैरह, हाँ, उसमें हाँ. कहीं जगह पर डुप्लीकेट यूज करते थे. और उस टाइम में तो क्या होता था कि एक पिक्चर आई थी, मैं बताता हूँ, गीता मेरा नाम पिक्चर का नाम है
1: जी,
0: और एक आई थी हमराई, रामन हाँ, सागर की
1: जी.
0: उसके अंदर एक सीन है हमराई में, रणधीर कपूर, तनुजा और गजानन झागीदार
1: जी,
0: उनके पीछे गुंडे लगते हैं और वो भागते हुए जाते हैं और एक टूटा हुआ ब्रिज था उधर.
1: हाँ,
0: आप पिक्चर में अभी भी देखेंगे
1: जी जी
0: तो पहले टेक में वो जो डुप्लीकेट जो भी बैठे थे उन्होंने पूरा मार दिए थे जंप उधर.
1: अच्छा,
0: तो 40-50 मतलब 30-40 फीट का होगा ऐसा.
1: हाँ,
0: ब्रिज तो आपको मालूम है, छोटे नाले पर रहते हैं.
1: अच्छा,
0: मगर सेकंड टेक में वो गिर गए थे उधर आधे में.
1: ओहो,
0: तो ऐसा है. और एक पिक्चर आई थी गीता मेरा नाम, उसमें फिरोज खान, सुनील दत्त और साधना
1: जी,
0: तीनों के चेस तीनों भी क्रॉस करते पूरा.
1: अच्छा,
0: जंप करके. तो उसमें पहले जोखिम रहता था, कर लेते थे पहले. बहुत सारे में एक्सीडेंट हो जाते थे, कभी वो फाइटर ये हो जाता था. और अभी क्या है तो अभी तो कंप्यूटराइज हो गया, अभी तो इजी हो गया है.
1: जी. तो ऐसे जो ये एक्शन सीन्स होते हैं, इन दृश्यों को जोड़ना, ये कितना मुश्किल काम होता था?
0: मुश्किल काम नहीं, उनके शॉट रहते सर.
1: अच्छा,
0: शॉट वो कटिंग में ले लेते शॉट.
1: अच्छा,
0: कटिंग में लेने के बाद हम वो काट लेते, जैसा इधर से गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया, जैसा विलन ने भी एक्सीलेटर दबा दिया.
1: अच्छा,
0: हीरो उधर से आ रहा है, विलन इधर से आ रहा है, दोनों की टक्कर हो रही है, दोनों उड़ के गिर रहे हैं, ये अलग अलग शॉट लेते वो.
1: अच्छा,
0: कट में.
1: हाँ,
0: तो हमको वो टाइमिंग के हिसाब से ड्रू किया उधर, उसने ड्रू किया, फिर इसने देखा,
1: हाँ,
0: उसने देखा, बैंग आ गया उसमें, फिर उसके बाद ये कर लेते. ये सब पूरे यूनिट का काम है सर. अकेला एडिटिंग में क्या होता है कि जिसमें डायरेक्टर का कल्पना रहती है, उसका थॉट रहता है,
1: जी, जी.
0: उसको वो नैरेट करते हैं फाइट कंपोजर के साथ में.
1: हाँ,
0: फाइट कंपोजर उसको एग्जीबिट कर लेता है, पहले करके बताता है, वो भी सोचता है कि कैसा करे. ये करने के बाद फिर बाद में वो शॉट लिए जाता है, उसको असेंबल करते हैं.
1: हाँ,
0: और उसका असेंबल करने के बाद में वो जो हम पब्लिक को दिखाते हैं, असेंबल करने के बाद में फाइनल जो फुटेज रहता है उसका,
1: हाँ,
0: जो इम्पैक्ट क्या रहता है कि सिक्वेंस जब रहता है कि भाई इधर से हीरो आएगा, इधर से विलन आएगा, दोनों की टक्कर होगी, दोनों हवा में गिरेंगे,
1: हाँ,
0: इधर गिरेंगे, उधर गिर गए, रिएक्शन आ गया, दोनों उठ के भाग गए. ये तो
1: अच्छा,
0: अपना कहानी में हो गया.
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: शूट कर लेते.
1: हाँ,
0: शूट करने के बाद डायरेक्टर वगैरह दोनों मिलकर अपना दिमाग लगा के सब जो उनका कॉन्सेप्ट है वैसा कर लेते. बाद में एडिटर को ला के दे देते भाई काट दो. तो हम काटते हैं और डायरेक्टर को पसंद आ गया तो हम जीत गए.
1: अच्छा,

0: बहुत सारे एडिटर पहले के ये थे, तो कि वो डायरेक्टर को क्या चाहिए,
1: हाँ
0: आपने शूट किया क्या चाहिए, वही डायरेक्टर ये कर लेता था।
1: कोई ऐसी फिल्म का एक्शन सीन याद आ रहा है जिसको एडिट करने में आपको बहुत मजा आया हो और डायरेक्टर को बहुत ज्यादा आपका काम पसंद आया हो?
0: पिक्चर तो किया था मैं, इंडिपेंडेंट बहुत पिक्चर किया था।
1: हाँ जी,
0: एक पिक्चर थी हमारा एक जख्म बोल के पिक्चर था एक,
1: हाँ
0: मैंने इंडिपेंडेंट 2006 में आया था पिक्चर
1: जी,
0: उसमें मुकेश तिवारी एंड नया हीरो था,
1: हाँ
0: उसका था। और एक जानी दुश्मन पिक्चर आई थी हमारी
1: जी जी
0: जो सनी देओल की,
1: हाँ
0: उसमें ग्राफिक था पूरा इसमें, तो उसके अंदर टूनू वर्मा सनी देओल तरफ से फाइट मास्टर था और अक्षय कुमार तेरी तरफ से अब्बास अली मुगल।
1: अच्छा,
0: तो वो इतना अच्छी तरह से शूट किए थे, वो हमको बोलते थे दादा ये शॉट ऐसा यहाँ से आएगा, ये ऐसा आएगा, ये आएगा। तो उसमें क्या है कि जो पंचे रहते थे जैसा इधर मुंह पर मार दिया वो अलग लेते थे, वो लॉन्ग शॉट में अलग रहता था, जैसा आपने बोले ना लॉन्ग शॉट में हीरो आया नजदीक क्लोज में फेस के ऊपर विषम कीर दिया,
1: अच्छा
0: तो वो अलग शॉट रहता था। फिर गिरने का इनका, अभी तो आजकल क्या है गिरना पड़ना ज्यादा हो गया, ऊपर से जंप मार लेते गोल गोल घूमते,
1: हाँ।
0: मगर उस टाइम में ज्यादा नहीं रहता था। तो वो पूरा मैच करके वो पसंद आना चाहिए, डायरेक्टर बोले कि भाई अच्छा लगा हमको।
1: जी जी
0: कुछ
1: जी
0: एडिटर ऐसे थे कि डायरेक्टर उनको बोलते थे दादा ये काम कर लो आप। हमारे एक डायरेक्टर थे, मेरे भाई के साथ भी मैंने काम किया था नागेंद्र के साथ में,
1: जी
0: मगर एक डायरेक्टर थे प्रकाश पंचाल,
1: जी जी
0: तो उनके साथ में मेरी पहली पिक्चर थी लाभलो सौभाग्य चलेनी,
1: मराठी फिल्म,
0: मराठी फिल्म।
1: जी
0: तो उसमें उसके पास 7 एडिटर जा चुके थे वो पिक्चर में।
1: हाँ
0: उसका कंडीशन क्या था कि 22 फरवरी को पिक्चर की शूटिंग चालू करने वाले थे वो,
1: हाँ
0: 22 मार्च को पिक्चर की शूटिंग खत्म,
1: अच्छा
0: 1 तारीख से डबिंग चालू,
1: हाँ
0: और 17 तारीख के दिन उनको मिक्सिंग, और उनका हीरो का कोई जाने वाला था बाहर। तो वहाँ पर सब डर गए कि भाई इतना कैसा काम होगा ऐसा फास्ट। तो मुझे बुलाया डायरेक्टर ने,
1: जी
0: तो प्रोड्यूसर भी थे साथ में 3, अजय शाह, राजेंद्र काले और अमित मंगतानी, 3 प्रोड्यूसर थे। अनित मंगतानी का था कैसेट का, कैसेट बनाते थे वो,
1: जी
0: और ये राजेंद्र काले तो कॉरपोरेटर थे गोरेगांव के, और अमित शाह बिजनेसमैन थे,
1: जी
0: तो उनको तो कुछ ज़्यादा नहीं था। तो मुझे बोले कैसा करेंगे, मैं बोले करके दे दूंगा बताओ। तो उन्होंने पूछा कैसा करोगे, मैं डायरेक्टर को बोला कि एक काम करो, जो पिक्चर फ्लैशबैक चालू होती थी,
1: जी
0: एक समारोह है उधर शादी हो रही एंगेजमेंट, मगर कोई आदमी विलन आके बोलता है कि भाई ये नाजायज बच्चा है, तो फिर वो एक्सप्लेन कर लेता है पूरी पिक्चर की कहानी।
1: हाँ
0: तो उसमें क्या

0: फ्लैशबैक था, फ्लैशबैक एक नंबर में चालू होता था, 16 नंबर में ख़त्म हो जाता था।
1: अच्छा,
0: तो डायरेक्टर को मैंने क्या बोला कि सर आप एक काम करो, आप मुझे कहानी बताओ, खाली क्लाइमैक्स में आप बैठो, समझे ना। और बहुत सारे डायरेक्टर कॉम्पैक्ट स्क्रिप्ट रहता था, भाई ये सीन है इसमें इतनी शॉट है।
1: अच्छा,
0: वो स्क्रिप्ट हमको दिए जाते थे, मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से एडिट किया उसको, और टेकिंग अच्छी रहती थी, बहुत सारे डायरेक्टर टेकिंग अच्छी करते थे। मेरे डायलॉग के बाद आपका डायलॉग आ गया, हीरोइन का आ गया, ये आ गया, इंसर्शन आ गया, ये आ गया, हो गया, हो गया, और हम सीन दिख के दिखाते थे। कुछ डायरेक्टर तो ईजी रहता, तो प्रकाश पंचाल के साथ मैंने 9 पिक्चर की है एक ही डायरेक्टर के साथ में।
1: अच्छा,
0: तो उनका क्या था कि भाई वो शूटिंग उधर करते थे, कभी कभी हम एडिटिंग इधर करते थे, तो आने तक टाइम बच जाता था। उन्होंने जब 22 मार्च को ख़त्म किया,
1: हाँ,
0: तो मेरा क्लाइमैक्स छोड़ के गाने छोड़ के सब एडिट कर लिया था मैं।
1: अच्छा,
0: आने के बाद देखे उन्होंने, क्लाइमैक्स के लिए बैठ गए। क्लाइमैक्स बैठने के बाद वो क्या रहता है, थॉट रहता है ना उनका, कहाँ से चालू करना है, कहाँ ख़त्म करना है।
1: हाँ,
0: बाकी तो सब था, और गाने तो एडिट अच्छी तरह से पिक्चराइज किए थे। तो वो हमने वो पिक्चर को उनको करके दे दिया, वो पिक्चर रिलीज हो गई। उसके बाद वो डायरेक्टर हमको छोड़ा ही नहीं।
1: अच्छा,
0: 10 पिक्चर किया, मेरे भाई की पिक्चर नहीं किया मैं दूसरी, मगर उसकी किया था।
1: अच्छा, तो कार्यक्रम के इस मोड़ पर आप कौन सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
0: मेरा सर एक गाना था मैं जिसको बहुत लाइक करता हूँ।
1: हाँ जी,
0: हर एक आदमी की जिंदगी में एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है, हर एक का, लड़की का भी रहता है। लड़के को लगता है कि हमको राजकुमार मिले,
1: हाँ,
0: लड़के को लगता है कि हमको राजकुमारी मिले, जो जीवन संगनी है,
1: हाँ,
0: अर्धंगिनी जो बोलते हैं जिसको,
1: हाँ
0: वो अच्छी मिले, तो हमेशा सपने में सोचते रहते हैं।
1: हाँ,
0: एक गाना था वो, पहले मिले थे सपनों में, आज सामने पाया तो एक बात जानू। ये
1: क्या बात,
0: जिंदगी पिक्चर का गाना है,
1: जी जी
0: राजेंद्र कुमार वैजयंती माला का,
1: हाँ,
0: रामानंद सागर की पहली पिक्चर, मतलब उनके बैनर में बनी थी, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था,
1: अच्छा,
0: और वो गाना बहुत अच्छा लगा।
1: आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं यही गाना।

0: दिलीप जी, फिल्म देखते समय सबसे पहले टाइटल्स आते हैं,
1: जी
0: तो हमारे श्रोता जितने भी आम दर्शक हैं फिल्मों के, उन टाइटल्स में एक नाम देखते हैं, उस लिखा होता है फिल्म एडिटर, और उस नाम के नीचे लिखा होता है AFE। ये AFE क्या होता है?
1: सर, जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है
0: हाँ जी,
1: फिल्म लाइन में, आर्टिस्ट का,
0: हाँ जी,
1: उसके बाद प्रोड्यूसर का,
0: हाँ
1: डायरेक्टर का, कैमरामैन का, एडिटर का, सबके एक अपने यूनियन है उनके।
0: अच्छा,
1: यूनियन मतलब एक एसोसिएशन है
0: हाँ
1: जो कि गवर्नमेंट रिकनाइज है, तो
0: ओके,
1: उसका नाम है AFE लिखा जाता है, तो एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर,
0: एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो
1: वीडियो
0: एडिटर।
1: एडिटर
0: अच्छा
1: एडिटर
0: अच्छा अच्छा तो वो
1: वो
0: शॉर्ट में
1: हमारा
0: लिखा गया।
1: पूरा जो है ना,
0: हाँ
1: कुछ जितने भी एसोसिएशन है मेरे, 20-30 जितने भी है,
0: हाँ
1: वो सारे का एक फेडरेशन है, वो
0: अच्छा,
1: उड़ा जुड़ा जाता है, तो इसमें सबको लिया जाता है। जैसे डायरेक्टर का IFDA,
0: हाँ
1: IFDA,
0: हाँ
1: IADA यानी इंडियन फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन,
0: अच्छा,
1: WICA कैमरेमैन का रहता है उनका, ऐसा सबका अलग अलग है।
0: तो ये
1: म्यूजिक
0: यानी कि एक प्रोफेशनल एडिटर जो बन जाता है और इंडिपेंडेंटली फिल्म को एडिट करता है ना, तो स्वतंत्र रूप से, तो वो AFE अपने नाम के आगे लिख सकता है, ऐसा आप कह सकते
1: नहीं,
0: हैं।
1: हमारे संस्था में क्या था कि हम जितने भी लोग काम करते हैं,
0: जी
1: चाहे उसमें म्यूजिक डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो,
0: हाँ
1: राइटर हो, इनके एसोसिएशन है, तो उनको जो भी आप काम करेंगे वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है आपको,
0: अच्छा,
1: बिकॉज कुछ आगे चल के मैटर आ जाए या कोई बोले कि भाई
0: जी
1: ये पिक्चर का एडिटर मैं हूँ, तो उसलिए हमारा एग्रीमेंट बनता था, तो
0: अच्छा
1: एग्रीमेंट के साथ में हम जाके उधर हम ये कर लेते थे, रजिस्ट्रेशन होता था।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: रजिस्ट्रेशन होने के बाद एसोसिएशन में सपोज करो मैं काम कर रहा हूँ,
0: जी
1: और अगर समझो वो पिक्चर का प्रोड्यूसर ने किसी दूसरे को रखा था पहले, तो अगर चल के वो क्लेम करेगा तो हमको अड़चन आ जाएगी, इसीलिए
0: जी
1: हम पहले वो रजिस्ट्रेशन कर लेते
0: तो
1: हैं।
0: आप इस एसोसिएशन से सबसे पहले कब जुड़े थे?
1: मैं 78 में,
0: 78 में ही, शुरुआत में ही।
1: हाँ
0: जी,
1: 78 में जुड़ा था, जो
0: हाँ
1: मेरा राजश्री में 1 साल पूरा हो गया था,
0: हाँ
1: जून 78 में, जो अगस्त 78 में, जून जुलाई ऐसा कुछ था। तो उस टाइम में हमको एक कार्ड मिलता था पहले कि भाई अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस में ₹25 में हमको भर के कार्ड मिलता था,
0: जी
1: जो आजकल सब कार्ड बने हैं वो हम दिखाते थे, तो हमको लैब में जाने देते थे,
0: अच्छा,
1: शूटिंग में हमको जाना है जाने देते थे, क्योंकि तो उस टाइम, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, उस टाइम में भी स्ट्रिक्ट था मगर इतना ये नहीं था, गड़बड़ जो होती है आजकल वो
0: हाँ
1: नहीं था, तो वो हम दिखाते थे हमको छोड़ देते थे। फिर उसके बाद हमारा कार्ड बना मेरा असिस्टेंट का 78 में,
0: जी
1: उसके बाद मुझे मनोकामना पिक्चर मिली थी, तो हमको कार्ड मिला था, तो हमारा उस टाइम में फीस कुछ हमसे ₹251 लिए थे
0: अच्छा
1: एसोसिएशन ने,
0: जी
1: जो कि
0: जी
1: उनको लेते हैं सब एसोसिएशन में मेंबर बने लेना आते हैं, तो उसके बाद वो कार्ड देते, तो कार्ड में लिखा रहता है कि IFDA, जो आप बोले ना
0: हाँ, AFE लिखा होता है।
1: AFE लिखा रहता है, तो वो
0: हाँ
1: कार्ड ऐसा रहता है कि वो हमको कार्ड मिल जाता है
0: जी,
1: लिखे, तो ये कार्ड में हमको, हम किधर भी जा सकते हैं ये, और
0: अच्छा
1: एनी स्टेट में ये अप्रूवल है गवर्नमेंट से,
0: हाँ
1: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एसोसिएशन फेडरेशन अप्रूवल है।
0: हाँ
1: जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमको जाना पड़ता है मद्रास, एडिटिंग के लिए मैं मद्रास जाता था, कलकत्ता जाता था, भुवनेश्वर जाता था, जितने भी लैब है उधर जाता था, तो उधर हमको ये कार्ड कैरी करना पड़ता था,
0: अच्छा,
1: तो ताकि वो बोलते थे कि हम इधर के मेंबर है और ये हम ऐसा है, तो AFE का मतलब ये है, मतलब एसोसिएशन ऑफ फिल्म एडिटर।
0: चलिए यहाँ इस बात पे एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
1: मैं तो सर जिंदगी में नोक झोंक,
0: जी
1: प्यार के साथ में नोक झोंक जो होना जरूरी है,
0: हाँ
1: आज हम बीबी के पास चले जाते हैं, हमारी बीबी रूठी रहती है, कभी हम देर से जाते हैं, हमारी
0: अच्छा,
1: लाइन ऐसी है, कभी कभी हम 2-3 दिन घर नहीं जाते थे तो रूठी रहती थी, तो उसके ऊपर एक गाना है शम्मी कपूर का, जवां मोहब्बत पिक्चर का,
0: हाँ,
1: रूठो रूठो ना मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान।
0: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है। आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

जो अच्छा हुआ उलझन दिलों की रंग ले आई। खुशी आंखों में चमकी है, हंसी होठों

0: दिलीप जी, एडिटिंग की बात हम कर रहे हैं। एक जमाना था जब फिल्में रील पर बनती थी, निगेटिव रील हुआ करता था
1: जी, जी।
0: और वो फुटेज आपके पास आता था, आप उसको एडिट करते थे। अब जमाना बदल गया है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। शूटिंग जो कैमरे भी जो है वो डिजिटल कैमरे हैं
1: जी सर।
0: तो शूटिंग जो है उसमें डेटा के रूप में वो शूटिंग कैद हो जाती है और बाद में उसकी एडिटिंग भी उसी तरह से होती है कंप्यूटर पे। ये जो फासला है रील से डिजिटल कैमरे तक का, आपको भी ये सीखना पड़ा होगा?
1: नहीं सर, हमारे पास क्या है कि मेरा क्या हुआ कि मेरे जो प्रोड्यूसर जितने भी है,
0: हाँ,
1: प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने भी हम पर डिपेंड रहते, डिपेंड मतलब वो बोलते थे कि भाई तुझे ये हमने लाके दे दिए,
0: हाँ।

0: काम करते हैं हमको मालूम नहीं,
1: अच्छा।
0: तेरे क्या पैसे लेने ले ले, एक कर ले।
1: अच्छा।
0: तो हम लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर लेते थे।
1: अच्छा।
0: अभी क्या हुआ, अभी भी सेम सिस्टम है, खाली अपना कैमरा चेंज हो गया, ये हो गया। तो उसमें क्या है कि अभी कैमरे में चिप्स आ गए।
1: हाँ,
0: कैमरे में चिप्स आ गए। जो अभी मैंने भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है
1: जी,
0: वो मैंने बनाई है माता जी के नाम से, मूसा माता के नाम से
1: जी।
0: तो मैंने भी क्या किया, एक कैमरा लिया,
1: अच्छा,
0: उसके अंदर चिप्स आते हैं, फिर वो अपना कंप्यूटर में लेके वो पूरा जो हमने शूट किया है
1: जी,
0: हमको हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करके दे दिए उन्होंने, शूट किए उसमें।
1: अच्छा।
0: तो पूरा कन्वर्ट करके देने के बाद वो जो कन्वर्ट किया हुआ है हमारा मटेरियल,
1: हाँ,
0: वो हम फिल्म मशीन आते हैं FCP बोलते हैं,
1: अच्छा,
0: उसमें जाके उसको लोड कर लेते हैं।
1: अच्छा।
0: कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें और फिर बाद में उसका एडिटिंग होता है अभी।
1: अच्छा।
0: पहले क्या होता था कि फिल्म पर जब एडिटिंग होती थी,
1: हाँ,
0: तो कैमरे में फूजी कलर, ईस्टमन कलर, ओलो कलर रील आते थे 400-400 फीट के।
1: हाँ।
0: तो वो रील क्या होता था कि शूट होने के बाद उसको हम डेवलप करने के लिए प्रोड्यूसर लैब में भेज देता था। जैसे एक फोटो निकालने के बाद हमारे पास पॉजिटिव आता है, नेगेटिव,
1: हाँ,
0: नेगेटिव चला जाता है लैब में डेवलपिंग के लिए। डेवलप होने के बाद हम उसको जोड़ देते थे।
1: अच्छा।
0: जोड़ के रील बनता था उसका, वो रील हम लैब में देते थे, उसका पॉजिटिव बन के आता था।
1: अच्छा।
0: नेगेटिव उधर ही रहता था।
1: हाँ।
0: पॉजिटिव हमारे पास आने के बाद में हम उसको, उसका एक क्लैप रहता था, 1/2 take 1 ऐसा करके आता था आवाज।
1: जी जी।
0: तो वो आवाज आता था, वो आवाज के साथ में वो जो पिक्चर में आवाज है,
1: हाँ,
0: वो मैच करते थे। तो हमारा पूरा साउंड सिंक में जाता था वो पूरे शॉट।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
0: फिर वो क्या सब असेंबल होने के बाद है ना,
1: हाँ,
0: तो वो हमको आगे पीछे का सब काट के जो ओरिजिनल बेस है, जो हमारा डायलॉग है,
1: हाँ,
0: जो सीन की रिक्वायरमेंट है, उतना ही हम पोर्शन रख के बाकी निकाल लेते थे।
1: अच्छा।
0: और उसका फिर रील बनता था। रील बनने के बाद उसमें सब प्रोसेस होता था, बैकग्राउंड म्यूजिक है, इफेक्ट है,
1: हाँ,
0: सब होता था। फिर वो जैसा रील बनी है उसके हिसाब से नेगेटिव कटिंग होता था उधर
1: जी।
0: तो वो होता था। अभी सब कंप्यूटर पे हो गया सर।
1: आपने एक फिल्म दीवाना मुझसा नहीं, इसके साउंड एडिटर का भी काम किया है, तो ये साउंड एडिटिंग क्या अलग होती है फिल्मों के एडिटिंग में?
0: पहले क्या होता था सर कि एडिटर बॉस, उसके दो असिस्टेंट रहते थे
1: जी,
0: तो पॉजिटिव हम काट लेते थे। पॉजिटिव मतलब जो हमना एडिटिंग हो गया
1: जी,
0: उसके बाद में उस वो पिक्चर का, वो पूरा पिक्चर कंप्लीट हो गया, डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, प्रोड्यूसर ने ओके बोल दिया, सब हो गया। तो वो पिक्चर में जितने भी कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टर आके डबिंग करते थे उसका।
1: अच्छा।
0: डबिंग करते थे तो उसका ट्रैक आता था, जिसको डब ट्रैक बोलते थे हम, वो आता था। फिर उसमें कुछ इफेक्ट रहते थे।
1: अच्छा।
0: ये डबिंग वाला तो पोर्शन हो गया, कैरेक्टर आपका जो आर्टिस्ट है वो डब करते थे, सब आर्टिस्ट उसमें 20 हो 25 हो, कोई
1: अच्छा,
0: भी हो,
1: अच्छा।
0: हीरो हीरोइन, लॉ, अपना विलन, हीरोइन की माँ, सब डबिंग करते थे। उसके बाद उसका एक ट्रैक बनता था डायलॉग का।
1: अच्छा।
0: फिर दूसरा ये इफेक्ट जैसा होता है ना कि ये चाय का कप रख रहे और हीरो चलते हुए आ रहा है, टक टक टक टक, ये असेंबल करते थे, असेंबल रिकॉर्ड किया जाता था फिर से उसको।
1: अच्छा।
0: डबिंग की तरह और वो सब डालते थे, जैसा गाड़ी का साउंड है वो हमारे पास रिकॉर्डिंग ला के देता था, हम काट के उसको डाल देते थे। तो उसका एक ट्रैक बनता था
1: जी जी
0: अलग सा, उसमें 2-3 ट्रैक बनने का था। ये एक ट्रैक में है ब्लो, एक में है किक, एक में है बॉडी फॉल,
1: अच्छा,
0: ये सब असेंबल होता था। और जो म्यूजिक वाले रहते थे, जैसा बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, रिकॉर्ड करते थे बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन का
1: जी,
0: उसके अंदर रिएक्शन का अलग वो म्यूजिक लेते थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक।
1: अच्छा।
0: जैसा ढम एक आवाज आता था बैंक का, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसमें ढम आवाज आता था पूरा, तो अलग देते थे, उसका बनता था। तो ये सब ट्रैक बनते थे, वो एडिटर लोग जो रहते ना उनके असिस्टेंट काम करते थे
1: जी।
0: कोई कोई एडिटर को डबिंग देते थे, वो परफेक्ट मैच करता था जैसा इसमें किया है अपना, उसको डबिंग एडिटर बोलते थे। बहुत लोगों ने नाम दिए, कोई देते नहीं थे।
1: जी।
0: जैसा मनोज कुमार के पिक्चर में नाम आता था उमा शंकर नायक,
1: हाँ जी,
0: मतलब स्पेशली वो डबिंग के लिए था
1: जी।
0: बहुत सारे लोग आए भी, एक बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए अलग आदमी था। तो ये लोग क्या बराबर काम करते थे वो, और परफेक्ट सिंक, मतलब जो आर्टिस्ट ने बोला है वॉइस टू वॉइस लिप सिंक
1: जी,
0: ये रहता है ना, मैच करके पूरा उसका ट्रैक बनता था पूरा। और म्यूजिक का भी ऐसा होता था, साउंड का, वो सब बोलते थे उसको। फॉरेन के अंदर
1: जी,
0: फॉरेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी ये चीज़ के।
1: हाँ हाँ
0: तो डबिंग एडिटर अलग, बहुत सारे पिक्चर में आप नाम देखते थे पुराने में, डबिंग एडिटर, इफेक्ट एडिटर, बैकग्राउंड म्यूजिक का एडिटर। इधर क्या होता था कि हमारा जो प्रोड्यूसर के हिसाब से हम काम करते थे
1: जी,
0: तो उसमें हमारा नाम नहीं आता था पहले, मगर ये दीवाना मुझसा नहीं में क्या किए थे कि सारा काम बॉम्बे में साउंड का हुआ था।
1: अच्छा।
0: शूटिंग उधर होती थी, एडिटिंग भी उधर होती थी, कुछ पैच शूटिंग इधर किए थे
1: जी।
0: उसमें मिस्टर परवेश मिर्जा बोल के एक डायलॉग

0: डायरेक्टर थे उसके,
1: हाँ,
0: उन्होंने हमारे पास आए और बोले कि भाई इसका सारा काम करना है। तो लास्ट में ये हुआ है कि हमने भी काम किया है, एडिटर ने भी काम किया है,
1: हाँ,
0: तो उन्होंने बोले क्या करे, तुम्हारा नाम देना है, ये तो आपने पैसे हमने आपको दिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करो, साउंड एडिटर बोल के नाम दे दो।
1: अच्छा।
0: जो कि फॉरेन पिक्चर में आता है, जैसे आप शान पिक्चर देखोगे तो उसमें जो साउंड एडिटिंग का काम किया है, डेविड नाम है, डेविड पॉल,
1: अच्छा,
0: स्पेशली नाम आता था उसका साउंड एडिटिंग। तो वो हम देखे थे तो हमने बोले यार हमारा भी नाम दे दो। और पर्दे पर हमारा नाम आया है तो नाम तो देखो, मेरा नाम आया है तो मेरे फैमिली खुश हो जाएंगे,
1: जी, जी।
0: नाम से कुछ नहीं, मगर क्या है कि लोग भी जानते थे,
1: हाँ,
0: कि भाई जैसा अभी कोई आया हमारे दोस्त लोग बोलते थे यार तेरी पिक्चर लगी है उधर, तेरा नाम देख लिया हमने। मुझे सबसे ज्यादा फेमस मैं हो गया मैंने प्यार किया से।
1: अच्छा।
0: तो उसमें मेरा चीफ असिस्टेंट एडिटर नाम दिए थे।
1: जी जी।
0: तो हमारा औरंगाबाद में पिक्चर लगी थी अजंता थिएटर में, और हमारा जो कॉलेज थे मैं जहाँ पर पढ़ता था,
1: अच्छा,
0: उसके कुछ लोग उधर पढ़ते थे,
1: हाँ,
0: और लातूर में रमा में पिक्चर लगी थी। तो उधर क्या हुआ था कि फिल्म लाइन में हम दो ही आदमी थे, मेरा भाई था 62 में आया था, मैं 77 में, उसके बाद बहुत आ गए उधर मराठवाड़ा से।
1: हाँ,
0: तो जितने भी मेरे प्रोफेसर वगैरह सब थे, कॉलेज के फ्रेंड थे,
1: जी,
0: वो पिक्चर देख रहे थे,
1: हाँ,
0: उन्होंने मेरा नाम देखे, थिएटर वाला खुद गया भागते हुए मेरे मम्मी के पास में और बोला मम्मी को कि भाई आज मतलब मेरे जो प्रोफेसर थे, जो दोस्त लोग थे, उन्होंने बोला कि भाई हमको खुशी हो गई कि एक छोटे से कस्बे का लड़का, मतलब ज़्यादा एजुकेटर पढ़ा नहीं है,
1: हाँ जी,
0: मतलब उधर का एजुकेशन अलग है, बॉम्बे का अलग है, तो इतना बड़ा पिक्चर में काम किया, वो भी 100-100 फीट के उधर ये रहते थे, स्क्रीन रहते थे,
1: हाँ,
0: 200-300-400 फीट के बड़े बड़े बड़े बड़े थिएटर रहते थे, उन्होंने नाम पढ़ लिए, भागते हुए गए।
1: हाँ,
0: फिर उसके बाद जो भी पिक्चर में काम करता था वो घर में जाके बोलते थे अरे अपने दिलीप का नाम है, चलो पिक्चर, हमको फ्री में पिक्चर रहती थी उसमें।
1: जी। तो ये आपके गांव के लोग, आपके घर के लोग, आपके साथ पढ़ने वाले लोग, इनके लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे?
0: सर गाने तो अपना भंडार है, हिंदुस्तान में म्यूजिक का भंडार है, अभी एक एक चुने तो बहुत ये हो जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: मगर उसका एक गाना ही मैं फिर से सुनाना चाहूंगा, मैंने प्यार किया का, जो कि बिरहा गीत है, कहे तो से सजना वो तोरी उमरिया, ऐसा गाना है,
1: हाँ जी,
0: वो उन्होंने शारदा सिन्हा ने गाया था, वो इसकी लोक गायिका है बिहार की,
1: जी,
0: बहुत बढ़िया गाना था उसके पीछे,
1: आइए सुनते हैं।

0: जैसे जैसे दिलीप जी आपका करियर आगे बढ़ा और नई फिल्में भी आप करने लगे, आपने मराठी में फिल्में की हैं, रीजनल फिल्मों की एडिटिंग और हिंदी फिल्मों की एडिटिंग, इसमें कुछ फर्क महसूस करते हैं आप?
1: मैंने तो सर एक पिक्चर किया था, बकला नाम था उसका, छत्तीसगढ़ी।
0: अच्छा,
1: छत्तीसगढ़ी पिक्चर किया था। अच्छा, रीजनल पिक्चर में इसमें क्या रहता है, बहुत सारा फर्क रहता है। फर्क क्या रहता है?
0: हाँ,
1: कि ये हिंदी पिक्चर जो है उसका बिग कैनवस है
0: जी,
1: इंटरनेशनल लेवल पर है।
0: जी जी,
1: मतलब आज जो हम इधर देखते हैं फॉरेन में भी हमारे लोग देखते हैं
0: जी,
1: मगर जो रीजनल पिक्चर रहते हैं ना पर्टिकुलर वो स्टेट का रहता है। जैसा भोजपुरी है अपना, ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बिहार, जैसा बंगाली पिक्चर है बंगाल, और क्या बोलते हैं अपना छत्तीसगढ़ी। मगर रीजनल पिक्चर में टॉप के दो तीन टेरिटरी है जो कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, वो हिंदी के लेवल के पिक्चर बनाते हैं, उनका बजटिंग हिंदी के बराबर रहता है। मगर ये पार्ट, ये दो टेरिटरी छोड़कर, मतलब तमिल पिक्चर और तेलुगु पिक्चर छोड़कर,
0: हाँ जी,
1: बाकी सबका क्या है, लिमिट रहता है। क्यों? तो उनका एग्जीबिशन ज़्यादा नहीं रहता है ना।
0: हाँ जी,
1: जो कि हिंदी पिक्चर में क्या रहता है कि 10 टेरिटरी है, पूरा बिक जाता है, इंटरनेशनल लेवल मार्केट भी है उनका। मगर जो अपनी रीजनल पिक्चर रहती है वो लिमिटेड उसी स्टेट के लिए रहता है।
0: हाँ,
1: अभी भोजपुरी है, अभी भोजपुरी तो सब जगह पर जाता है, पंजाबी में जाता है, सब जगह पर जाता था, मगर

0: ज़्यादातर ज़्यादातर वो एक उनका स्टेट के उस पर रहता है, मतलब एक क्षत्रिय भाषा रहती है
1: अच्छा
0: और उनका पर्टिकुलर वो स्टेट में ही ज़्यादा चलता है। तो उनका क्या रहता है कि एक लिमिटेशन रहता है कि भाई हमको ऐसा करना है, इतने में करना है, ऐसा करना है।
1: अच्छा
0: तो उनका क्या रहता है कि फ़र्क ये रहता है कि उनको हमको फास्ट काम करके देना पड़ता है, फास्ट काम के चलो भाई हमको 20 दिन में वो जैसा पिक्चर कर लेते तो वो डबिंग का डेट लेके आ जाते हैं, कभी कभी
1: अच्छा
0: मिक्सिंग का डेट, रिलीज डेट फिक्स रहता है उनका,
1: ओके
0: तो हमको चेस करना पड़ता है, तो उनका काम हमको बहुत जल्दी फास्ट करना पड़ता है।
1: अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि बहुत से एडिटर, पहले एडिटर जो थे बाद में निर्देशक बन गए, बहुत से सिनेमाटोग्राफर बाद में निर्देशक भी बने हैं। आपका भविष्य में ऐसा कोई विचार है फिल्म निर्देशन
0: अभी
1: का?
0: क्या है कि सर वो क्या रहता है कि अपनी लाइन जो है या
1: जी
0: सभी का ही है, जो विधाता ने लिखा है, जो आपका लक है,
1: जी
0: उतना ही आदमी, हम मेहनत तो सब कर लेते हैं,
1: हाँ जी
0: मेहनत तो बहुत लोग कर लेते हैं। अभी बहुत लोगों को क्या हुआ कि उस टाइम में पर्टिकुलर प्रोडक्शन मिल गया, प्रोड्यूसर मिल गए,
1: जी
0: जैसा हमारे मिस्टर राजकुमार हिरानी है, उनको बिग प्रोडक्शन मिल गया, उनके कॉन्सेप्ट रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते तो
1: जी
0: निशिकांत मुखर्जी तो पूरा आर्ट में थे, इससे काम करते थे, उनके साथ में थे वो, तो उतना अपना चला उनका। ऋषिकेश मुखर्जी तो आर्ट फिल्म से तरफ ज़रा झुकाव था उनका
1: जी
0: और बनाते थे अच्छे पिक्चरें, जैसे डेविड धवन है, कमर्शियल में सक्सेस हो गए,
1: जी
0: यन चंद्रा तो एक दो पिक्चर के बाद ही टॉप में पहुंच गए, तो नसीब होता है। अभी क्या पड़ाव ऐसा हुआ है कि अभी एक तो उम्र हो गई है, तब भी हमने कोशिश किया है
1: जी
0: कि जो हमारे राजस्थान में मेरी कुलदेवी है, जो दरक परिवार,
1: अच्छा
0: दरक परिवार ही नहीं, जो हम महेश्वरी मारवाड़ी है, मतलब महाराष्ट्र से है, मराठी हमको आती है, घर में लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो हमने हमारी कुलदेवी है ये मूसा माता,
1: जी
0: तो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने बोले थे, हमारा दादा दादी, कुलदेवी ढूंढो, तो हम राजस्थान बहुत बार गए मगर उसमें हमको किधर नहीं मिली वो।
1: अच्छा
0: तो हम एक दिन हमारे जो दरक है कोई, उन्होंने बोले हमारे कि उधर मंदिर बन रहा था, हम उधर चले गए, तो उधर मंदिर बन रहा था 2018 में
1: अच्छा
0: मूसा माता का, तो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हम पिछले साल 2021 में मंदिर बन गया,
1: जी जी
0: तो मैं उधर गया था 2022 में अप्रैल में, मंदिर के दर्शन किया, मैं माता जी का सहपरिवार गया था, तो उसमें मुझे ऐसी कल्पना आई कि माता जी के लिए एक भक्ति गीत बनाते हैं,
1: अच्छा
0: तो वहाँ से कल्पना आई। मगर वो अभी क्या था कि सब चीज़ें असेंबल करना
1: हाँ
0: पॉसिबिलिटी नहीं थी,
1: जी
0: हम म्यूजिक डायरेक्टर को अप्रोच किए कि भाई ऐसा ऐसा है, तो अभी क्या था कि माता जी मतलब अभी भी बना था, जैसा दूसरे की हिस्ट्री है वैसा कोई माता जी का हिस्ट्री नहीं था, तो हमने क्या किया, सारा थोड़ा बहुत का माहिती लेकर, मतलब जो भी है अपना सब उनका सब हमने इकट्ठा किया,
1: जी
0: उनके बारे में
1: जानकारी इकट्ठी
0: जानकारी
1: कर
0: ली,
1: जी
0: और वो उस पर हमने एक गीत बनाया,
1: अच्छा
0: गीत बना के मैंने उसको फिल्म फॉर्मेट पर शूट किया, रेड एम एक्स पर शूट किया,
1: जी
0: और जो कि अभी मैं नवरात्रि में रिलीज़ किया है, और वो शॉर्ट फिल्म है,
1: अच्छा
0: तो वो हमने किया है। और अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा ही सिलसिला चलता रहे, ये इसमें मैंने प्रोड्यूस खुद किया है, डायरेक्ट खुद किया है,
1: अच्छा
0: उसमें बहुत लोगों का सहभाग है, डांस मास्टर का, कैमरामैन ने अच्छा काम किया, तो वो गीत हमने बना के रिलीज़ कर दिया है जो चल रहा है, कि हम चाहते हैं कि भाई दूरदर्शन पर भी आ जाए, तो
1: जी
0: हम उसको कोशिश में लगे कि उसका ज़रा अच्छे लेवल में, अच्छे कैनवास में
1: जी
0: उसको ये करके ब्रॉडकास्ट करें, बनाए हैं और ये करते रहेंगे।
1: जी
0: अभी क्या है कि हालात ऐसा हो गया है फिल्म लाइन का,
1: हाँ जी
0: तो आजकल मतलब जो कॉमन मैन है,
1: हाँ
0: ये कॉमन डायरेक्टर है, पिक्चर नहीं बना सकता,
1: जी जी जी
0: मतलब इतना कमर्शलाइज हो गया है कि एक तो बजटिंग बहुत हो गया है। पहले क्या होता था कि मराठी पिक्चर में भी हम पिक्चर बना सकते थे, 30-40 लाख रुपए है तो पिक्चर बना सकते थे,
1: अच्छा
0: अभी मराठी में भी करोड़ों रुपए लग रहे, क्यों, तो लोगों का सोच अलग हो गया,
1: जी
0: कैनवास अलग हो गया, लोग सोचते, थिंकिंग बड़ी हो गई,
1: हाँ
0: उसके अंदर भी जो जैसा मैंने बोला ना दे के पर आंचलिक उपन्यास था,
1: जी
0: एक पिक्चर आई थी सौराठ, तो पिक्चर में 100 करोड़ का धंधा किया है वो पिक्चर, ये शोलापुर के पास में यरमाड़ा के करमाड़ा कोई गांव है
1: हाँ
0: उसमें शूट किया है, वो पिक्चर में एक कहानी इतनी सिमिट की है उसने कि
1: हाँ
0: एक ही जगह पर शूट किया है। अभी मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ,
1: जी
0: गांव में तो जा नहीं सकता मैं, मगर वो पिक्चर देखने का मुझे लगा कि मैं गांव में आके बैठ के देख लिया, तो क्या रहता है कि अभी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गए।

0: अच्छा
1: कि तो ट्रेड पूरा डिफरेंट चेंज हो गया पूरा। पहले क्या होता था कि ए बी सी पिक्चर बनती थी, ए में अमिताभ बच्चन जितेंद्र बहुत थे, बी में फिर उसके नीचे वाले थे, सी में मतलब छोटे मोटे थे, पिक्चरें बनती थी, पिक्चर बिक जाती थी, हर पिक्चर छोटे भी पिक्चर बिक जाती थी। मगर अभी क्या हुआ, पिक्चर का मार्केटिंग खत्म हो गया, अभी कॉरपोरेट के हाथ में है सब, बड़ी बड़ी कंपनियां ने ये कर लिया है, तो ये दौरान तो मैं बना ही नहीं सकता ना सोच सकता। सबसे पहले डेविड धवन वगैरह भी क्या थे, इनका आर्टिस्ट अप्रोच बहुत था।
0: अच्छा जी,
1: जैसा संजय दत्त है, गोविंदा ने इनको सपोर्ट किया, गोविंदा ने बहुत हेल्प किया, प्रोड्यूसर पहला नीलानी ने किया
0: जी।
1: और वो टाइम का माहौल अच्छा था, थिएटर बॉम्बे के अंदर 200-300 थिएटर थे,
0: अच्छा
1: पिक्चर चलती थी, अभी थिएटर खत्म हो गए पूरे।
0: हाँ हाँ,
1: तो अभी तो क्या इम्पॉसिबल लग रहा है, माहौल ऐसा है।
0: अब कार्यक्रम में हम आपकी तरफ से एक और गीत सुनना चाहेंगे, कौन सा गीत सुनवाएंगे आप श्रोताओं को?
1: मेरा एक गीत था, मतलब आदमी हमेशा आपके वाइफ को तो चाहता ही है खुद के, मतलब अर्धांगिनी है जो, मगर उसके पहले आदमी जो कॉलेज डे रहता है उसमें मैं एक जगह पर बैठा था टेरेस के ऊपर, और हमारे उस टाइम में तो फॉरवर्ड नहीं था कॉलेज के टाइम में, उधर तो हम किसी को देखे तो 4-5 आदमी आते आते थे, बोले क्यों देखा उसको। तो मैं एक जगह पर खड़ा था और एक बहुत खूबसूरत लड़की सामने बैठी थी, और उसके बाल जो है ना बार बार वो आ रहे थे चेहरे पर।
0: अच्छा,
1: तो कॉलेज में मैं गाने भी गाता था, कॉलेज में मुझे सर्टिफिकेट मिला, तो मैंने ऐसा ही गाना गाया, चेहरे पे गिरी जुल्फे कहे दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, बोल के मैं भागते हुए नीचे आ गया। मुझे लगा कि भाई उसके कोई आ जाएंगे और पकड़ के मुझे पीटेंगे।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो वो हुआ ही ऐसा, मैं बैठा हुआ था कि वो लड़की आ गई और साथ में दो लड़कियां थे और एक लड़का था, तो मैं देखा उसको, मैं बोला मेरे से गलती हो गया क्या कुछ, नहीं बोले वो गाना तुमने अधूरा गाया, पूरा गाना सुना।
0: क्या बात है, तो वही गीत सूरज फिल्म का गीत हम श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: दिलीप दरक जी, आज फिल्म एडिटिंग के बारे में, फिल्म के संपादन के बारे में आपसे बहुत विस्तार से बातचीत हुई और अपने अनुभव आपने हमसे साझा किए, हमारे श्रोताओं को बताए। आपके यहाँ आने के लिए विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे श्रोताओं की ओर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: आपका
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने हमको इतना नवाजा, मतलब ढूंढ के निकाला और बहुत मैं आज खुश नसीब हूँ कि इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा स्वागत मेरा आज तक किसी ने नहीं किया है। जो हम बचपन से सुनते थे विविध भारती, जैसा रेडियो ऑन होता तो भागते हुए जाते थे, चलो ये गाना आने वाला है, उसमें पहले बोला जाता था कि अभी एक गीत सुनिए, एक गीत के बोलिए, इसको म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन है, लिरिक्स ये है, ये गाना है।
0: अच्छा,
1: तो हम सुनते थे पूरा। वो स्टूडियो में बैठो कि मैं कभी रेडियो पर सुना करता था नाम विविध भारती सा, आज मैं ये स्टूडियो में आया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मन पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि आपका ये कारवा जो चल रहा है, हम पैदा होने से पहले विविध भारती है, अभी मरने के बाद भी रहेगा विविध भारती, हम तो आते जाते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया, हमको आनंद हो गया और बहुत खुशी हो गई कि आपने हमारा इतना बहुत बढ़िया स्वागत किया। मैं तहे दिल से, मतलब मेरे अंतर आत्मा से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका आभार मानता हूँ।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम में 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए और 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है।

0: आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स ने 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। वहीं डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना फ्रांस से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। लक्ष्य सेन चोट के कारण आज मैच नहीं खेल पाएंगे और उनकी अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट पर उतरेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कार्यक्रम व्यूरर में हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से थोड़ी ही देर बाद 5:10 पर वंदन कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति संगीत। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे टूना मछली का बचाव क्यों जरूरी है, इस विषय पर विशेष जानकारी। साथ ही आपको हम कैरियर से संबंधित जानकारी देंगे कि आप किस तरह कृषि विशेषज्ञ बन सकते हैं।

श्रोताओं, शाम 6 बजे का समय होगा किसानवाड़ी का। किसानवाड़ी कार्यक्रम में आज की बातें के अंतर्गत आप सुनेंगे हरी खाद कैसे बनाएं, इस विषय पर भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा और भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। साथ ही हरी खाद के लिए ढेंचा की आप खेती कर सकते हैं, नई उम्र की नई फसल में ये जानकारी भी दी जाएगी और नसीहत के अंतर्गत आप जानकारी लेंगे गर्मी और लू से कैसे करें बचाव। सांझ गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी फिल्म संगीत शाम 6:30 पर। शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास हम लेकर आएंगे शाम 7:15 पर और शाम 7:25 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल के लिए। ई मनपसंद, जी हाँ श्रोताओं, ये ईमेल पर आधारित कार्यक्रम हम आज लेकर आएंगे 7:50 से रात 8:45 तक और 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या। लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे रात 9 बजे और महफिल कार्यक्रम में चंद गजल सुनेंगे आप 9:15 पर। आकाशवाणी विविध भारती से छाया गीत हम रिले करेंगे 9:30 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग और 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत।

अगले दिन का कार्यक्रम विवरण हम लेकर आएंगे 10:55 पर, रात 11 बजे दिल्ली से हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम सुनवाएंगे, और हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी रात 11:10 पर।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। वंदन कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे कुछ भक्ति रचनाएं। तो लीजिए सुनिए सबसे पहले शंकर महादेवन के स्वर में एक पारंपरिक भजन। संगीतकार शैलेश दानी हैं और एल्बम है दीप पूजनम।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आप सुन रहे थे जुनिता गांधी के स्वर में गणेश आए धीम ही इस एल्बम से, ये भक्ति रचना। अजय अतुल ने इसे लिखा था और संगीत था शैलेश दानी का। और अब लीजिए भक्ति संगीत कार्यक्रम में सुनिए विपिन मोंगा की आवाज़ में इन्हीं का लिखा हुआ सर को झुका कर देखो इस एल्बम से, ये भक्ति रचना। संगीतकार हैं जीतू गाबा।

विपिन मोंगा के गाए हुए इसी भजन के साथ ही हमारा आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथियों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, लेकिन युवा उस रास्ते पर जिस पर भी वो चलते हैं वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो युवाणी कार्यक्रम में हम आपसे कहेंगे कि आप भी अपना रास्ता खुद बनाइए और आपके जो भी सपने हैं उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करिए। चलिए कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं आज के इस चर्चा से कि टूना मछली का बचाव क्यों ज़रूरी है। श्रोताओं, मछली तो आप जानते ही होंगे, मछली की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं और आज हम लोग बात करेंगे टूना मछली की। टूना मछली वही होती है जो कि समुद्र में रहती है और समुद्री मछली है, और इसका बचाव इसलिए भी सबसे ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये मछली जो होती है वो छोटी मछलियों को खाती है, अपना शिकार छोटी मछलियों को बनाती है। तो जिसके चलते समुद्र में मछलियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाती, तो इसलिए भी इसका बचाव बहुत ज़रूरी है। और भी अगर हम बात करें टूना मछली के बारे में, तो टूना मछली समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारिस्थितिक संतुलन वही है कि खाद्य श्रृंखला को नियंत्रित करती है, और अगर टूना मछलियों की संख्या कम हो जाएगी तो फिर छोटी मछलियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जिससे पारिस्थितिक तंत्र जो है वो समुद्र का वो अस्थिर हो सकता है। टूना जो होती है वो पोषक तत्वों के चक्रण में भी मदद करती है और ऑक्सीजन के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बड़ी मात्रा में कार्बन को समुद्र की गहराई में ले जाकर ब्लू कार्बन सिंक का काम करती हैं। अभी आजीविका का स्रोत हो गई हैं, दुनिया भर में लाखों लोग टूना मछली को पकड़ने और इसके व्यापार पर भी निर्भर हैं, तो इसलिए भी इनका बचाव, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, पारिस्थितिकी तंत्र, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वयस्क जो सार्क होते हैं और या व्हेल मछलियाँ होती हैं, किलर व्हेल होते हैं, तो वो भी टूना मछली को अपना आहार बना लेते हैं। तो जहाँ आप टूना मछली को पालते हैं जिस जगह पे, तो फिर वहाँ पे बड़ी मछलियाँ जो सार्क वगैरह हैं, इनको कोशिश कीजिए कि ये मछलियाँ वहाँ ना हो।

और अगर हम समुद्र और महासागर की जब भी बात करते हैं और उनको सही रखना है स्वास्थ्य के लिए, तो महासागर और समुद्र इन सबका सही रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र पर हमको ध्यान देना होगा, और पारिस्थितिक तंत्र को सही रखने के लिए टूना मछली का बचाव बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे, इस कार्यक्रम के और भी कुछ टॉपिक्स हमारे पास हैं जिन पर हम आपसे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल आइए सुनते हैं ये गीत।

निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: विज्ञापन के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। और श्रोताओं, युवाणी कार्यक्रम में अब जो टॉपिक है जिस पर हम आपसे बातें करेंगे वो है हंसी का टॉपिक, बिल्कुल निःशुल्क, जिसका कोई कॉस्ट हमें नहीं देना पड़ता, कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। और हंसी जो है वो मुफ्त और प्राकृतिक उपचार है जो हमारे जीवन को बढ़ाता है। जी हाँ, हमारा जो आयु है, अगर हम ज़्यादा हंसते हैं तो फिर हमारी आयु खुद ब खुद बढ़ जाती है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये ऐसा इलाज है जिसका हमें कोई खर्चा ही नहीं, कोई कॉस्ट ही नहीं देना पड़ता। तो हमें हंसने पर जोर देना चाहिए, और वैसे तो बेवजह नहीं हंसना चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हर एक घंटे दो घंटे में थोड़ा सा हम मुस्कुरा लें, किसी के साथ ठहाके लगा लें, बातें कर लें, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे जो भी हमारा तनाव स्ट्रेस होता है वो खुद ब खुद दूर हो जाता है। और हंसी केवल खुशी का ही इजहार नहीं करता, बल्कि जब हम हंसते हैं तो हमारे पूरे बदन में एक सनसनाहट होती है और हमारा जो जटिल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संरचना है उसमें भी तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो कि हमारे शरीर और मन दोनों के लिए अमृत का काम करती हैं। तो आज से ही आप सब युवा साथियों से, जो कि ज़्यादा अभी तनाव लेते हैं क्योंकि उनको कैरियर बनाना होता है, तो आपसे हम कहना चाहेंगे कैरियर तो बनेगा ही अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, रोज़ 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से आपको मुस्कुराने के और हंसने के पल भी निकालने होंगे अगर आपको लंबा चलना है तब। तो चलिए थोड़ी सी और बातें करते हैं कि हंसी से और क्या क्या फ़ायदे हैं हमें। तो सबसे पहले तो हमारे तनाव में, स्ट्रेस में कमी आती है, मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। हमारा जो हृदय है, हार्ट, वो भी जब हम हंसते हैं तो रक्त वाहिकाओं के कारण उसमें सुधार होता है, रक्त परिसरण संचरण जो हमारा है वो बढ़ जाता है, तो इससे हृदय रोग या स्ट्रोक के जो जोखिम होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर हम हंसते हैं, खुलकर हंसते हैं, तो फिर शरीर में इम्यूनोग्लोबिन ए और प्राकृतिक किलर सेल की सक्रियता बढ़ जाती है, यानी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, जो बीमारियों से लड़ने में हमें मदद करती है। एंडोर्फिन, जो कि हमारे शरीर से रिलीज होता है और हमारे शरीर में दर्द को बढ़ाता है, तो जब हम हंसते हैं तो फिर दर्द की संवेदनशीलता भी हंसी के द्वारा कम हो जाती है। और कैंसर रोगी जिनमें ये एंडोर्फिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, अगर हम कैंसर रोगियों को भी मुस्कुराने दें या ऐसे क्षण उत्पन्न कर दें कि वो हंसने पर मजबूर हो जाएं, तो फिर उनके लिए भी ये बहुत बड़ा इलाज का काम करता है। क्या? तो हंसी। जी हाँ, और हंसने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास करीब जो भी लोग बैठे हुए हैं उनके साथ हम मिलजुल कर हंसें, और हंसते हैं तो फिर रिश्तों में मजबूती भी आ जाती है, सकारात्मकता बढ़ती है, और अगल बगल कोई गुस्सा भी होता है तो वो भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, तो हम खुद भी खुश हो जाते हैं और दूसरों को भी खुश कर देते हैं।

और अभी तो वैज्ञानिकों द्वारा ये बताया गया है कि हमें दिन में कम से कम 17 बार जरूर हंसना चाहिए, 1 मिनट के लिए भी हंसना चाहिए और 17 बार हंसना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हम तो आपसे यही कहेंगे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हमारा जो यह कार्यक्रम है आकाशवाणी सासाराम से, जो भी कार्यक्रम होता है उसको सुनते रहिए। लेकिन फ़िलहाल आइए सुन लेते हैं एक गीत, मुस्कुराने की वजह तुम हो। जी हाँ, सिटी लाइट फिल्म का ये गीत, आइए सुनते हैं।

मुस्कुराने की वजह तुम हो। सिटी लाइट फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह के स्वर में, रश्मि सिंह के बोल थे, जीत गांगुली का संगीत था। जी हाँ श्रोताओं, आज मुस्कुराने और हंसने का ही दिन है, क्योंकि आज आप सब जानते हैं कि 2 मई है, और 2 मई को हम लोग, 3 मई को भी हम लोग हंसी का दिवस मनाते हैं। और वैसे तो कल 3 मई है, तो वर्ल्ड लाफ्टर डे भी मनाया जा रहा है, तो आज उसकी पूर्व संध्या है, तो चलिए इस बहाने भी हम लोग हंसते हैं। खैर, अब कैरियर के अंतर्गत बातें करते हैं कृषि विशेषज्ञ के बारे में, और कैसे हम लोग कृषि विशेषज्ञ का कैरियर बना सकते हैं इस बारे में। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि कृषि विशेषज्ञ होते कौन हैं। कृषि विशेषज्ञ वो होते हैं जो कृषि शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, जो फसलों, मिट्टी, कीटनाशकों और उन्नत खेती तकनीकों के बारे में तकनीकी सलाह प्रदान करते हैं। वो हमें बताते हैं कि खेती हम कैसे कर सकते हैं, किस मौसम में कर सकते हैं, और अगर हम खेती करते हैं तो हमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो ये सब बताने का काम कृषि विशेषज्ञ का है, और हम कृषि विशेषज्ञ बनना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे युवा साथी ऐसे होंगे जो कि कृषि विशेषज्ञ बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि इसके लिए 12वीं के बाद यानी 10+2 के बाद BSc एग्रीकल्चर या किसी संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद आप MSc एग्रीकल्चर और PhD भी करके वैज्ञानिक बन सकते हैं, कृषि वैज्ञानिक, या IBPS, AFO, ARS जैसी परीक्षाएं पास करके सरकारी कृषि विशेषज्ञ भी आप बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 10+2 के बाद आपको BSc करना है तो एग्रीकल्चर से करना है, और उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट के कृषि विशेषज्ञ से रिलेटेड विज्ञापन आते हैं, उन्हें भरना है, एग्जामिनेशन फेस करना है, और उसके बाद आप कृषि विशेषज्ञ बन सकते हैं। मृदा विज्ञान, फसल विज्ञान या एग्रोनॉमी में भी विशेषज्ञता आप हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उनमें से कोई सा भी कोर्स आप कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो भी विज्ञापन प्रकाशित होता है तो फिर आप उसे भर सकते हैं, उसमें पास हो सकते हैं और कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं। और भारत में तो आजकल कृषि वैज्ञानिकों की मांग भी काफ़ी बढ़ गई है, पहले की अपेक्षा अभी बहुत ज़्यादा सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में वैकेंसियां निकल रही हैं कृषि वैज्ञानिक के लिए। तो अगर आपने 12वीं इस साल पास की है और आप कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, तो फिर आपको एग्रीकल्चर की पढ़ाई करनी होगी, तो उसके लिए आप एडमिशन ले लें। और कृषि वैज्ञानिक जब बन जाते हैं तो फिर उनको पैदावार जो होता है या मिट्टी की गुणवत्ता है, मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, पोषण मूल्य या विशिष्ट मिट्टी या जलवायु के अनुकूलन जैसी विशेषताओं के बारे में ध्यान केंद्रित करना होता है। कृषि में खरपतवार, फसल रोग या कीटों को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए भी नई और बेहतर विधियां और उत्पाद विकसित करना होता है। बहुत ही अच्छा कैरियर है, और युवा साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आप अगर एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं तो आपका कैरियर 100% कहीं ना कहीं सिक्योर है। और अगर आपकी जॉब नहीं भी लग पाती है तो भी आप जहाँ रहते हैं वहाँ अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं, खुद की पैदावार उपजा सकते हैं, फसल

मोहम्मद इरफान की आवाज़ में अभी आपने सुना तुम मेरे पास इस एल्बम से ये एल्बम सॉन्ग। और अब चलते चलते सुनवा देते हैं आपको एक अंक इस फिल्म में पलक मुच्छल और पुनीत अवस्थी की आवाज़, प्रभात कुमार के बोल, पुनीत अवस्थी का संगीत।

श्रोताओं, तकनीकी खराबी के कारण हम आपको ये गीत नहीं सुनवा पा रहे हैं और अब कहेंगे कि युवाणी कार्यक्रम में समय हो चुका है कि हम आप सबसे अनुमति लें, तो आप अपनी रेडियो दोस्त रागिनी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, अभी अभी आपने युवाणी कार्यक्रम सुना और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार। अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम किसानवाणी का प्रसारण। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आज किसान वाणी कार्यक्रम के संगे हम दीनू भाई,
1: हम हई रनिया बहिन,
0: सब श्रोता भाई बहिन के राम राम।
1: राम राम
0: रनिया बहिन।
1: जी जी,
0: गर्मी के मौसम चल रहल बा।
1: पूरा न चल रहल बा, तनी मने नखे चलत, लू ले ले कुल चलता
0: कहीं कि मने गर्मी से त हालत खराब बा
1: एकदम एकदम।
0: लेकिन हमनी के त किसान है, या हमनी के गर्मी होके या चाहे ठंडा होके चाहे बरसात होके,
1: जही के बाटे
0: खेत में जाही के बा, खेत में काम करही के बा,
1: कहीं पाला ओला पड़े
0: चाहे आग बरस,
1: आग बरस जाही के बाटे,
0: खेती करत नहीं जा आग लग जाता, बुतावे खातिर कौन कौन प्रयास नहीं जा करत, फिर भी कुछ जाता कुछ आवता। श्रोता भाई बहन, बरसात के मौसम आवे वाला बा।
1: अभी से देखें कि कहीं कहीं शुरू हो गई बा, कहीं आंधी बेजोड़ होता है दिनों भाई।
0: हाँ।
1: तो कहीं कि देखें कैमूर जिला में उहर पत्थर भी पड़ल है। तो खैर मौसम तो बड़ी उलट फेर कर के
0: तो मौसम हाँ, मौसम पर तो कोई के अधिकार नहीं है,
1: लेकिन मौसम के अधिकार जोन बा न दिनू भाई, अगर हमनी के पेड़ पौधा अगर सही मात्रा में लगाई जाए,
0: जी जी,
1: तो एकर कम से कम नहीं तो कुछ नहीं तो फायदा तो होबे करे।
0: इहे तो हम बात कह रहल बानी कि बरसात आवे वाला बा, हर बरसात में सरकार के भी योजना होला कि अधिक से अधिक पेड़ लगावल जाए, आ लोग भी अपना खाली जगह में या चुनले बा कि कोनो जगह में हमरा बाग लगावे के बा, तो ओकरा खातिर जमीन के तैयारी या कैसन कैसन पेड़ लगावे के बा, कैसन बाग लगावे के बा, ये सब के तैयारी थोड़ा सा पहले अगर कल जाए तो हमने के आगे आवे वाला समय में आसानी रही।
1: बिल्कुल, एकरे अलावा दिनू भाई पेड़ पौधा तो लगाएल जाए, देखी धरती माता का जल का जो दोहन हो रहा बा बड़ी ज्यादा हो रहा बाटे, आ कड़ाका का जो गर्मी पड़ रहा बाटे,
0: जी जी।
1: अगर मान ले हमने के पेड़ पौधा नाई लगावल जाए तो बरखा नाई होगी।
0: सौ रोग के एक दवा रनिया बहिन, सौ रोग के एक दवा है कि जितने पेड़ पौधा लागी उतने हमने के पर्यावरण संतुलित रही, और उतने हमने के आसपास के भी वातावरण भी सही रही। कहें कि जितना हमने के ऑक्सीजन अपना सांस ले छोड़ता नहीं जा, कार्बन डाइऑक्साइड या एकरा अलावे जितना गाड़ी मोटर रोड पर चल रहल बा ओकर भी जितना धुआं निकलता, एकरा से वातावरण में तो कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के मात्रा बढ़ रहल बा, हमने के ही प्रयास से एकरा पर अंकुश लगा सकीले जा।
1: कहल जला दिनु भाई कि सौ पुत्र के समान एगो पेड़।
0: जी जी,
1: अगर मान ले कि हमने के एगो हमेशा पेड़ लगाव तन जा, हर महीने हर दिन अगर एक गो पेड़ लगाव तन जा, तो सोचे कि 30 दिन में 30 गो पेड़ हो जाए।
0: जी,
1: अगर एक परिवार खातिर एक घर के कहता नहीं तब पर भी 30 गो पेड़ हो जाए, अब व्यक्ति व्यक्ति अगर लगावे लगी तो देखी जोन संतुलन हमने के पर्यावरण के बाद एकदम संतुलन में हो जाए, बरखा भी समय पर होगी और जितना चाहिए उतने होगी, ठंडा भी समय पर
0: आखिर ये बात तो दिमाग में रखा ही कि ना बाकी संतुलन आखिर काहे बिगड़ल। हमने के जितना तेजी से पेड़ की कटाई करनी है जा, वो ढंग से पेड़ के लगौनी है जाना
1: एकदम नहीं।

0: भी देखत देखे में लौकता कि कहीं कहीं त रोड पर कि किनारे किनारे जौन पेड़ लगा रहल है उ तो बहुत लहलहा रहल बा आ कहीं कहीं देख रेख के अभाव में सूख भी रहल बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: त पेड़ लागे ओकर देख रेख भी हो जरूरी बा संगे संगे। आ देखी रनिया बहन आज के कार्यक्रम में का कबा तनि पहले कार्यक्रम के रूपरेखा बता दी।
1: देखें दिनू भाई आ श्रोता सभे हर रोज के तरह हमने के जैसे सबसे पहले कार्यक्रम का शुरुआत करी ले जाए कृषि खबर से तो आज वही तरह हमने के कार्यक्रम का शुरुआत होगी कृषि खबर से
0: जी।
1: ओकरा बाद हमने के भेंट वार्ता की ओर चलल जाए आ ओहमा होगी हरी खाद कैसे बनाए।
0: अच्छा अच्छा
1: भेंट वार्ताकार रहब डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा आ यहाँ से बातचीत करब भेंट करब डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी।
0: जी जी
1: आज के चर्चा के विषय रही हरी खाद के लिए ढांचा की करे तैयारी आ आगे नसीहत में हमने के होखी गर्मी आलू कैसे ओकरा से कैसे बचल जाओ
0: एक बाद हमने के कुछ सामयिक सलाह भी दिल जाए।
1: हाँ मौसम आ मौसम के पूर्वानुमान पर एक नज़र डालल जाए और बाद हमने के श्रोता सभी से विदा लेल जाए। ये रहा आज के किसानवाड़ी कार्यक्रम के रूपरेखा आ दिन भाई अगर खबर होखे तो सुनाई
0: एकदम खबर बा
1: तो सुनाइए।
0: देखी आज श्रोता सभे आज देश विदेश में हमनी के कृषि खबर ई बा कि शाहबाद के 55 गो प्रखंड में होई सब्जी भंडारण के व्यवस्था।
1: अच्छा
0: श्रोता भाई बहन अब रउआ सभे तरकारी ब्रांड से सीधे जुड़ सकीला। सब्जी उत्पादन में लागत कम आ आय अधिक करे खातिर किसान लोग के प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण मिली। प्याज भंडारण खातिर 13,50,005,000 रुपया के लागत से विशेष संरचना तैयार कई जाई बनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनकी सबसे जरूरी बात। श्रोता भाई बहन योजना के अनुसार हर प्रखंड में लगभग 1,14,00,000 रुपया के लागत से 1500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में भंडारण माप तौल मंडी आ कोल्ड स्टोरेज के व्यवस्था कई जाई। एकरा अलावा प्याज भंडारण खातिर 13,05,000 रुपया के लागत से विशेष संरचना तैयार कल जाए। प्याज के बिक्री खातिर हर प्रखंड में आवश्यकता अनुसार 3 से 4 आउटलेट खोलल जाए। वर्तमान समय में भोजपुर के आरा संदेश बिहियाँ आ बक्सर के ब्रह्मपुर आ डुमराव में प्याज भंडारण खातिर आधारभूत संरचना के कार्य प्रारंभ कर दिहल गइल बा। एकर तैयारी शुरू भी हो गइल बा। तरकारी ब्रांड के ई सब्जी बाजार भाव से सस्ता भी आ गुणवत्ता में बेहतर हुई। अगर उत्पादन अधिक हुई तो शाहबाद तरकारी ब्रांड के सब्जी और भी प्रांत में भेजे के व्यवस्था कइल जाई। रोहतास के 19 भोजपुर के 14 आ कैमूर के 11 गो प्रखंड के सब्जी उत्पादक समिति के एह नेटवर्क से जोड़ल जा रहल बा। किसान के केवल समर्थन मूल्य ही ना बल्कि सब्जी उत्पादन खातिर सुलभ ऋण आ प्रखंड स्तर पर मृदा जांच के भी सुविधा कल जाई एकरा के उपलब्ध करावल जाई। तो ये रहल आज के खबर।
1: एक और खबर बा दिनू भाई।
0: हाँ
1: ओकरो के जान
0: बताई
1: बढ़िया खबर बटे। खबर बा कि बिहार सरकार खरीफ सीजन से पहले किसान खातिर के डिजिटल पहल कैले बाटे।
0: अच्छा अच्छा
1: वो पहल का बा कि सरकार बिहार कृषि ऐप लॉन्च कैले बाटे जवन किसान खातिर के घर ही बैठल नज़दीकी खाद दुकान स्टॉक का उपलब्धता हो जाई आ मौसम आ कृषि योजना का पूरा जानकारी मुहैया भी वहीं पर हो जाई। एकरा से खरीफ का तैयारी बड़ी आसानी से हो जाई आ समय का बचत भी होगी।
0: अच्छा अच्छा
1: एकरे अलावा देखी कहल जाला कि खरीफ सीजन में मुख्य रूप से धान का ही खेती होखेला आ हर साल खाद के उपलब्धता के लेके किसान के परेशानी होखत रहेला।
0: जी जी
1: अक्सर दुकान के बाहर लंबा लाइन देखे के मिलेला आ अफरा तफरी का माहौल बनल रहेला। लेकिन अब बिहार सरकार कृषि ऐप के मदद से किसान पहले से दुकान के जानकारी देख सकेला आ वही आधार पर जा करके खाद खरीद सकेला जेकरा से कि भीड़ भी कम होगी आ समय का बचत भी होगी।
0: देखी कितना बढ़िया बात भाई।
1: हाँ।
0: सरकार किसान के विकास कैसे हुई ये हमेशा सोच रहल बा आ तरह तरह की योजना लागू करता जौना से कि किसान के आमदनी बढ़ो, लागत कम होके।
1: जी जी जी।

0: तो बड़ा बढ़िया रहल। अब हमनी के भेंट वार्ता सुनल जाओ, विषय बा हरा खाद हरी खाद कैसे बनाएं। भेंट वार्ता कार बनी डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा आ भेंट के लिए बनी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। सुनल जाओ।
1: किसान भाइयों, अभी हम वनवासी कृषि विज्ञान केंद्र अधौरा में हैं और यहाँ हमारी एक कृषि वैज्ञानिक अवधेश कुमार शर्मा से भेंट हो रही है। इस समय गर्मी का चूँकि समय है, हरी खाद की तैयारी इसी समय की जाती है, तो हरी खाद के क्या फ़ायदे हैं इनसे जानेंगे और कैसे तैयार करें हरी खाद, इसके बारे में जानेंगे। तो अवधेश कुमार शर्मा जी, आपका स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि हरी खाद के क्या फ़ायदे हैं।
2: जी धन्यवाद तिवारी जी। हरी खाद जो है, आज की खेती के लिए हरी खाद तैयार करना, चूँकि खेतों में कार्बनिक जो पदार्थ हैं वह रासायनिक खादों का इतना प्रयोग हम करते जा रहे हैं, जिससे कि उसके संगठन पर, उसकी मिट्टी की गुणवत्ता पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी दशा में मिट्टी की जो भौतिक दशा है वह दूषित हो रही है, खराब हो रही है, और जिसके चलते हमारा उत्पादन स्थिर सा होते जा रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, मिट्टी का स्वास्थ्य जो है गड़बड़ होते जा रहा है। तो ऐसी दशा में जब मिट्टी के स्वास्थ्य गड़बड़ होते जा रहे हैं, तो उसकी दशा सुधारने के लिए हरी खाद अहम एक भूमिका अदा कर सकती है। इसके जो फ़ायदे हैं आपके, तो हरी खाद से भरपूर कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में जमा हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और नाइट्रोजन जो है हरी खाद जो तैयार करते हैं, इससे स्थिरीकरण बहुत हो जाता है नाइट्रोजन का। अगली फसल में, खासकर धान के लिए जो हम फसल धान और गेहूं का फसल प्रणाली अपनाते हैं, उसमें धान की खेती के पहले किसान भाई यदि अगर हरी खाद अपने खेत में तैयार करते हैं, तो एक तो बहुत सा आपको नाइट्रोजन के रूप में जो यूरिया या अन्य उर्वरकों द्वारा आप उसका करते हैं प्रयोग, उसमें आपकी काफ़ी बचत होती है नाइट्रोजन की।
3: जी जी।
2: और दूसरी है कि मिट्टी की भौतिक दशा बहुत अच्छी हो जाती है और उसमें हवा का प्रवेश अच्छा हो जाता है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छी हो जाती है।
3: जी जी
2: जी। तो आपका जो है सबसे बड़ी बात वही है कि उर्वरक जो है काफ़ी बच जाते हैं आपके, जिस पे कि आप काफ़ी आपाधापी है उर्वरकों को लेके।
1: जी अच्छा, अब ये बताइए कि आपने कहा कि बहुत सारा नाइट्रोजन मिल जाता है ज़मीन को, तो कैसे तैयार किया जाता है हरी खाद को?
2: जी हाँ, हरी खाद के लिए पहले जो है हरी खाद की कुछ फसलें हैं, जिसमें कि सनई है, ढैंचा है, मूंग है, लोबिया है, इन सब दलहनी फसलों को खासकर जो है हरी खाद के लिए जो है प्रयोग में लाते हैं। और इसे जो है हरी खाद तैयार करने के लिए हल्की सिंचाई में, माह में सबसे उपयुक्त समय इसका होता है मई महीने में, उस सिंचाई करके जहाँ हरी खाद के लिए थोड़े पानी की ज़रूरत होती है, जहाँ सिंचाई का साधन है वहीं हम उसे तैयार कर सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों को सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा है, धान लगाना चाहते हैं, तो धान के लिए बहुत ही कारगर उत्पादन के लिए, धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरी खाद की ज़रूरत होती है।
1: अच्छा, तो उसको कैसे, मतलब हाँ, कि जैसे हम लोग फसल लेते हैं उस हिसाब से छींटा जाता है या घना छींटा जाता है उसको?
2: जी हरी खाद चूँकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पति और पौधे ही चाहिए, तो इसे अन्य अगर जैसे मूंग या ढैंचा लगाते हैं बीज उत्पादन के लिए, तो उसे बीज उत्पादन के लिए लगाते हैं तो उसमें बीज दर कम हो जाता है, और इसमें जो है आप सामान्य जो बीज दर है उससे दोगुना जो है, डेढ़ से दोगुना जो है बीज दर रख के सनई ढैंचा मूंग की बिजाई करते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने पौधे होंगे, कोमल अवस्था में पौधे वो दबा दिए जाते हैं, उनकी ऊंचाई सनई के जो है एक से डेढ़ में एक मीटर तक सा 75 से 90 सेंटीमीटर जब हो जाए पौधा, तो उसी अवस्था में, कोमल अवस्था में ही जो है इसे मिट्टी पलटने वाले हल से,
1: जी
2: यह जो है निहायत ज़रूरी है, इस हल देसी हल से नहीं, मिट्टी पलटने वाले हल से अगर उसे जो है पलटते हैं, तो पूरी फसल जो है मिट्टी के नीचे दब जाती है

0: और उसे जो है फिर सिंचाई, उसमें पानी उन खेतों में चारों तरफ मेड़बंदी करके और उसे जो है पानी से भर दिया जाता है ताकि पूरी तरह जो है जो वनस्पतिक पौधा है वह सड़ के खाद के रूप में परिणित हो जाए।
1: जी, तो उसके बाद हम लोग धान की फसल रोपें जब वो पूरी तरह से सड़ जाए तब?
0: जी हाँ, 15 से 15 दिन लगते हैं उसे सड़ने में। अगर पानी आप उसमें भरे हैं तो उसे 15 से 20 दिन में पूरी तरह से वह सड़ के अच्छी दशा की मिट्टी, आपकी काली मिट्टी हो जाती है अच्छी दशा। उसमें जीवाणु, मित्र जीवाणु भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से जीवाणु जो है मित्र जीवाणु मिट्टी में रहते हैं, उन्हें भोजन भी चाहिए। तो ऐसे जो है मित्र जीवाणुओं के लिए कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में रहना निहायत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है, ताकि उनको भी भोजन और वृद्धि के लिए उन्हें भोजन चाहिए और वह भोजन उनका कार्बनिक पदार्थ ही होता है।
1: जी, इसका मतलब है कि अगर धान का बीज हम लोग गिराते हैं उसके पहले ही हमको फसल लगा देनी होगी, और धान की फसल जब बीज डालते हैं उस समय तक हम लोगों को खेत में दबा देना होगा?
0: जी हाँ, अगर धान की फसल हम सामान्यतः रुपाई जो है जुलाई माह के प्रथम सप्ताह से शुरू करते हैं
1: जी,
0: तो उसके पहले यदि आप 15 मई तक अगर इसकी बिजाई कर देते हैं जिन फसलों की हरी जिसे खरी खाद लेनी है और इसके लिए उपयुक्त सनई या ढैंचा दो ही मुख्य हैं, मूंग और अन्य फसलों को भी ले सकते हैं लेकिन सनई और ढैंचा अच्छी मानी जाती है इसकी हरी खाद, तो इसको 15 मई तक आप अगर लगा देते हैं
1: जी,
0: तो आपको पूरी रोपाई के पहले पूरी अच्छी दशा में खेत और तैयारी अवस्था में मिल जाएगी।
1: तो किसान भाई, अगर वर्षा हो जाती है बीच में या जहां सिंचाई का साधन है वहां पर हम लोग सनई ढैंचा लगा करके और अच्छी हरी खाद ले सकते हैं। अवधेश कुमार शर्मा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए

0: ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
3: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वहीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
4: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: रनिया बहन
1: जी जी जी
0: भेंट वार्ता सुननी है जा।
1: अब अपने खेती बाड़ी की ओर
0: बढ़िया लागल है तो धन्यवाद दे देवे के आप चले के अपना खेत ओरे आ देखी जैसे हमने का बतौले रनी है जा कि हरा खाद खातिर ढांचा की खेती जौन बा वो बहुत लाभदायक बा।
1: हाँ हमने के किसान खातिर के बहुत ही फायदेमंद बाटे कहे के
0: तनी बताई कि एकर ढांचा की खेती कैसे कई जाए।
1: लेकिन एकर देखी बहुत सारे ऐसा किसान लोग बना चाहे एकर महत्व के बारे में ठीक से समझत नहीं खान चाहे समझले नहीं खान। लेकिन ढांचा एगो ऐसा फसल है जरा में खास तौर पर माटी के उर्वरता बनावे खातिर के ये उगावल जाला।
0: अच्छा।
1: ना कि सीधे अनाज खातिर चाहे सब्जी खातिर
0: ना ना
1: एकरा के एकरा से हरी खाद के रूप में इस्तेमाल कइल जाला। मतलब कि जब ये फसल तनकी बड़ हो जाला तो एकरा के खेत में ही पलट दिहल जाला
0: सड़ा दिहल जाला
1: ताकि सड़ करके माटी में मिल जाए आ माटी के पोषण दे सके
0: जी।
1: ढांचा का खेती कइल भी बहुत ही आसान है दिनू भाई
0: जी।
1: एकरा में ज्यादा खर्चो नहीं होखेला।
0: अच्छा।
1: देखी कि जैसे अभी बरसात का मौसम आवे वाला बाटे तो बरसाते में बोअल जाला
0: जी।
1: कहे से कि यह समय एकरा के बढ़े खातिर के पर्याप्त नमी मिल जाए आ खेत में अधिका माने ज्यादा खास तैयारी का भी होकर जरूरत नहीं हो खेला। बस का करी कि हल्का जोताई करके बीज का छिड़काव कर दे। करीब 40 से 50 दिन में ये फसल अच्छा तरह से तैयार हो जाला आ तब एकरा के माटी में पलट के वही में डाल दी
0: पलटे वाला हल से जोताई करके वही में मिला दी। वही में सड़ गल जाई
1: खाद बढ़िया बन जाए
0: माटी के उर्वरता बढ़ा दी।
1: आ जब ढांचा के खेत में मिलावल जाला तो ये सड़ करके जैविक खाद बन जाला जगरा से कि माटी में नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ जाला आ जगरा से कि अगला फसल जोन बाटे उकरा खातिर की बहुत फायदा होखला आ रासायनिक खाद का जरूरत भी एकदम ना के बराबर होखेला।
0: जौना खेत में हरा खाद जैविक खाद गोबर के सड़ल खाद इस्तेमाल होखे लगाता है वो सब खेतन में रासायनिक खाद के मात्रा के कोनो जरूरत
1: नहीं के ओकरा अलावा बल्कि माटी में लंबा समय तक उपजाऊ भी बनल रहेला एकर एगो खास बात एक और बाटे दिनो भाई कि माटी के संरचना के भी सुधारेला।
0: अच्छा।
1: आ जेकरा से कि माटी भुरभुरा होखेला पानी सूखे के क्षमता बढ़ेला आ जड़ के माने फैले में आसानी होखेला।
0: देखिन कितना बढ़िया एकर खेती बटू या कितना ही फायदेमंद।
1: हाँ साथे साथे खेत में उगे वाला खर पतवार पर भी काफी हद तक ही कम करेला। तो हमनी के बढ़ चढ़ करके
0: एकर खेती अपनावे के चाहिए।
1: हाँ।
0: रासायनिक खाद से दूरी बनावे के चाहिए।
1: जी जी जी।
0: आ देखी नसीहत भी जरूरी बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल लोह गर्मी चरम सीमा पर चल रहल बाटे
0: एकरा में अगर तनिका सा अगर हमनी का अपना बचाव में धोखा कइल जाई तो परेशानी हमनी के उठावे
1: एकदम एकदम
0: तो ऐसा जरूर करे के बा कि हमनी के स्वस्थ कैसे रहल जाओ परिवार के हर सदस्य कैसे स्वस्थ रहस एकरा बारे में सबका जरूर ध्यान देवे के चाहिए ताकि

0: आवे वाला समस्या से बचल जा सके।
1: जी
0: आ देखी अब कुछ सलाह दिहल जाओ किसान लोग के,
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: समय के सामयिक सलाह जरूरी बा। जैसे कि जे मान ली कि जे पशुपालन कैले बा तो ओकरा खातिर तो ये जरूरी बा कि ओकरा जानकारी रहे आ समय समय पर उ पशु के ध्यान दे।
1: बिल्कुल ना,
0: गर्मी में दुधारू पशु के सूखा चारा के मात्रा कम दही और दाना के मात्रा बढ़ा दही। दाना में तेलहन अनाज के प्रयोग करी। चारा दाना सुबह में 5 बजे आ शाम में धूप खत्म होइला के बाद ही देवे के चाही अपना जानवर के।
1: ये गौरी सबसे
0: साफ ठंडा
1: हाँ।
0: पानी पूरा समय में दही। हर पशु के 3 बार कम से कम पानी जरूर पियावे के चाही। हर वयस्क पशु के 50 ग्राम खनिज विटामिन मिश्रण 50 ग्राम नमक देवे के चाही। किलनी आ अठगुड़वा के नियंत्रण खातिर फ्लूमेथ्रीन इप्रिनोमेक्टिन चाहे एमिट्रोज दवा के प्रयोग करे के चाही। आ मौसम संबंधी चेतावनी ई बा कि आंधी तेज हवा आ वर्षा के से फसल के नुकसान हो सकेला। एह घड़ी अगर रुआ सब्जी लगौले बनी बागवानी लगौले बनी तो ओकर बचाव जरूर करी ताकि राउर फसल बर्बाद मत होके।
1: जी जी जी
0: एकरा बाद कुछ होके तो
1: देखिए। हाँ हाँ हाँ ए घड़ी आम एकदम बढ़िया देखे में लग रहा बटे लेकिन हाँ। आंधी पानी से कहीं कहीं गिरियो गए बटे तो आम के पेड़ में मिली बग माने कि दहिया कीट का निगरानी जरूर करत रही।
0: अच्छा।
1: ई कीट के चपेट में अला पर माने गोल आकार जौन बटे उ पंखहीन तथा शरीर पर सफेद रंग का ई पाउडर जैसा चिपक जाला वही अमामे पर। ई आम के पेड़ में मुलायम डाली पर मंजर वाला भाग में बहुतों के संख्या में चिपकल देखल जाला। आ ओकरे बाद वो हिस्सा पर लगातार उका करला कि रसवा चूसत रहेला।
0: अच्छा।
1: जेकरा से कि आक्रांत भाग जोन बा सुखा जाला आ मंजर जोन बा कि झड़ जाला। यह कीट से रोकथाम खातिर के स्प्रिटोट्रामेट 30 EC दवाई के 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दवाई के घोल बना करके पेड़ पर आसान रूप से छिड़काव करें। कब करें? जब मौसम साफ रहे तब करें।
0: अभी फसल विशिष्ट सलाह ई बा कि पिछला महीना में जो मूंग आ उड़द के फसल बोल गए रहे ओकर निराई गुड़ाई मौसम साफ रहला पर करी। ये फसलन में सघन रोम वाली सूढ़ी के निगरानी जरूर करे के बाद।
1: जी जी
0: एकनी के सूढ़ी के शरीर के ऊपर काफ़ी घना बाल पावल जला। ई मूंग आ उड़द के पौधा के कोमल जौन भाग होला विशेषकर पत्ती की जौन होला ओकरा के खा जाली सन। एनी के संख्या अधिक रहे पर कभी कभी डंठल ही शेष रह जला सब पौधा ई खा जाली सन। ए प्रकार से कीट से फसल के काफ़ी नुकसान आ उपज में काफ़ी कमी आ सकेला। रोकथाम अगर करे के बा तो फसल में मिथाइल पैराथियान 50 EC दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करे के चाहिए।
1: करे के चाहिए। एकरे अलावा भिंडी नेनुआ करेला लौका कद्दू खीरा गर्मा सब्जी के बुआई रुआ कर सकतनी। पहले से बोल गई जवन भी फसल बाटे उमें आवश्यकता अनुसार निकाई गोड़ाई करत रही आ कीट का निगरानी भी करत रही। कीट प्रकोप होखला पर मैलाथियन 50 EC आ डाइथेम 8 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करी मौसम साफ रहला पर एकर उपयोग करी।
0: आ देखी भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 से 5 मई के दौरान जिला में 1-2 स्थान पर हल्का आंधी जोना के तीव्रता 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रही चले के संभावना बा। हल्का वर्षा होके के भी अनुमान बा। तापमान 34 से 38 डिग्री अधिकतम रही आ 20 से 24 डिग्री न्यूनतम रही। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85%, दोपहर में 20 से 30% रहे के संभावना बा। पूर्वानुमान के अवधि में 15 से 17 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा चले के संभावना बा।
1: जी देखिए आज तो बीतिए गई काल का अधिकतम तापमान उम्मीद बाकी 35 डिग्री सेल्सियस रहे के संभावना बाटे आ न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता 75%, न्यूनतम सापेक्षिक

0: आर्द्रता 25%, हवा के गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बह सकत बाटे।
1: तो देखी एक कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही अमित कुमार
0: जी,
1: यही के साथ इशारा कर रहल बा कि अब कार्यक्रम के समय और आ रहल बा। तो चले चले का बेरी किसान वाणी कार्यक्रम के सब श्रोता भाई बहन के दिनू भाई के तरफ से राम राम और रनिया बहन नमस्कार।
0: नमस्कार दिनू भाई, साथे साथे सभी श्रोता लोगन के रनिया बहन का नमस्कार।

किसान वाणी। अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों बहनों के लिए प्रसारित किए जा रहे इस कार्यक्रम का प्रसारण। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सांझ गीत कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विनय विहारी का लिखा हुआ एक भोजपुरी फिल्मी गीत, जिसकी धुन बनाई है धनंजय मिश्रा ने। आवाज़ें हैं पामेला जैन, कल्पना पटवारी, मनोज तिवारी और अमित परासर की।

अभी आपने उदित नारायण के साथ सुना खुशबू जैन की ये मीठी सी आवाज़। इस गीत को लिखा था प्यारेलाल यादव ने और संगीत था अशोक कुमार दीप का। फिल्म का नाम था साजन चले ससुराल। साजन चले ससुराल फिल्म का ही एक और गीत उदित नारायण और खुशबू जैन की ही आवाज़ में आपको सुनवाने जा रहे हैं। प्यारेलाल यादव का लिखा हुआ ये गीत और संगीत एक बार फिर अशोक कुमार दीप का।

0: सुन, सोचतानी कि काहे ना आपन बिजनेस बढ़ाई।
1: त रोकले के बा?
0: रोकले तो कोई नहीं खे, बाकी समझ में नहीं खे आवत कि कैसे मदद मांगी।
1: हमरा से?
0: तुहरा से? तो बतावो।
1: आकाशवाणी बाना, हम सुनले बानी कि आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा।
0: तो ओकरा से हमरा की का फायदा बा?
1: फायदा बा, जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से ओही जगह पहुंच जाई।
0: तो इहो बता द कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे होई?
1: बहुत आसान बा, हम बतावत बानी। नंबर लिखी 8700014242।
0: ओ 8700014242।
1: हाँ।
0: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700014242 पर।

अभी आपने सुना रखवाला फिल्म में जावेद अली की आवाज़, प्यारे लाल यादव के बोल थे, धनंजय मिश्रा का संगीत था। और अब सांगीत कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए मनोज तिवारी और प्रिया भट्टाचार्य की युगल आवाज़ में विनय बिहारी का लिखा हुआ एक गीत, संगीत लाल सिन्हा का है और फिल्म है ससुरा बड़ा पैसा वाला।

0: श्रोताओं, मनोज तिवारी और प्रिया भट्टाचार्य की गाई हुई ये फिल्मी गीत, और अब इसी के साथ हमारा आज का सांझ गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 7 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: नमस्कार, मैं हूं राजेश, और एक बार फिर से आप सबों के अपने कार्यक्रम, हम अपना कह रहे हैं क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, और जिसका नाम हमने रखा है ममता का आंचल। जी हाँ, ममता का आंचल। हाँ, माँ का आंचल, ममता का आंचल। हर माँ के गोद में बच्चा अच्छा लगता है, लेकिन विडम्बना ये है, हाँ, कुछ इस तरीके की बीमारी है, विकार है, जिसके कारण कुछ महिलाओं को बच्चा शादी के 2-3-4 साल हो गए लेकिन अभी भी नहीं हुआ है और संकोच कर रही हैं, तो उनके लिए खास करके हमारा ये कार्यक्रम है। दूसरी बात ये है कि वैसे बड़े बुजुर्ग जो घर में बैठे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि आप सजग होइए, सचेत होइए, और अगर ऐसे ऐसी बहू है, ऐसे बेटे हैं आपके पास जिनके पास अभी भी बच्चा नहीं है, और हम तो इससे एक कदम आगे निकल कर कहेंगे कि अगर पास पड़ोस में भी देखिए कहीं किसी के पास बच्चा नहीं, शादी के 2-3-4 साल हो गए, तो उनके लिए भी आपकी जिम्मेदारी है। बड़े बुजुर्ग घर में भी और बाहर में भी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, जैसे श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी जो है अपना निर्वाह कर रही है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रही है, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से हम उस अंतिम कपल तक, दंपत्ति तक पहुंचना चाहते हैं जिन्हें शादी के बाद अभी भी बच्चा नहीं हुआ है। जी हाँ, लगातार डॉक्टर श्रद्धा चखैयार आती हैं, बातचीत करती हैं, लेकिन हम आपको भी अपनी बातें बताने का मौका देते हैं। नोट कीजिए डॉक्टर श्रद्धा का नंबर, आप सीधे सीधे बात कर लीजिएगा, करिएगा, बात जरूर करिएगा। ये सिर्फ एक बीमारी है, चुप्पी तोड़ना होगा आपको। हाँ, चुप्पी तोड़िए और आगे बढ़ जाइए। कौन क्या कहता है इसके बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। नंबर नोट कीजिए 9162562266, 9162562266 ये नंबर है डॉक्टर श्रद्धा का। एक और बड़ी बात, पैसे की समस्या आ रही थी, लेकिन श्रद्धा IVF ने आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है, आपके इलाज के लिए उसने EMI की व्यवस्था कर दी है। अब आप 24 महीने में पैसा चुका सकते हैं, इसलिए अब वो समस्या भी नहीं रही। तुरंत इसी नंबर पर बात कीजिए, 9162562266 ये नंबर है, इसी नंबर पर बात कीजिए। जी हाँ, मोबाइल का जमाना आगे बढ़ गया, अब AI का जमाना आ गया, उससे इलाज हो रहा है और आप चुपचाप घर में बैठे हैं, अच्छी बात नहीं है, ये आपके जीवन का सवाल है, बात कीजिए। हर चीज का सॉल्यूशन है, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा बैठी हैं, हम सबसे पहले उन्हें बुलाते हैं इस कार्यक्रम में, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी।
2: डॉक्टर श्रद्धा, हमने कहा है कि मोबाइल से अब हम AI में आ गए, फिर भी लोग चुप बैठे हैं।
3: बिल्कुल, हम बहुत लोग, विज्ञान बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, हम लोग मोबाइल से AI में आ रहे हैं, तो उसी तरह से लोगों को भी अपना विचार बदलना है। मैं आज बात करना चाहती हूँ निसंतानता के बारे में। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि निसंतानता क्या होती है। वैसे दंपति जो पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए और उनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, उन्हें निसंतान दंपति कहा जाता है। जरूरी है कि ऐसे दंपति अब

0: ना जांच कराना शुरू करें।
1: हाँ।
0: जांच आप कहीं भी करा सकते हैं, आसपास के कोई भी डॉक्टर से करा सकते हैं, लेकिन अगर अब 2 साल हो गया है,
1: हाँ।
0: यानी कि 2 साल हो गया है, 1 साल तो आपने खुद से कोशिश किया, 1 साल आपने जांच कराया, कुछ दवाई लिया,
1: हाँ।
0: और अब भी बच्चा नहीं ठहरा, तो जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलने का।
1: बिल्कुल।
0: तो वो सही बीमारी पकड़ेंगे, इलाज करेंगे, और आपका जो कीमती समय है कि सही समय पे बच्चा हो जाए, वो आपका उसमें आपको मदद करेंगे।
1: जी जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब चुप्पी तोड़ने का वक्त आ गया है। बड़े बुजुर्ग सामने आए और ऐसे कपल को खुद डॉक्टर के पास भेजे, हम आपके लिए सहूलियत कर देते हैं। रास्ता नंबर बता रहे हैं डॉक्टर श्रद्धा चकैयार का, नंबर नोट कर लीजिए 9162562266। जी हाँ, अब संकोच का वक्त नहीं है, इलाज कराने का वक्त है। ये कार्यक्रम ममता का आंचल हम लेकर आ रहे हैं श्रद्धा IVF एंड मेटर्निटी की तरफ से, बहुत ही उम्दा संस्थान, EMI की सुविधा भी है। इलाज कराइए और 24 महीने में पैसा दीजिए। जब बच्चा 2 साल का हो जाए ना, 1.5 साल का, तब तक पैसा चुकाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपके लिए ये व्यवस्था की गई। डॉक्टर श्रद्धा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, हम बार बार आपसे पूछते भी रहे, आज फिर हम पूछना चाहते हैं और आपका जवाब चाहते हैं कि कुछ भी परेशानी होना तो महिलाओं को दोष दे दिया जाता है, IVF के विषय में क्या स्थिति है?
0: बिल्कुल, निसंतानता में अगर आप कारण का बात करें तो ये पता लगा है कि 40% निसंतानता, यानी कि 10 में से 4 अगर दंपति जो निसंतान है अगर उनको देखा जाए तो 10 में से 4 का कारण निसंतानता का कारण पुरुष पाया गया है। अच्छी बात है कि लोगों में अवेयरनेस आ रहा है,
1: हाँ।
0: अब पुरुष भी अपना, पहले एक समय था जब सिर्फ औरत ही जांच कराती थी, अब पुरुष भी अपना जांच कराने लगे हैं। लेकिन जब भी निसंतानता का अगर बात होता है तो दोषारोपण हमेशा महिलाओं में होता है
1: आमतौर पर।
0: बिल्कुल, हाँ, हाँ। तो मैं रेडियो के माध्यम से जितने भी बड़े बुजुर्ग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहती हूँ, निसंतानता का कारण सिर्फ औरत नहीं होती है, पुरुष भी होते हैं, इसलिए मिलके दोनों को इलाज कराना चाहिए। और कारण चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, दोषारोपण किसी में नहीं होना चाहिए, ना औरत में ना पुरुष में, क्योंकि निसंतानता इज जस्ट अ मेडिकल कंडीशन। जैसे TB एक बीमारी है, डायबिटीज एक बीमारी है, वैसे ही इनफर्टिलिटी भी एक बीमारी है।
1: जी।
0: जैसे उन चीजों का इलाज होता है वैसे इनफर्टिलिटी निसंतानता का भी इलाज होता है। इलाज बहुत सारे हैं, पहले तो हम लोग लाइफस्टाइल से करते हैं, अगर पुरुष अत्यधिक बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा इसका सेवन कर रहे हैं तो वो उनको मना किया जाता है। औरत में भी जो अगर लाइफस्टाइल का कोई दिक्कत है, अगर उन मोटापा ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए बोला जाता है।
1: जी।
0: बहुत लोग तो दवाई से भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, आपका दवाई खाते हुए 1 साल हो गया
1: जी।
0: और अब भी बच्चा नहीं ठहरा है, तो अब आपको नेक्स्ट लेवल पे का इलाज कराना होगा। इलाज हो सकता है IUI हो सकता है IVF, सही समय पे ये सब इलाज करा लेना भी सही होता है, क्योंकि आप ये भी मानेंगे और मैं बार बार बताती हूँ कि अगर आप कोई निसंतान दंपति है तो अगर आप IVF, कहा जाता है कि निसंतानता का सबसे बड़ा इलाज जो होता है, सबसे सटीक जो इलाज होता है वो IVF होता है, लेकिन IVF का भी अपना सक्सेस रेट होता है।
1: जी, बिल्कुल।
0: IVF का ओवरऑल सक्सेस रेट जो विश्व में है वो 50-60% है, लेकिन ये भी एज डिपेंडेंट है, यानी कि आप किस समय अपना इलाज करा रहे हैं। अगर शादी का 2-3 साल 4 साल हो गया और अभी तक बच्चा नहीं ठहरा, आप सही समय पर एक निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले और अगर आप इलाज कराते हैं तो आपको IVF से बच्चा ठहरने का चांस 80% है, बशर्ते कोई अनुवांशिक बीमारी ना हो। लेकिन अगर वही दंपति 20 साल, शादी का 20 साल हो गया, यानी कि शादी अगर 20 साल में हुई और अब वो शादी का 20 साल, यानी कि 40 या 45 साल की उम्र में अपना इलाज करा रहा है, तो उसको IVF से भी बच्चा ठहरने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ खत्म हो जाती, संभावना तो सबसे ज्यादा IVF से ही है। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि सही समय पे इलाज कराना बहुत जरूरी है।
1: सही समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो आपने कही, हाँ, बड़े बुजुर्गों, आपके बेटे में खराबी नहीं है या कमी नहीं है ऐसा सोचना नहीं।

0: है और महिलाओं आपको हम कहना चाहते हैं कि चुप्पी तोड़िए। कार्यक्रम चल रहा है ममता का आंचल, पूरा बिहार इस वक्त सुन रहा है और एक मकसद है कि वैसे दंपत्ति जिनको संतान नहीं है शादी के बाद वो IVF का फायदा उठा सकते हैं। 50 साल पुरानी बात हो गई, हम कंप्यूटर से अब AI पर आ गए, मोबाइल पीछे छूट गया, आप अभी भी घर के अंदर बैठे हैं, ये ठीक बात नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नंबर बताते हैं, डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है 9162562266। कम से कम फोन कीजिए, महिलाएं आप भी फोन कीजिए। हाँ, ये मत देखिए गांव घर में ऐसा होता है कि वही बात करेंगे, वही मतलब पति ही बात करेंगे तो करेंगे, आप भी बात कीजिए, हाथ में आपके भी मोबाइल है, रास्ते तलाशिए, क्योंकि बच्चा जब होगा ना तो आप दोनों का होगा। और अब पैसे की भी कोई समस्या नहीं, EMI की सुविधा है, 24 महीने में आप पैसा दे सकते हैं। ये सिर्फ श्रद्धा IVF ने आप दंपतियों के लिए ऐसी व्यवस्था की है। तो बड़े बुजुर्गों, सिर्फ घर में नहीं बाहर भी देखिए, हाँ दाहिने बाएं भी देखिए कि कहीं ऐसी समस्या है तो जरूर उनको सचेत कीजिए। और ये जो नंबर दे रहे हैं ना 9162562266, ये उनको भी दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर श्रद्धा।
1: एक मिनट राजेश जी, मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ कि हमारा जो सोसाइटी है खासकर बिहार में, आज भी हम बड़े बुजुर्ग का बहुत इज्जत करते हैं, और वो जो कहते हैं हम लोग जरूर मानते हैं। तो बड़े बुजुर्ग, अगर आप अपना ये जिम्मेदारी ठीक से निभाएं, अगर आप समझें और पहचानें कि आसपास कौन निसंतान दंपति है, अगर उनको प्रेरित करें इलाज कराने का और निसंतानता का अगर सही समय पे इलाज करा लें, तो कोई भी दंपति कम से कम निसंतानता के कारण दुखी नहीं रहेगा। तो बड़े बुजुर्ग, अगर आप इस जिम्मेदारी को, यानी कि अवेयरनेस का अगर आप जिम्मेदारी आसपास अच्छे से करेंगे, तो मुझको लगता है सोसाइटी और ज्यादा खुशहाल होगा।
0: खुशहाल होने में अपनी मदद कीजिए और डॉक्टर श्रद्धा के हाथों को मजबूत कीजिए, जो कहती हैं कि अब संकोच नहीं, इलाज करवाना है और चुप्पी तोड़ना है। डॉक्टर श्रद्धा एक बात बताइए, आफ्टर ऑल समाधान क्या है ऐसे कपल्स के लिए?
1: देखिए, निसंतानता सबसे पहले तो अगर कोई दंपति निसंतानता से जूझ रही है या जूझ रहे हैं, तो पहले तो हमें कारण ढूंढना होता है, क्या कारण है। कारण हो सकता है औरत में हो, यानी कि उनके अंडे खत्म हो गए हों, या उनके अंडाशय में अंडे बन ही नहीं पा रहे हों, या फिर उनके बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो, हो सकता है TB हो सकता है रसौली हो, इंडोमेट्रियोसिस हो, या फिर पुरुष भी कारण हो सकते हैं, यानी कि उनके शुक्राणु कम हो, शुक्राणु की चाल में कमी हो सकती है, या बनावट में कमी हो सकती है, या फिर जेनेटिक बीमारी हो सकता है। तो कारण बहुत से हो सकते हैं, पहले तो कारण ढूंढा जाता है, जब कारण पता लग गया तो उस चीज को ठीक किया जाता है, यानी कि अगर अंडा नहीं बन रहा है तो सुई और दवाई दिया जाता है, अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है कि अंडा बन पा रहा है कि नहीं, अंडा फूटने का इंजेक्शन दिया जाता है, IUI किया जाता है। लेकिन जब ये सारे चीज भी काम नहीं कर पाते हैं, कभी कभी लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रो यानी दूरबीन का जांच करना पड़ता है, लेकिन जब ये चीज भी नहीं काम कर पाते तो IVF अपना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि सही समय पे कराया हुआ इलाज का सफलता दर हमेशा बेहतर होता है।
0: तीन चीज हम जो कहें आप खुद से कहने, तो क्या कहिएगा? एक मैं कह देता हूँ, खुलकर बात करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, खुलकर बात करनी चाहिए।
0: अगला दो आप बताइए कि क्या कहना है।
1: दोनों दंपति यानी कि पति पत्नी दोनों जांच कराएं, समय पर डॉक्टर से मिले। इनफर्टिलिटी कोई कमजोरी नहीं है,
0: जी।
1: ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है। और माँ, वैसे दंपति के लिए माँ बाप बनने की चाह के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है। आप हिम्मत जुटा के रखिए, अपना इलाज कराइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगा,
0: आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जाते जाते बड़े बुजुर्गों से बस एक विनती है कि आप इस परिवार की नींव हैं, आपके एक शब्द से हौसला भी मिलता है और चुप्पी भी गहरी हो जाती है। अगर आपके अपने बच्चे इस सफर से गुजर रहे हैं तो उन्हें सवालों से नहीं सहारे से संभालिए, उन्हें दोष से नहीं समझ से अपनाइए, क्योंकि सही समय पर आपका साथ उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज घर जाकर बस इतना कह दीजिएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, और देखिए कैसे उम्मीद फिर से जन्म लेगी। अब चुप्पी नहीं, खुलकर बात करनी होगी। क्यों डॉक्टर श्रद्धा, सही काम ने?
1: बिल्कुल, चुप्पी नहीं, खुलकर बात करनी होगी।

0: और इसीलिए हम डॉक्टर श्रद्धा का नंबर बता रहे हैं कि खुलकर बात कीजिए 9162562266 9162562266। हर अंधेरे के बाद उजाला होता ही है, यही सच्चाई है। बस उजाले का इंतजार कीजिए और अपना कर्म कीजिए। चलिए डॉक्टर श्रद्धा निकलते हैं। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: ममता कहाँ चल, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले गतिविधि शामिल करते हैं आज कैमूर जिला का। जी हां, भारतमाला परियोजना के मुआवजे के लिए कैमूर में आज विशेष कैंप का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी कैमूर द्वारा जारी आदेश के अनुसार वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेस भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के लंबित मुआवजे के भुगतान के लिए आज दिनांक 2 मई 2026 को समाहरणालय स्थित मां मुंजेश्वरी सभागार में विशेष कैंप का आयोजन किया गया। हड़ताल के कारण बाधित हुए मुआवजे भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू बनाना और किसानों को उनका हक दिलाना ये शामिल था। मुआवजा वितरण की यह प्रक्रिया तारीख वरीय अधिकारियों की सीधी देखरेख में संपन्न हुई। और श्रोताओं, एक खबर लेते हैं रोहतास जिले की। जी हां, रोहतास जिले में 3 मई 2026 को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त संचालन को लेकर समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में आज जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी उदिता सिंह, दंडाधिकारी, केंद्रा अधीक्षकों, इन सब की ब्रीफिंग हुई और जिला पदाधिकारी उदिता सिंह ने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला पदाधिकारी उदिता सिंह द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि परीक्षा की सूचिता एवं गोपनीयता सर्वोपरि है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कदाचार किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानकारी दी गई है कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा रोहतास जिला में एक ही पाली में यानी कि अपराह्न 2 बजे से संध्या 5 बजे तक आयोजित होगी, जिसकी कुल अवधि 3 घंटे निर्धारित है। परीक्षा के संचालन हेतु रोहतास जिला के अंतर्गत कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शेरशाह कॉलेज, एसपी जैन कॉलेज, शेरशाह सूरी इंटर कॉलेज, शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज, श्री शंकर उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोहतास महिला कॉलेज एवं श्री शंकर कॉलेज शामिल हैं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों का प्रवेश 11 बजे पूर्वाह्न से 1:30 पूर्व अपराह्न तक कराया जाएगा। 1:30 बजे अपराह्न के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और श्रोताओं, एक और खबर रोहतास जिले से ही। जी हां, रोहतास जिले में गैस की किल्लत बिल्कुल नहीं है। रोहतास जिला में घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रोहतास जिला में घरेलू गैस की आपूर्ति हेतु इंडेन के कुल 28 वितरक हैं, जिनके पास कुल 8,646 घरेलू गैस उपलब्ध हैं। भारत गैस के कुल 7 वितरक हैं, जिनके पास कुल 1,114 घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। एचपी गैस के कुल 11 वितरक हैं, जिनके पास कुल 1,798 घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। और आपको बता दें कि सभी जमाखोरों, कालाबाजारी, घरेलू गैस के व्यावसायिक

उपयोग की शिकायत करने हेतु एवं घरेलू गैस निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर मिलने पर तथा घरेलू गैस मिलने में होने वाली समस्या हेतु जिला नियंत्रण कक्ष गठित किया गया है, जिसका दूरभाष संख्या है 0618422607। जी हाँ, शिकायत करने के लिए दूरभाष संख्या है 0618422607। एक और नंबर है 0618422603, 0618422093। तो इस पर आप संपर्क कर घरेलू गैस से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और श्रोताओं, इसी के साथ अब एक और खबर चलते चलते हम आपके साथ साझा करते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार का ये खबर है, क्या हम कर सकते हैं जब भी किसी तरह की कोई आपदा आती है। सबसे पहले तो हमारे मोबाइल पर अचानक एक अलर्ट मैसेज या तेज नोटिफिकेशन आता है। जब भी आपदा होता है तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है हमारे मोबाइल पर, और जब भी कोई आपदा आता है तो हमारा जो भी SMS आता है वो अलग दिखता है। वो फ़ोन में तेज़ आवाज़ या वाइब्रेशन भी हो सकता है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह खतरे का संकेत नहीं बल्कि सिर्फ एक परीक्षण है। और सरकार ने कहा है कि 2 मई को अगर आपके मोबाइल पर अलर्ट संदेश मिलता है तो आप घबराए नहीं, सतर्क रहें और अफवाहों से बचे रहें। तो आज 2 मई है और आपके मोबाइल पर इस तरह का कोई अलर्ट संदेश आता है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको अलर्ट किया जा रहा है कि आप भविष्य में भूकंप, बाढ़ या किसी भी आपदा की स्थिति में समय रहते चेत सकें, यानी चेतावनी देने के लिए ये पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। और अब कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एक गीत, ट्वाइलेट एक प्रेम कथा, इस फिल्म का गीत है, आवाज़ें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

और श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का यह गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:25 होने वाले हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र।

0: 2026 or BCECE merit. Online registration is open. Last date 5 May 2026. For more information visit bceceboard.bihar.gov.in. Issued in public interest by Department of Science, Technology and Technical Education and Department of Information and Public Relations, Government of Bihar.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashwani. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारत और नेपाल के बीच कोसी और गंडक परियोजना की संयुक्त समिति की बैठक संपन्न। दोनों देशों के बीच तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों को हल करने पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नगर आवास और शहरी विकास योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गिनती का काम आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। यह मुलाकात पटना के 7 सर्कुलर रोड स्थित नीतीश कुमार के नए आवास पर हुई। लगभग आधे घंटे तक चली इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। इस मुलाकात को कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नगर आवास और शहरी विकास योजनाओं पर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान शहरी विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, स्वच्छता व्यवस्था, जलापूर्ति और आवास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यों में और तेजी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित बनाए रखने का निर्देश दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने पटना के जेपी गंगा पथ के पास बन रहे पार्क और अन्य निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। इस अवसर पर प्रधान सचिव समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। कोसी और गंडक परियोजना की संयुक्त समिति की 11वीं बैठक काठमांडू में आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही कोसी और गंडक परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक चर्चाएं की गई। काठमांडू में हमारी संवाददाता श्वेता सिंह की रिपोर्ट।
1: कोसी और गंडक परियोजना की संयुक्त समिति की बैठक में बाढ़ नियंत्रण, तटबंधों के रखरखाव, सिंचाई प्रबंधन, कटाव से सुरक्षा और सीमा पार जल मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बिहार जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने किया, जबकि नेपाल का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग के महानिदेशक मित्रा बराल ने किया। बैठक में नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने कोसी और गंडक परियोजना के मुख्य क्षेत्रों, जिनमें नहरें, बैराज क्षेत्र और तटबंध से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई, ताकि परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके। वीरपुर क्षेत्र में कोसी अंचल में वर्ष 2026 की बाढ़ आने से पहले दोनों पक्षों ने कटाव नियंत्रण कार्यों के लिए रेत, मिट्टी और गाद जैसी सामग्रियों के उपयोग पर सहमति व्यक्त की। इस बात पर भी सहमति बनी कि कोसी परियोजना के तहत पट्टे पर दी गई भूमि का सीमांकन GPS तकनीक का उपयोग करके और मौके पर जाकर एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। नेपाली पक्ष ने आश्वासन दिया कि बाढ़ के मौसम में जब कोसी नदी का जल प्रवाह तेज होता है तो स्थानीय नागरिकों द्वारा की जाने वाली लकड़ी कटाई, मछली पकड़ने और अन्य गतिविधियों के कारण कोसी बैराज के सामान्य संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत ने नेपाल में पश्चिमी कोसी मुख्य नहर और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के नहर कमांड क्षेत्रों में जल निकासी और जल भराव से संबंधित मुद्दों का निरीक्षण करने और उन्हें हल करने पर सहमति जताई। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
0: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार नीतीश कुमार की राह पर ही आगे बढ़ रही है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार 2025 से 30 के लिए किए गए नीतीश कुमार के वायदे को पूरा करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक समाज के लिए विभिन्न कल्याणकारी कामों को पूरी ईमानदारी से पूरा किया जा रहा है। ऐसे में किसी प्रकार के अनावश्यक भय या भ्रम की स्थिति में रहने की आवश्यकता नहीं है।
2: नीतीश कुमार जी

0: के शासन में जिस तरीके से 3C से जो कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं थी, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, क्योंकि बराबर इस मुद्दे को भड़काने की कोशिश हमारे विपक्ष के साथी करते रहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि सांप्रदायिकता पर भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश कुमार जी के समय में चल रही थी, आगे भी वही चलेगी। बिहार सूबे के तो सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग मानते ही हैं, देश भर के अल्पसंख्यक समाज यह मानता है कि अल्पसंख्यकों के हित में जो बिहार में काम हुआ है वो कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ।
1: जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अपनी पहली राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कल बेतिया से करेंगे। निशांत कुमार की इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा रखा गया है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज बेतिया में कहा कि 2 दिवसीय इस यात्रा के दौरान निशांत कुमार पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे।
2: ये गौरव का विषय है कि माननीय निशांत कुमार जी की सद्भाव यात्रा की शुरुआत चंपारण की धरती से हो रहा है। नीतीश जी की विरासत को जनता दलित केवल विरासत नहीं, बिहार की विरासत नहीं, देश की राष्ट्रीय राजनीति में विरासत है। उस विरासत को सजाने और संवारने का काम निशांत कुमार जी को दिया गया।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड की विभिन्न मीडिया इकाइयों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में श्री कुमार ने सभी मीडिया इकाइयों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया इकाइयों को डिजिटल मीडिया तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हुए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
6: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गिनती का काम आज से शुरू हो गया। पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM ने दानापुर की बाटा फैक्ट्री के पास इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। वहीं विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने भी जनगणना के पहले चरण का कार्य शुरू होने की जानकारी दी है। जनगणना कार्य सह नागरिक निबंधन की निदेशक रंजिता ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जनगणना का पहला चरण बेहद अहम है। उन्होंने लोगों से जनगणना

0: कोरोना के नाम पर सक्रिय स्कैमर्स से सतर्क रहने और किसी भी तरह की अफवाहों या भ्रामक जानकारी पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।
1: तो कई सारी धोखाधड़ी आदि की भी खबरें हम लोगों के पास आ रही है, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या करेंगे? तो किसी भी प्रकार का कोई ओटीपी मांगे तो नहीं देना है, बैंक खाता विवरणी नहीं मांगते हैं, पैन नंबर, आधार नंबर या किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट प्रगणक के द्वारा उसकी मांग नहीं की जाती है। आप किसी भी अननोन लिंक पर जाने से बचें। तो अगर आपसे कोई इस प्रकार की जानकारी मांग रहा है तो आप निश्चित रूप से सावधान हो जाइए और अपने जिला में संपर्क करिए, या 1855 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।
0: इधर स्वगणना के लिए दी गई 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। गृह मंत्रालय के अनुसार घर घर जाकर गणना और आवासों की गिनती की प्रक्रिया 30 मई तक जारी रहेगी। इस दौरान प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे। जो नागरिक स्वयं यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके हैं, उनके विवरण अब गणनाकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर दर्ज किए जाएंगे। जनगणना 2027 का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। केंद्र सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। यह संदेश केवल परीक्षण के लिए था। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री पुरी ने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: चक्रवाती हवा के प्रभाव से प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार, पूर्णिया, पूर्वी और पश्चिम चंपारण के कुछ भागों में भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं राज्य के अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सुपौल जिले में लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ भागों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
4: दिनांक 3 मई राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भागलपुर के पीरपैंती पावर प्लांट का दौरा कर निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ क्षेत्र में रोजगार, औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेगा। अररिया पुलिस ने NH-27 पर वाहन जांच के दौरान पश्चिम बंगाल के 4 तस्करों को 1 करोड़ रुपये मूल्य की मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न खेल पाठ्यक्रमों में नामांकन की अंतिम तिथि को विस्तारित किया है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नेपाल के बीच कोसी और गंडक परियोजना की संयुक्त समिति की बैठक संपन्न।

0: दोनों देशों के बीच तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों को हल करने पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नगर आवास और शहरी विकास योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गिनती का काम आज से शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है, इधर तो
3: इधर आइए।
4: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है दरभंगा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मणिकांत झा।
5: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच दरभंगा जिले में रसोई गैस और पेट्रोलियम की पदार्थों की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी गैस एजेंसियों को नियमित रूप से होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उपभोक्ता घर बैठे गैस बुकिंग कर निर्धारित समय के भीतर सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी ने धावा का गठन किया है। वहीं उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतों का निवारण करा सकते हैं। जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत स्व गणना का कार्य संपन्न हो गया। 1 अप्रैल से शुरू हुआ यह अभियान 1 मई तक जारी रहा। इस दौरान नागरिकों ने जनगणना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्वयं भागीदारी सुनिश्चित की। जिलाधिकारी ने बताया कि स्व गणना के बाद अब जिले में मकान सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि 2 मई से 31 मई तक प्रगणक घर घर जाकर स्वगणना के दौरान भरी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे और जिनकी जानकारी छूट गई है उन्हें भी शामिल करेंगे। राज्य सरकार की प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना में दरभंगा को शामिल किए जाने से जिले में उत्साह का माहौल है। इस टाउनशिप को मिथिला टाउनशिप के नाम से विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर करीब 1600 एकड़ भूमि को इस परियोजना के लिए चिन्हित किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि भूमि चिन्हांकन, अधिग्रहण और अंतिम स्वीकृति की प्रक्रिया भी प्रारंभिक चरण में है। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर सर्वेक्षण और संभावित स्थानों का आकलन किया जा रहा है। इस टाउनशिप के विकसित होने से आधुनिक आवासीय परिसर, बेहतर सड़क नेटवर्क, पेयजल, सीवरेज, बिजली, हरित क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी संरचनाओं का विकास होने की उम्मीद है। साथ ही इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और जिले को एक संगठित और आधुनिक शहरी स्वरूप मिल सकेगा। काल वैशाखी के प्रभाव से जिले के मौसम में अचानक बदलाव हुआ, जिसके कारण भारी बारिश के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। इस बरसात से आम, लीची, कटहल और पपीता समेत कई बागवानी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं मौसम में आए इस बदलाव के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। इधर जिले में भूगर्भीय जलस्तर नीचे चले जाने से कई इलाकों में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इस जल संकट के समाधान को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला अधिकारी कौशल कुमार ने पीएचईडी के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में सभी खराब चापाकलों की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इधर नगर निगम दरभंगा की महापौर अंजुम आरा ने एक वार्ड में 2-2 सबमर्सिबल पंप लगाने का भी निर्देश दिया है। पिछले दिनों राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन की अध्यक्षता में दरभंगा स्थित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें 4,57 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे का बजट पारित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गुणवत्ता, वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया।

0: जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। अब तक 24,000 से अधिक पांडुलिपियों का सत्यापन किया जा चुका है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और सर्वेक्षण को लेकर आम जनता से अपील की है कि वे अपने घरों में सुरक्षित 75 वर्ष से अधिक पुरानी ऐतिहासिक सांस्कृतिक साहित्यिक और आध्यात्मिक महत्व की पांडुलिपियों को ज्ञान भारतम पोर्टल पर साझा करें ताकि इस धरोहर को संरक्षित और डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में 100 दिवसीय क्षय रोग मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। 24 मार्च से चलाया जा रहे इस अभियान के तहत अब तक जिले में 1,000 से अधिक टीबी मरीजों की पहचान की गई है। बीते दिनों दरभंगा जिले में माता सीता के प्राकट्य दिवस जानकी नवमी के अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने माँ सीता की पूजा अर्चना की। वहीं विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में जानकी नवमी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने मैथिली दिवस भी मनाया।
1: अभी आप सुन रहे थे दरभंगा जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मणिकांत झा।
2: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल, इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:52 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे ई मनपसंद कार्यक्रम। जी हाँ, ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद आप सभी के सामने हाजिर है। आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त रागिनी। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत।

जी हाँ श्रोताओं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप भी सोच रहे होंगे कि आज किसका हैप्पी बर्थडे है, तो हम बता दें आपको कि आज हमारे आकाशवाणी सासाराम का हैप्पी बर्थडे है। जी हाँ, आज ही के दिन 2 मई को 1991 में इसका स्थापना हुआ था और पहला प्रसारण किया गया था। तो आज हम आकाशवाणी सासाराम का स्थापना दिवस मना रहे हैं और इसे हैप्पी बर्थडे भी बोल रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ हमारे श्रोता भी हमसे हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं आकाशवाणी सासाराम को। और जो मैसेज हमें भेजा है हैप्पी बर्थडे का, आप हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण श्रीवास्तव, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी सासाराम के स्थापना दिवस पर आप सभी को अनंत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो आपको भी हमारी तरफ से बहुत सारी बधाई आकाशवाणी सासाराम के स्थापना दिवस की। और ये हमारे श्रोता हैं पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान आज अंसारी, बक्सर से हैं शरफुद्दीन अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी। और एक हमारे श्रोता जिन्होंने बड़ी ही अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं, ये हमारे कार्यक्रम की तारीफ़ तो कर ही रहे हैं, साथ ही ये लिखते हैं कि मुझे ई मनपसंद कार्यक्रम बेहद पसंद आता है और मैं इसे डेली सुनता हूँ, कभी भी सुनना नहीं भूलता। जी हाँ, आप हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोज मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निसा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यस मंसूरी। तो चलिए, आप सभी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें इतने अच्छे से मैसेज टाइप करके भेजते हैं और आकाशवाणी सासाराम को अपने दिल में रखते हैं। और इस

0: आज की जो ये अनमोल घड़ी है उसको आपने याद किया है, तो मेरी तरफ से भी आप सभी को दिल से धन्यवाद, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। और ये अगली फरमाइश आई है, मंचली फिल्म के गीत गम का फसाना बन गया अच्छा। जी हाँ, और ये फरमाइश करता है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। आप सभी ये गीत सुनना चाहते हैं, इसमें हम कुछ और श्रोताओं के भी नाम शामिल करते हैं। आप हैं जिला नांदेड एटाला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं मंचली फिल्म का गीत किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।
1: गम का फसाना बन गया अच्छा,
2: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

गम का फसाना बन गया अच्छा। किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना मनचली फिल्म का ये गीत। जी हाँ श्रोताओं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम गुमसुम से रहते हैं और जब कोई हमारा मनपसंद व्यक्ति हमसे बात करता है तो सच में गम का जो हमारा फसाना होता है वो भी काफ़ी खूबसूरत बन जाता है। और चलिए अब सुनवाते हैं आपको दबंग फिल्म का एक गीत, राहत फ़तेह अली खान के स्वर में, फैज़ अनवर के बोल हैं, साजिद वाजिद का संगीत है। और इस गीत को सुनना चाहा है वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। आप हैं नजमुल हुदा, एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, गुमला झारखंड से। राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल रॉय, बुल्की वाली और इनके परिवार के सभी सदस्य आप सब हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं दबंग फिल्म का ये गीत।

तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। जी हाँ, राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में अभी आपने दबंग फिल्म का ये गीत सुना। और अब बारी है हमारे इस कार्यक्रम में गरम मसाला फिल्म के गीत का। और इस गीत को पसंद किया है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी। और इसी गीत में शामिल कर रहे हैं बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी को भी। आप हैं दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। बड़ा ही अच्छा सा मैसेज ये लिखते हैं कि माय रेडियो इज़ माय लाइफ। ऐसे तो हमने सुना है माय वाइफ इज़ माय लाइफ, बट आप रेडियो को अपनी लाइफ समझते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। खैर, चलिए आप सभी को सुनवाते हैं गरम मसाला फिल्म में सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत, जिसे लिखा मयूर पुरी ने है और संगीत है प्रीतम का।

सोनू निगम की आवाज़ में अभी आपने सुना गरम मसाला फिल्म से लिया गया ये गीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज आकाशवाणी सासाराम अपना स्थापना दिवस मना रहा है। तो आज हम आप किसी भी श्रोता का दिल नहीं दुखाएंगे। जितने भी ईमेल आज हमें मिले हैं, हमारी कोशिश यही है कि हम उन सभी ईमेल को शामिल करें। और आप हैं

आलिया, इब्राहिम, कमाल, मेराज, साकिबा, निशार, पंकज कुमार, आप सभी अकासी सासाराम से हमें ये ईमेल किए हैं और आपकी फरमाइश है कि भारत फिल्म का गीत इश्के दी चासनी आज हमें ज़रूर सुनवाया जाए। बिल्कुल, अब अगली फरमाइश आप ही लोगों की हम पूरी करने जा रहे हैं। फ़िलहाल कुछ और श्रोताओं के नाम भी हम इसी गीत में शामिल करते हैं। आप हैं नगर निगम वार्ड नंबर 28 से, जी हाँ, अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज़ वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। कुवात बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, और कलेर बिहार से हमारे नियमित श्रोता हैं मोहम्मद आसिफ खान, निखत परवीन। कुछ श्रोता जो हैं वो हमें 3 बार 4 बार मैसेज कर चुके हैं। जी हाँ, आप हैं चौसा गोला बक्सर के जयराम बिंद, सीतामुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रद्युम्न और प्रीतम कुमार। तो चलिए, आप सभी को हम सुनवाते हैं भारत फिल्म में अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ से सजा हुआ ये गीत, जिसे लिखा है इरशाद काबिल ने और संगीत है विशाल शेखर का।

0: ਮਿੱਠੀ ਚਾਸ਼ਣੀ।
1: और अब हम नाम पढ़ते हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के इन श्रोताओं का जिन्होंने हमें ईमेल किया है। आप हैं अभिजीत गहवाड़कर, सरिता गहवाड़कर, प्रणीता, सिद्धांत और अर्जुन उर्फ टुक टुक। और ये हमारे श्रोता राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, सुमन अच्छे लाल रॉय, कारी राय कारी, शोभिकांत झा सज्जन, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, नवीन सी, सब्बीर आलम, आरा बेगम, बुल्की वाली और फलना झा। आपने सिर्फ ओल्ड लिसनर्स ग्रुप नॉर्थ बिहार ये जगह का नाम लिखा है। लग रहा है शायद आपने कोई ग्रुप बना लिया है और उस ग्रुप से हमें मैसेज भेज रहे हैं। ऐसे अलग अलग भी हमने अभी आपके संदेशों को पढ़ा। खैर, अब आप हैं फुटानी चौक नरहन एस्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। आपने लिखा है कि आकाशवाणी सासाराम की 35वीं वर्षगांठ है आज, तो इस अवसर पर हमारी तरफ से पूरे आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। तो बिल्कुल जी, धन्यवाद आपको कि आप हमारे इतने पुराने श्रोता हैं और आपने ये याद रखा हुआ है कि आज 35वीं वर्षगांठ है। और भोपाल बाड़ी उदयपुर राजस्थान से हमें ईमेल किया ललित चौरड़िया, स्नेहलता जैन ने। तो चलिए आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं गोलमाल फिल्म का गीत। और इस गीत को गाया है एक बार फिर किशोर कुमार ने। गुलजार के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है। तो आइए सुनते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आने वाला पल जाने वाला है, और जब हम बात करते हैं आकाशवाणी सासाराम की तो ऐसा लगता है कि जैसे कल ही इसका उद्घाटन हुआ हो, और देखते देखते इतना अरसा बीत गया, लेकिन फिर भी इसकी चमक हमारे दिलों में बरकरार है, और आप सभी श्रोता भी इसे इतना प्यार देते हैं, तो हम भी इसके कायल हैं कि आप आकाशवाणी सासाराम को बेपनाह मोहब्बत करते हैं। देखते ही देखते पल इतना दूर चला गया कि 35 साल किस तरह बीत गए पता ही नहीं चल रहा है। आने वाले सालों में भी आकाशवाणी सासाराम इसी तरह आपका मनोरंजन करती रहेगी, ये हमारा वादा है, और आप भी अपना प्यार इसी तरह लुटाते रहिए आकाशवाणी सासाराम पर, इससे जुड़े रहिए। फिलहाल लीजिए सुनिए ये गीत लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में कोई सा भी गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता सुदर्शन सा, पल्लवी सा, प्रखर सा, कुशल सा, नीति सा, सुरभि सा, आश्विन सा, मंगलाबेन सा और राजेंद्र जी सा, लता मंगेशकर की ही आवाज़ में कोई सा भी गीत सुनना चाहा है, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से उस्मान अली अंसारी, आसिफ अली अंसारी, आमना खातून अंसारी, सनूबर परवीन अंसारी, सुमैला और गुड़िया अंसारी, रियाज सऊदी अरब से हैं आप अशरफ अली अंसारी, सारिक अली अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग। इन्होंने अपने ईमेल में लिखा है कि लता मंगेशकर साहिबा की आवाज़ इतनी प्यारी है कि इनकी आवाज़ में कोई सा भी गीत हमें सुनना अच्छा लगता है। बड़ा ही अच्छा सा संदेश इन्होंने लिखा है, लेकिन समय की कमी है और हम इसे पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप हैं गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से आप हैं वसीम अकरम, सालेहा खातून, गुड़िया खातून। सहारनपुर से हैं अनवर साबरी और आसू साबरी। तो चलिए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज़ से सजा हुआ ख़ानदान फिल्म का गीत, नक्श लायलपुरी के बोल हैं खयाम का संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने ये बेहद ही खूबसूरत गीत सुना चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म से। उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज़ें थीं, समीर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था। और इस गीत को पसंद किया गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने। और टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी। नलेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से पीएस नहुआकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले और आशीष मुरहेकर। और इसी के साथ अब कार्यक्रम का अंतिम गीत ट्यूबलाइट फिल्म से अमित मिश्रा, प्रीतम और कमाल खान के स्वर में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोलों को संगीत दिया है प्रीतम ने। पसंद करने वाले हैं श्रोता अनिल कुमार घोटके, वैशाली घोटके, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश। आप हैं सरला मनवर, रोशनी, चेतन, विशाल, बेबी प्रियांशी और राहुल मनवर, साहू नगर, यवतमाल से।

0: जी हाँ श्रोताओं, इसी तरह रेडियो बजाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी सासाराम का कार्यक्रम। और अब दीजिए इजाजत रागिनी को, नमस्कार। अब आइए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से हम सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों

0: और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी।
2: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 852,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
3: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली सीबीएस का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित सीबीएस को दूरसंचार विकास केंद्र सी डॉट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज सी डॉट जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस सी डॉट की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीबीएस का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4: आपदा को हम अवसर में बदले, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाएं, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
1: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
5: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड़ और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ

गए प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7

0: सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
1: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं, या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं। इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं। 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई है, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे देश प्रदेश में 3,90,000 गणना ब्लॉक बने।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा, जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट में उतरेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के मुताबिक परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े, जबकि पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर एक आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त हुए और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये
2: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी लोकगीत। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं नीलेश्वर मिश्रा के स्वर में एक शिव भजन, तो लीजिए सुनिए।

0: में आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: विज्ञापन से पहले लोकधारा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुरेंद्र प्रसाद के स्वर में भजुबन राम चरण सुखदाई, इस एल्बम से ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। और अब लीजिए सुनिए ललन।

ललन सिंह की आवाज़ में अभी आप ये भोजपुरी लोकगीत सुन रहे थे। लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:15 हो चुके हैं। महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चंद गज़ल। सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं गुलाम अली की खूबसूरत आवाज़ में खुशबू एल्बम से लिया हुआ ये गज़ल।

गुलाम अली की आवाज़ में अभी आप ये प्यारी सी गज़ल सुन रहे थे परछाइयाँ एल्बम से। और अब इसी के साथ हमारा आज का गज़लों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से रिले किए जाने वाले कार्यक्रम को, जी हाँ, छाया गीत को।

श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हो रहे हैं और अब हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम छाया गीत।

0: कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्कार, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है सत्यजीत रे की स्मृति को। सत्यजीत रे का शुमार भारत के महानतम फिल्मकारों में होता है। आज पश्चिमी दुनिया में अगर भारतीय सिनेमा अपनी कोई पहचान कायम कर पाया है या अपना परचम बुलंद कर पाया है तो इसका सीधा श्रेय जाता है सत्यजीत रे को, जिनकी पहली ही फिल्म पाथेर पांचाली सन 1956 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। सत्यजीत रे का सिनेमा सरोकारों का सिनेमा था। वहां पॉपुलर सिनेमा की कोई चमक दमक नहीं थी, वहां समस्याओं से जूझते भारतीय समाज की चिंता थी, वहां भूख और गरीबी के खिलाफ रचनात्मक हस्तक्षेप था, वहां सामाजिक अन्याय की बातें थीं, सदियों से शोषित होती चली आई नारी की पीड़ा को पर्दे पर साकार रूप देने की आकांक्षा थी सत्यजीत रे के सिनेमा में।

मुंबई सिनेमा की मार धाड़, उसका नाच गाना और उसका स्वप्निल संसार एक छोर पर है और दूसरे छोर पर है सत्यजीत रे का यथार्थवादी सिनेमा। आइए एक नजर डालें सत्यजीत रे की सिने यात्रा पर। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ता के एक सांस्कृतिक परिवार में हुआ था। फिल्मों का शौक सत्यजीत रे को बचपन में ही लग गया था। उन्हें वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का शौक भी लग गया और पेंटिंग का भी। अपनी मां के कहने पर सत्यजीत रे सन 1940 में शांति निकेतन आ गए। वे चित्रकला के छात्र बनकर यहां आए थे। सन 1942 में वे शांति निकेतन छोड़कर अपने घर चले आए। सन 1943 सत्यजीत रे ने डीजे कीमर नामक एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जूनियर विजुलाइजर का काम शुरू किया। 13 साल तक सत्यजीत रे इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बने रहे। इसी दौरान सत्यजीत रे ने शौकिया तौर पर पटकथाएं लिखना शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी घोरे बाईरे पर आधारित पटकथा इन्हीं दिनों सत्यजीत रे ने लिखी थी। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने सन 1950 में उन्हें लंदन हेडक्वार्टर भेज दिया। 6 महीने के लंदन प्रवास में सत्यजीत रे ने विक्टोरिया देसीका की फिल्म बाइसाइकिल थीफ देखी और इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब सत्यजीत रे ने यह तय कर लिया था कि वे शौकिया कलाकारों को लेकर एक यथार्थवादी फिल्म जरूर बनाएंगे। उन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कृति पाथेर पांचाली के अधिकार खरीद लिए। तलाश थी एक फाइनेंसर की। प्रोड्यूसरों को प्रभावित करने के लिए सत्यजीत रे अपने साथ एक नोटबुक लेकर जाते थे जिसमें पाथेर पांचाली के कुछ अहम दृश्यों के रेखा चित्र बनाए हुए थे। 2 साल तक सत्यजीत रे प्रोड्यूसरों की तलाश में भटकते रहे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार निराश होकर सत्यजीत रे ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी गिरवी रख दी। कुछ पैसा मित्रों और रिश्तेदारों से मिला और 27 अक्टूबर 1952 को रविवार यानी दफ्तर की छुट्टी के दिन पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया गया। जैसा कि हमने आपको बताया 27 अक्टूबर 1952 को सत्यजीत रे ने फिल्म

पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया था। ये वो दृश्य है जिसमें अपू दुर्गा के पीछे काश के खेत में से भागता है। काश एक बहुत ऊंची सी घास होती है। ये दोनों लोग खेतों में से भागते हुए जा रहे हैं पहली बार गांव के नजदीक से गुजरती छुप छुप रेलगाड़ी को देखने के लिए। सत्यजीत रे को ये लगा था कि ये दृश्य बहुत ही प्रभावी होगा और इसके जरिए उन्हें पाथेर पांचाली के प्रोड्यूसर मिल जाएंगे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो इस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत आसान नहीं था। अपू की भूमिका के लिए कलाकार को ढूंढना सत्यजीत रे के लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने समाचार पत्रों में विज्ञापन छापे, सैकड़ों लोग इसके लिए ऑडिशन देने के लिए आए, लेकिन आखिरकार सत्यजीत रे को दक्षिण कलकत्ता के एक फ्लैट के पास बिजोया खेलता हुआ दिख गया और बस उन्हें लगा कि यही है उनका अपू। इसी दौरान बिमल रॉय ने सलील चौधरी की कहानी पर बनाई अपनी यथार्थवादी फिल्म दो बीघा जमीन, जिसे सन 1954 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड मिला।

0: दो बीघा जमीन और कुरुसावा की रोशोमन ने यथार्थवादी सिनेमा पर सत्यजीत रे का विश्वास प्रबल कर दिया। बहुत मुश्किलों से बनी फिल्म पाथेर पांचाली आखिरकार 26 अगस्त को कलकत्ता में प्रदर्शित हुई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब रही। सन 1955 में केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने स्पेशल जूरी अवार्ड जीता और सत्यजीत रे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मकार बन गए।
1: सोनार मानुष भासछे रसे, सोनार मानुष भासछे रसे।
0: पाथेर पांचाली की कामयाबी ने सत्यजीत रे को नई ऊर्जा से भर दिया। पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार, ये तीनों अपू त्रयी के नाम से विख्यात हैं। सन 1981 तक हर साल सत्यजीत रे अपनी एक फिल्म जरूर लेकर आए। सत्यजीत रे की फिल्म यात्रा सिने इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। सन 1958 में आई परश पाथर, इसी साल आई जलसाघर, 1960 देवी, सन 1961 तीन कन्या, सन 1962 कंचनजंगा, सन 1963 महानगर, 1964 में आई चारुलता, 1968 में आई गोपीगाइन बाघबाइन, सन 1977 में आई उनकी हिंदी फीचर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद की कहानी पर उन्होंने अपनी एक टेलीफिल्म भी बनाई सदगति, सन 1984 घरे बाई रे, सन 1989 गणशत्रु। 1984 के बाद कुछ साल सत्यजीत रे अपनी बीमारी की वजह से सिनेमा से दूर रहे। सन 1989 में उन्होंने इप्सन की कृति एनिमी ऑफ द पीपल पर अपनी फिल्म बनाई गणशत्रु, इसके अगले वर्ष शाखा प्रशाखा और सन 1991 में आई सत्यजीत रे की अंतिम फिल्म आगंतुक। सत्यजीत रे ने अपनी अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर बनाई थी। सन 1992 में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड मिला था। इसी साल उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म का लेखन जानी मानी लेखिका शमा जैदी ने चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी के साथ किया था। मैंने शमा जैदी और जावेद सिद्दीकी दोनों से बातें की। शमा जैदी ने हमें बताया,
2: बंसी चंद्रगुप्त उनके आर्ट डायरेक्टर थे
0: जी,
2: तो जावेद और मेरे वो बहुत दोस्त थे, वो तो उनके यहाँ हम जाके
0: जावेद सिद्दीकी साहब जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में आपके
2: तो
0: साथ
2: मैं उनके साथ जाती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम चलो सत्यजीत रे आए हुए फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बैकग्राउंड मटेरियल मेरे लिए जमा करो, तो काफी मैंने इधर उधर से उनको मटेरियल भी दिया उसके लिए
0: जी,
2: तो उन्होंने कहा कि तुम डायलॉग भी लिख लो, तो मैंने कहा ऐसी फंसी उर्दू शायद मैं नहीं लिख पाऊंगी, मगर मेरे एक दोस्त हैं मैं बात करती हूँ उनसे, तो मैंने जावेद से कहा, जावेद ने कहा अरे मैंने कभी फिल्म के लिए नहीं लिखा है।
0: उन दिनों वो जर्नलिस्ट थे।
2: हाँ जर्नलिस्ट थे। मैंने कहा नहीं नहीं तुम लिखोगे।
3: अब ये शतरंज भी कंपनी की अमलदारी में आ गई क्या?

0: खूब वैसे मैंने ला मार्टिनेर के कॉलिन साहब से सीखी है, मैं उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाने जाता हूँ ना।
1: अच्छा अच्छा मुंशी साहब, ये दोनों वजहों में फर्क क्या है?
0: नवाज साहब को ज्यादा फर्क नहीं है, या आपका वजीर जो है वो अंग्रेजी खेल में क्वीन यानी मलिका कहलाता है, और दोनों आमने सामने रहती हैं, और प्यादा पहली चाल में दो घर चल सकता है।
2: दो घर?
0: जी हाँ दो घर, और मुखालिफ सिरे पर पहुंच जाए तो मलिका बन जाता है।
2: कमाल करते हैं ये अंग्रेज भी।
1: मगर इन तब्दीलियों से फायदा?
0: बाजी झटपट खत्म हो जाती है।
1: क्यों, उन्हें हमारा खेल सुस्त लगता है क्या?
2: जी हाँ, उन्हें हमारी सवारियां भी सुस्त लगती हैं, इसीलिए तो रेलगाड़ियां आने वाली है।
1: और तार?
2: जी हाँ।
0: तार घर तो कब के आ गए, लेकिन मुझे एक आंख भी नहीं भाते।
1: क्यों?
0: बुरी खबरें जो फौरन पहुंच जाती हैं।
2: बुरी खबरें?
0: आपने कुछ सुना नहीं?
2: हम सुनते उनते कुछ नहीं मुंशी साहब, खेलते हैं।
0: मीर साहब, हंसने से बला नहीं टलेगी। सुना है कंपनी बहादुर अवध पे कब्जा करने वाली है। यही खबर देने को तो हाजिर हुआ था मैं।
3: मुंशी साहब, आप अंग्रेजी वजह की शतरंज खेलते हैं फिर भी अंग्रेजों की चाल नहीं समझ सके। अरे भाई, ये नेपाल में लड़ाई, पंजाब में लड़ाई, अफगानिस्तान में लड़ाई, इन लड़ाइयों के लिए दरकार है पैसा, और कंपनी ठहरी कंगाल। पैसा लाए कहां से?

0: ये हैं चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी, जो सत्यजीत रे से जुड़ी निजी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं।
1: भाई, शतरंज के खिलाड़ी की याद मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट याद है। उसकी वजह यह है कि शतरंज के खिलाड़ी वो फिल्म है जहां से मेरे फिल्मी सफर का आगाज होता है।
0: बिल्कुल,
1: उससे पहले मैंने कोई फिल्म लिखी नहीं थी, मेरा कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया था। और उस जमाने में मेरी दोस्त शमा जैदी ने मुझसे कहा कि सत्यजीत रे से मिलना चाहते हैं, और पहले तो मैं समझा कि ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये कि फिर मैं सत्यजीत रे से मिलने के लिए गया, जो बॉम्बे में एक होटल में ठहरे हुए थे। बड़ा मैं हैज बैज में था कि मतलब

0: पता नहीं ये क्या हो रहा है क्या है, लेकिन मैंने जब फोन किया तो एक बड़ी गूंजती हुई आवाज आई, क्योंकि सत्यजीत रे की आवाज जिसे इंग्लिश में बैरिटोन कहते हैं,
1: बिल्कुल
0: वो वैसी एक आवाज थी, बड़ी इम्प्रेसिव
1: जी।
0: और उन्होंने कहा कि कम आप, मैं चला गया और उन्होंने खुद दरवाजा खोला क्योंकि वो कमरे में अकेले थे
1: जी।
0: पहली मरतबा मैंने इतना लंबा बंगाली देखा बाल वो कोई 6 फीट से मेरा ख्याल है 1-2 इंच ऊपर ही थे
1: जी हाँ।
0: और एक बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, खादी का कुर्ता पजामा सफेद पहने हुए, और मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, वो बैठे रहे, मैं उनके सामने बैठ गया। और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो कोई जब सोचते थे तो कोई चीज चबाया करते थे।
1: अच्छा।
0: कभी वो रुमाल का कोना चबाया करते थे, कभी अपने चश्मे का डंडा चबाया करते थे, तो उनके बेचारे सारे चश्मे जितने भी थे वो सब बहुत जख्मी हालत में, वो अपने चश्मे की डंडी चबाते रहे और वो मुझे देखते रहे कुछ देर तक। और फिर कहने लगे कि अच्छा, उनको एक बात मैं बता दूं यूनुस साहब, कि उन्हें इंग्लिश और बंगला के सिवा कोई जबान नहीं आती थी।
1: और ये फिल्म उनकी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी।
0: पहली और आखिरी हिंदी फिल्म। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम टोल्ड दैट यू आर ए वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मैंने कहा साहब, आई राइट इन उर्दू एंड नोबडी कैन बी ए गुड जज ऑफ हिज ओन वर्क, इफ यू लाइक आई कैन गेट सम ऑफ माय वर्क ट्रांसलेटेड फॉर यू एंड यू कैन हैव ए लुक। तो वो कहने लगे कि नो यंग मैन, आई कैन हैव ए लुक एट यू
1: जी,
0: एंड हियर इज माय स्क्रिप्ट एंड यू आर राइटिंग द डायलॉग।
1: ओहो।
0: तो ये कुल 1.5 मिनट की मुलाकात थी सर, और मतलब वो ऐसी अजीबोगरीब मुलाकात थी कि उसे भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर मैं बौखला के फिर मैं भागा हुआ वहां से अपनी दोस्त शमा जैदी के गया और मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ डायलॉग कैसे लिखे जाते। तो वहां से सत्यजीत रे, अच्छा जब हमने डायलॉग लिख दिए तो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि हमने जोश में लिख तो डाले, लेकिन जो लोग बाकी लोग इन्वॉल्व थे, खासतौर से हमारे दोस्त बाद में बहुत ज्यादा बन गए सुरेश जिंदल जो प्रोड्यूसर थे
1: जी,
0: वो बेचारे बहुत घबराए हुए थे, पकड़ लिया पता नहीं कहाँ से, और उसको इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म जिसकी पूरी दुनिया वेट कर रही है उसके डायलॉग इन्होंने लिखवा लिए। हालांकि उस रेस में दूसरे लोग भी थे, वो जिसे फारसी में कहते हैं ना कुरै फाल बनामे मने दीवाना जदन, कि वो कुरै फाल जो था वो इस दीवाने के नाम। तो बाहर हमने वो लिख दिए और सुरेश जिंदल साहब ने जो बम्बई में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, खास तौर से उर्दू जानने वाले, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ये वो पता नहीं कौन कौन, उनको बुला के बिठाया और कोई 20 आदमियों की एक महफिल थी जिसमें मैंने वो पढ़ के डायलॉग उनको सुना दी फ्रॉम पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक
1: जी।
0: फिर अब सब चुप थे, वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अजीब गरीब था कि सब चुप बैठे हुए, भाई पता नहीं मैंने पहली बार लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। सडनली उनकी बूमिंग वॉइस मुझे सत्यजीत रे की सुनाई दी, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है जो मैं कभी नहीं भूलता
1: जी,
0: कि आई डोंट नो व्हाट ही हैज रिटन बट इट साउंड्स वेरी गुड।
1: वाह।
0: उसके बाद की यादें भी बड़ी प्यारी हैं कि जब फिर हम, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने लोग उनके करीब थे वो उन्हें सत्यजीत रे या कुछ ऐसा नहीं कहते थे, या मिस्टर रे नहीं कहते थे, हम लोग उन्हें मानिक दा कहा करते थे।
1: बिल्कुल।
0: जो मानिक उनके घर का नाम था, और बोधी जो उनकी बीवी हैं वो असल में उन्हें मानिक कहा करती थी, तो सभी मानिक दा ही कहते थे।

कुछ दिनों के बाद फिर मानिक दा का फोन आया, कहने लगे भाई वो तुमने डायलॉग तो लिख दिए और वो बहुत अच्छे भी हैं, मैंने कई लोगों से उनको पढ़वा के तर्जमा करा के देखा और बहुत बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका शीन काफ कौन बताएगा। विल यू बी एबल टू बी द डायलॉग डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म? तो वो गरीबी का जमाना था, मैंने अरे भाई इसे अंधा क्या चाहे दो आंखें, तुम्हें भाग के फौरन कलकत्ता पहुंच गया। अच्छा फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी। वहां सूरत हाल ये थी कि वो उनके जो बंगाली असिस्टेंट थे वो कलकत्ते के इंद्रपुरी स्टूडियो में एक लखनऊ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर है कि वो इसलिए नामुमकिन था तो वो बेचारे किसी लखनऊ से पहले तो खुद वाकिफ नहीं थे और

0: चीजें कि लखनऊ हो या यूपी को आप अगर इन जनरल कह लें तो वो एक कल्चर है, वो एक मिजाज है, और कल्चर और मिजाज को आप जब तक आप उसे जिए नहीं, आप उसे बरते नहीं, आप उसे महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये तो क्या हो रहा है भाई, ये तो सब सारी की सारी चीजें गलत हैं। फिर हमने उसमें दखल अंदाजी की कि साहब ये तलवारें ऐसी नहीं होती थी और कपड़े ऐसे नहीं होते थे और ये चलते ऐसे नहीं थे और ये ऐसे होता था, वो ऐसे होता था। फिर हम ढूंढते फिरे कलकत्ते में एक एक चीज पुराने जमाने की, क्योंकि 1857 का माहौल था
1: जी।
0: तो मानिकदा बहुत इम्प्रेस हुए हमारी मेहनत से। और तो आप अगर देखें तो उसमें फिल्म में मेरा टाइटल दो मर्तबा आता है, एक मर्तबा एज एन असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट, और दूसरा डायलॉग राइटर।
1: ये बताएं कि जब शतरंज की खिलाड़ी बन रही थी, अब आप उसमें दो तरह से शामिल हो चुके थे, बतौर डायरेक्टर आप उनको कहां किस तरह से पाते हैं?
0: मैं जिस सत्यजीत रे को जानता हूं, मेरा ख्याल ये है कि वो एक बेहद जहीन, बेहद समझदार और फिल्म को महसूस करके बनाने वाला डायरेक्टर था। और ये बहुत ही अहम बात मेरे लिए थी, और उसकी बहुत सारी मिसालें थीं। एक तो ये कि वो, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि उसके फोटोग्राफर जो थे, सिनेमाटोग्राफर, वो शोमेंदु रॉय थे, लेकिन ये कि कैमरा ऑपरेट मानिकदा खुद करते थे।
1: अरे वाह।
0: हाँ, वो हमेशा खुद करते थे, ज्यादातर काम वो खुद ही करते थे, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक वो खुद स्कोर करते, कंपोज करते थे, एडिटिंग पे वो खुद बैठते थे, और कैमरा ऑपरेट भी खुद करते थे। अक्सर हम लोग में से कोई अगर उनको कोई राय दे देता था तो वो उसको बड़े गौर से सुनते थे और उसको करते भी थे। उनमें वो जो एक गुरूर होता है कि साहब मैं सत्यजीत रे हूँ, तो वो मुझे नहीं दिखाई दिया। और कुछ ऐसी बातें भी थी बड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग जिन्हें सीखने का हमको मौका मिला। मिसाल के तौर पर ये कि जब मीर का घर बन रहा था सईद जाफरी का, और बंसी चंद्रगुप्त का आर्ट डायरेक्शन था, तो हम जब वहाँ पहुँचे सवेरे सवेरे देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए बंसीदा, और बंगला में बातें कर रहे थे लेकिन ये कि बंगला समझ में आने लगी थी, वैसे भी आसान जबान है वो। तो उन्होंने कहा कि देखिए वो मीर के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, और मैं नहीं समझता कि ये जो रंग रोगन है इस हवेली का ये सही है, तो इसको थोड़ी एजिंग की ज़रूरत। तो बंसीदा ने कहा कि हाँ मैं एजिंग कर दूंगा। और वो जाने लगे मानिकदा, और जाते जाते उनको वो एक बाल्टी दिखाई थी जिसके अंदर पेंट करने वालों ने इस खौफ से कि ब्रश सूख न जाए वो भिगो दिए थे पानी में, और वो गंदा सा पानी वहाँ पड़ा हुआ था। एंड सडनली ही स्टॉप्ड, और उन्होंने वो ब्रश उठाया और उसको उन्होंने दीवार के ऊपर पेंट करना शुरू कर दिया। और जब वो बहुत ही गंदी मैली सी एक तह चढ़ गई, तो उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए और धब्बे चाहिए मुझे, ताकि ये एहसास हो सके कि इस आदमी की माली हालत जो है वो कैसी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैं कभी नहीं भूलता
1: जी,
0: डायरेक्शन की जो जहानत होती है वो मैं उसके लिए मैं कोट करूंगा कि एक सेट था, तो उसमें वो मिर्जा साहब जो है वो शतरंज खेलने के लिए आते हैं सवेरे सवेरे। वो आए और वो बाहर एक, उस जमाने में ब्रूट हुआ करते थे वो बड़े बड़े, मतलब 10K का जो की लाइट होती थी, तो वो एक लकड़ी का घोड़ा बना के और उसके ऊपर रख दी गई थी
1: जी,
0: बाहर की रेज जो है वो अंदर आ सके। तो उन्होंने लाइटिंग जब देखी तो उन्होंने उनसे, शोमेंदु रॉय से कहा कि इसको एक 2 फुट ऊपर कर दो। तो जी 2 फीट ऊपर करने वाली बात थी, मुझे तो कुछ इतनी समझ में नहीं आई। तो शोमेंदु रॉय ने कहा ठीक है दादा मैं कर देता हूँ। तो मैं उनके पीछे पड़ गया, मैंने कहा कि मानिकदा ये बताइए आप, वो उससे क्या फर्क पड़ता है लाइट, आपने उसे 2 फुट ऊपर क्यों कराया? तो वो बहुत देर तक टालते रहे। फिर लंच में मैंने फिर उनको घेर लिया, हम सब लोग साथ में ही लंच करते थे, और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो एक मरतबा जब सेट पे आ जाते थे तो पैकअप बोलने के बाद ही सेट से निकलते थे, लंच में भी वो बाहर नहीं जाते, वहीं सेट पर खाना खाते। तो मैंने कहा कि ये आपने क्यों किया? थोड़ा सा चिढ़ गए, कहने लगे तुमने स्क्रिप्ट लिखा है ना? मैंने कहा हाँ। तुमने क्या टाइम लिखा है, क्या वक्त है? सुबह का वक्त है, 9:30-10 बजे का वक्त होगा। तो कहने लगे और ये मौसम कौन सा है, महीना कौन सा है? मैंने कहा अकॉर्डिंग टू अस ये दिसंबर है। तो कहने लगे कि दिसंबर में लखनऊ में 10 बजे सूरज निकलता है।

0: तो सूरज की जो किरणें हैं वो ऊपर से आएंगी, बीच में से नहीं आएंगी।
1: वाह,
0: समझे आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सूरज अभी निकला है तो उसकी जो एंगल जो होना चाहिए किरणों का, वो हायर साइड पे होगा, न के नीचे। तो ये जो बात थी वो तरीके की, वो मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। जब भी आते थे यहाँ बॉम्बे में तो एक दो मुलाकातें उनसे जरूर होती थी, हम उनके घर जाया करते थे, चाय के बड़े शौकीन थे वो।
1: अच्छा,
0: मुझे भी चाय का बड़ा शौक, तो मैं उस लालच में बहुत जाता था उनके घर, क्योंकि उनके कोई एक बहुत चाहने वाले थे जिनका दार्जिलिंग में टी स्टेट था, तो वो हाथ से तोड़ी हुई चाय की पत्तियां उनको भेजा करते थे। वो ब्लेंडेड या ये नाम वाली चाय नहीं होती थी, और वो चाय का फ्लेवर ही अजीब होता था, और उसको वो बड़े प्यार से बना के वो उसके ऊपर लेक्चर भी देते जाते थे और समझाते भी जाते थे और पीते भी जाते थे, और गुड ओल्ड डेज के ऐसा लगता है कि यादें कल की हैं।
1: सत्यजीत रे ने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई। सन 1971 में उनकी बनाई डॉक्यूमेंट्री थी सिक्किम,

0: हम उनके घर जाया करते थे, चाय के बड़े शौकीन थे वो।
1: अच्छा,
0: मुझे भी चाय का बड़ा शौक, तो मैं उस लालच में बहुत जाता था उनके घर, क्योंकि उनके कोई एक बहुत चाहने वाले थे जिनका दार्जिलिंग में टी स्टेट था, तो वो हाथ से तोड़ी हुई चाय की पत्तियां उनको भेजा करते थे। वो ब्लेंडेड या ये नाम वाली चाय नहीं होती थी, और वो चाय का फ्लेवर ही अजीब होता था, और उसको वो बड़े प्यार से बना के वो उसके ऊपर लेक्चर भी देते जाते थे और समझाते भी जाते थे और पीते भी जाते थे, और गुड ओल्ड डेज के ऐसा लगता है कि यादें कल की हैं।
1: सत्यजीत रे ने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई। सन 1971 में उनकी बनाई डॉक्यूमेंट्री थी सिक्किम। इसके बाद सन 1987 में उन्होंने अपने पिता पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई सुकुमार रे। सन 19 और खामोश होता है, उनकी फिल्मों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। वो अपने आप में एक विशाल फिल्म इंडस्ट्री है। अगर आपने सत्यजीत रे का सिनेमा नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपका जीवन वैसा ही है जैसे आप धरती पर तो रहे मगर आपने सूरज और चांद पर नजर नहीं डाली। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

फिल्म संसार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बजे हैं। रसरंग कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे कुछ हिंदी एल्बम सॉन्ग।

दिल गलती कर बैठा है। जुबिन नौटियाल की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे इस एल्बम से लिया गया ये हिंदी एल्बम सॉन्ग। इसे लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत दिया था मीट ब्रदर्स और सरदुल राठौड़ ने। और श्रोताओं अब लीजिए सुनिए सचेत टंडन परंपरा टंडन के स्वर में इरशाद कामिल का ही लिखा हुआ एक गीत। सचेत और परंपरा का संगीत है और एल्बम है चुरा लिया।

जब से इस दिल पर तुम्हारा इख्तियार हो गया, हमारा हर लम्हा बस तुम पर ही निसार हो गया। ढूंढने से भी हमें इश्क की गलियों में कोई अपना पहले नज़र नहीं आता था, पर जब से तुम मिले तुम पर ही मेरा दिल निसार हो गया। चुरा लिया एल्बम का ये एल्बम सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे सचेत टंडन और परंपरा टंडन की युगल आवाज़ में। और अब आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: संदेश के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम रसरंग में। श्रोताओं, हम आपको कहना चाहेंगे कि आज 2 मई है और 2 मई को हमारा आकाशवाणी सासाराम का स्थापना दिवस है और हम इसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, मना भी रहे हैं, और इसमें आप सभी का साथ भी हमारे साथ है तो हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है। और अब लीजिए सुनिए, चांद निकला है इस एल्बम में आजम अली मुकर्रम और रुबीना शेख की युगल आवाज़। अक्सर दक्कनी के बोल हैं आलम अली मुकर्रम का संगीत है।

अभी आपने सुना है इंडी है हम टू। इस एल्बम में तुलसी कुमार की ये आवाज़, रश्मि विरा के बोल थे, अमाल मलिक का संगीत था। और श्रोताओं, रसरंग कार्यक्रम में कुछ और एल्बम सॉन्ग के साथ हम फिर आपके साथ रूबरू होंगे, लेकिन फ़िलहाल आइए सुनते हैं ये छोटा सा सॉन्ग।

और श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम रसरंग में। रसरंग कार्यक्रम में अगला अंतिम एल्बम सॉन्ग हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपसे साझा करते हैं आकाशवाणी के बारे में कुछ जानकारी। जी हाँ, आकाशवाणी, जिसे ऑल इंडिया रेडियो भी कहा जाता है, इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी 23 जुलाई 1927 को मुंबई और कोलकाता में निजी ट्रांसमीटरों के माध्यम से। बाद में 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया और आधिकारिक तौर पर 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। तो अभी अगर देखा जाए तो आकाशवाणी के 470 प्रसारण केंद्र हैं पूरे भारत में, और इन सभी केंद्रों से आकाशवाणी द्वारा विभिन्न भाषाओं में, जो कि वहाँ की क्षेत्रीय लोकप्रिय भाषाएं हैं, उन भाषाओं में प्रसारण होता है। तो ये रही आकाशवाणी के बारे में कुछ दिलचस्प बात। और आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक हम ये जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज हमारे भी आकाशवाणी सासाराम का स्थापना दिवस है। जी हाँ, आज ही के दिन 2 मई को 1991 में आकाशवाणी सासाराम का स्थापना हुआ था, तो हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अब इसी के साथ चलिए आपको सुनवाते हैं रसरंग कार्यक्रम का ये अंतिम हिंदी एल्बम सॉन्ग।

ब्रज सर्वरी और उत्कर्ष शर्मा के गाए हुए इसी एल्बम सॉन्ग के साथ ही हमारा आज का यह रसरंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे चित्रपट तराने कार्यक्रम में कुछ हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के गीत से। मोहम्मद रफ़ी, आसा भोसले की आवाज़ें हैं, राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत है। और श्रोताओं, इस फिल्म के बारे में हम आपको बता दें कि अभी जो ये गीत आप सुनेंगे उसे फिल्माया गया है चॉकलेटी हीरो जॉय मुखर्जी पर। जी हाँ, जॉय मुखर्जी को पुरानी फिल्मों के चॉकलेटी हीरो के रूप में उपमा मिली हुई है। और इनके साथ हैं साधना सिवदासानी। जी हाँ, ये वही साधना है जो कि पुरानी हिंदी फिल्मों की जानी मानी नायिका हैं, अभिनेत्री हैं। और उस ज़माने में इनके साधना कट बालों की काफ़ी धूम मची थी और कॉलेज गोइंग जो लड़कियां थी वो भी आगे से ललाट पर साधना कट बाल कटवा के और कॉलेज जाया करती थी। और आज भी जो हमारे छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं खास करके, तो वो आज भी साधना कट बालों को काफ़ी पसंद करती हैं। तो ये जो साधना कट बालों की शुरुआत हुई थी, उसको शुरू करने का जो ना

0: उपमा मिला हुआ है वो इन अभिनेत्री साधना जी को ही मिला हुआ है। चलिए साधना जी को हम याद करते हैं इस गीत के माध्यम से, सुनते हैं एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का ये गीत।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से लिया गया ये गीत। और आपको बता दें कि ये फिल्म आई थी 1962 में, जो कि काफ़ी हिट रही थी। और श्रोताओं, आज 2 मई को हम आकाशवाणी सासाराम का स्थापना दिवस मना रहे हैं, और इस अवसर पर हम आपसे आकाशवाणी और रेडियो से संबंधित कुछ बातें भी साझा कर रहे हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि रेडियो का आविष्कार जो हुआ उसे सबसे पहले इतालवी वैज्ञानिक मार्कोनी ने किया था। और आपको बता दें कि 1895 में पहला सफल रेडियो सिग्नल मार्कोनी ने भेजा और 1896 में इसका पेटेंट कराया। आगे चलकर न्यू जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हेनरिक हार्ज और निकोला टेस्ला जैसे वैज्ञानिकों ने भी रेडियो के आविष्कार को और अधिक सफल बनाया। आज भी हम हार्ज जो बोलते हैं शब्द, वो हेनरिक हार्ज के नाम पे ही संबोधित किया जाता है। और भारत में जब हम बात करें तो बिना तार के सिग्नल भेजने का, तो ये नाम है जगदीश चंद्र बोस का। और जगदीश चंद्र बोस ने भी 1895 में भारत में बिना तार का सिग्नल भेजकर रेडियो में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो ये थोड़ी सी जानकारी हमने आपके साथ साझा की। और अब चलिए सुनते हैं एक गीत अलका याग्निक के स्वर में। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है और फिल्म है हाँ मैंने भी प्यार किया।

आप यूं ही अगर हमसे मिलती नहीं, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की खनकती हुई आवाज़ में एक

ज़िंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे, महबूब की आँखों में हैं बड़े ही नज़ारे। जी हाँ, अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, अपनी सांसों में महकता पाया है तुम्हें, हर ख्वाब में बुलाया है तुम्हें। और क्यों न याद करें तुमको, जब खुदा ने हमारे लिए ही बनाया है तुम्हें।

तुम मेरी धड़कन, तुम मेरा सुकून, तुम्हारा साथ हो तो हर लम्हा है खूबसूरत। तुम्हारे बिना ये दिल अधूरा सा लगता है, क्योंकि तुम ही मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी ज़रूरत हो। गर्व फिल्म का ये गीत अभी हमने सुनवाया आपको उदित नारायण और श्रेया घोषाल की युगल आवाज़ में। सबीर अहमद के बोल थे, साजिद वाजिद का संगीत था। और अब इसी के साथ चित्रपट तराने कार्यक्रम का ये अंतिम गीत हम सुनवा रहे हैं आपको अभिमान फिल्म से। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और एस टी बर्मन का संगीत है।

अभिमान फिल्म का ये बेहद ही सुरीला गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की खूबसूरत मीठी आवाज़ में। और आपको बता दें कि अभिमान फिल्म के इस सुरीले गीत के संगीत के लिए जी हाँ एसटी बर्मन को दिया गया था फिल्म फेयर पुरस्कार। और ये जो गीत आपने सुना उसे फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जी पर, और जया बच्चन जी को भी इस फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म फेयर एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। तो बेहद ही खूबसूरत फिल्म थी ये और सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी उस समय ये मानी जाती है। 1973 में ये फिल्म आई थी और आज भी इतने साल बीत जाने के बाद भी हमारे जहन में ज्यों का त्यों ताज़ा हमारे जहन में बनी हुई है और आज भी इसके गीत जब भी हम सुनते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और अब इसी के साथ हमारा आज का यह चित्रपट तराने कार्यक्रम भी यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 10:55 हुए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कल हमारे सासाराम केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों पर।

कल हमारे सासाराम केंद्र की शुरुआत होगी सुबह 5:51 पर आकाशवाणी संकेत धुन से। 5:53 पर आप सुनेंगे वंदे मातरम। 5:56 पर आरंभिक उद्घोषणा। सुबह 6 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। सुबह 6:05 से सुबह 7:30 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम। सुबह 7:30 पर लेकर आएंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। सुबह 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा समाचार प्रभात। देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम हमारे सासाराम केंद्र से होगा 8:15 पर और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पत्र पर आधारित पसंद आपकी हम लेकर आएंगे सुबह 8:20 पर। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी पटना से हम सुनवाएंगे 8:45 पर और 9:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण में कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 9:10 पर हमारे सासाराम केंद्र से गीतमाला का कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा हिंदी फिल्म संगीत का। सुबह 9:30 पर सुनिएगा आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार। सुबह 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार हम रिले करेंगे। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर। 10:30 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा भोजपुरी एल्बम।

गीत का 10:45 का समय होगा भोजपुरी एल्बम सॉन्ग रसथार का। सुबह 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी विविध भारती के केंद्र रंग तरंग कार्यक्रम के लिए। अपराह्न 12 बजे से हिंदी

0: समाप्ति से कार्यक्रम आज के फनकार। सुबह 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार हम रिले करेंगे। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर। 10:30 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा भोजपुरी एल्बम लोक गीत का। 10:45 का समय होगा भोजपुरी एल्बम सॉन्ग रसथार का। सुबह 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी विविध भारती के केंद्र रंग तरंग कार्यक्रम के लिए। अपराह्न 12 बजे से हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे। अपराह्न 12:05 से अपराह्न 2 बजे तक आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम। अपराह्न 2 बजे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार, 2:05 पर इलाकाई खबरें और 2:10 पर रोजगार सूचना आप सुनेंगे। मध्याह्न समाचार आप सुनेंगे 2:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से। अपराह्न 2:30 से शाम 5 तक एक बार फिर आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5 हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। शाम 5:10 पर वंदन कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति संगीत, विज्ञान एवं पर्यावरण। ये साप्ताहिक कार्यक्रम हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण किया जाएगा शाम 6 से। शाम 6:30 पर सुनिएगा सांझ गीत कार्यक्रम में भोजपुरी फिल्म संगीत। गुड इवनिंग रोहतास, ये सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार, जिले की हलचल और संदेश आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से शाम 7:25 से शाम 7:50 तक। 7:50 पर सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। आज 8:45 पर रोजाना की तरह दिल्ली से समाचार संध्या हम रिले करेंगे। रात 9 सासाराम केंद्र से लोकधारा, 9:15 पर महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे। आकाशवाणी विविध भारती से छाया गीत आप सुनेंगे 9:30 पर। रात 10 सासाराम केंद्र से कार्यक्रम होगा रसरंग और 10:30 पर चित्रपट तराने। अगले दिन का कार्यक्रम विवरण 10:55 पर आप सुनेंगे। रात 11 हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। और हमारी कल की यह सभा संपन्न होगी रात 11:10 पर। तो ये था कार्यक्रम विवरण कल का। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी समाचार तदुपरांत अंग्रेजी समाचार।
1: बाय जी ओमकार राव।
2: यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से प्रसारित किया गया।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आकाशवाणी बेंगलुरु, ब्रॉट टू यू फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी दिल्ली।
3: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 तक लगभग 87% मतदान हुआ।
4: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
3: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में

0: मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉयमाल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Repolling remained largely peaceful across the two assembly segments. The repolling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations, including auxiliary polling stations in Falta Assembly constituency of West Bengal. The Commission mentioned that there has been severe electoral offences and subversion of democratic process during the polling in a large number of polling stations in Falta Assembly constituency on Wednesday. Fresh poll will be held.